एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो है प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।
2: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं
1: जी,
2: और कंटेंट राइटिंग करता हूं, माने वेब कंटेंट जो होता है वो
1: जी जी जी।
2: मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाहिर से बात है, जब व्यक्ति, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका?
2: आध्यात्म, आद्य माने सबसे पहला, आत्मा माने अपनी आत्मा, आध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हो, आत्मा माने खुद, जो मुझे मुझे जो चीज पहले रखती है, something that keeps me in front, something that orients me, that is adhyatma. वैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूं तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी में मेरे स्कूल के सालों में।
1: Oh, that's nice.
2: अध्यात्म मेरे ख्याल से ये होता है कि खुद की आत्मा को समझें
1: जी,
2: खुद की आत्मा को समझें और वो जो निर्माता है उसके साथ अपना संबंध जोड़े और वो संबंध समझें। मेरे लिए ये अध्यात्म है।
1: ओके, बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रवीण जी ने जैसे हमें बताया है दोस्तों, उसको लिटरली ही लीजिए एक बार को, क्योंकि उससे समझने में, आगे की बातचीत को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सुंदर। अगर आज के जो जनरेशन है, ठीक है, हम तो एक जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ समझा, जिन्होंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया, अपने चारों तरफ देखा, अपने बड़ों लोगों को ऑब्जर्व किया और कुछ मान्यताएं हमको सिखाई गई, हमने बनाई,

0: लेकिन यही चीज अगर हम आज की जनरेशन को समझाना चाहें तो आज की जनरेशन कुछ भी आध्यात्मिक आपको दिखाई देती है या सिर्फ बस मजे कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए फैशन है तो उसको फॉलो करते चलो, कुछ ऐसा हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
1: अध्यात्म तो पहले से ही है, माने अनादि और अनंत है
0: जी।
1: अध्यात्म का तो ना ही, अध्यात्म की तो ना ही शुरुआत हुई ना ही उसका अंत होगा। जैसे मैंने कहा, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज।
0: जी
1: आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, एक जेसुइट स्कूल में पढ़ा मैं, और उन दिनों हमारे लिए एक माने पूरे दिन में एक क्लास वो होता था जिसे कहा जाता था मॉरल साइंस।
0: मॉरल साइंस
1: बीइंग अ जेसुइट स्कूल, जो कैथोलिक बच्चे थे वो बच्चे अपना रिलीजन पढ़ते थे, और हम लोग जो नॉन कैथोलिक थे हमें मॉरल साइंस का क्लास लिया जाता था। तो उस मॉरल साइंस के क्लास में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ यू नो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे चलते चलते जब मैं कॉलेज के मेरे दिनों में मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्वामी चिन्मयानंद के राइटिंग्स पे
0: जी,
1: तो ये तो मैंने बहुत सालों से है ही
0: जी।
1: और अध्यात्म ना जैसे मैंने कहा, अध्यात्म अनादि है, अनंत है। आज की पहले की पीढ़ी में था, और हमारे पहले जो पीढ़ी थी उनको भी यही लगता था कि हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं
0: जी।
1: लेकिन आज हमें, हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे हैं नहीं। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए अगली पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी को पढ़ें, उनका काम समझें, जानें। उतना अगर हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें। सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, द इनर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, विच कुड बी इंटरप्रेटेड एज the mind, the soul and the universe,
0: right?
1: लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए, जहां से ये बच्चे कुछ समझ सकें।
0: जी।
1: वो समझते नहीं है, इसका थोड़ा दोष तो हम पर भी आता है कि हमने उन्हें समझाया नहीं। ये होता है कि समझाने वाला और समझने वाला जब दोनों मोर और लेस एक ही प्लेन पे आ जाएं, तब चीजें आसान हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी इनवर्ड, टू इंट्रोस्पेक्ट, to understand, to realize, to manifest the different aspects of the relation between the human and the ultra-human, the superhuman, you know, the cosmic energy.
0: Okay.
1: Spirituality, to me, is the compass of the mind and the soul. लेकिन ये बात समझने के लिए बच्चों में कुछ समझ तो आनी चाहिए. They need to have or they need to develop a certain level of maturity, understanding.
0: Correct. So the point is, ji.
1: वो अचार immediately mature नहीं होता है. अचार में इतने सारे मसाले डाले जाते हैं. जब मसाले उस चीज में, नींबू हो या आम हो, अचार में मिलजुल गुल जाने के बाद तब जाके अचार तैयार होता है. लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन अवर नेक्स्ट जनरेशन. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर आवर सेल्स एंड वी नीड टू गिव देम ऑल्सो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्शन पे एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की
0: जी,
1: और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ संबंध है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट माय स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ हैज बीन दिस, माय अप्रोच टू लाइफ हैज बीन दिस, कि हरवंश राय जी की वो कविता की कविता का शीर्षक है जीवन की आपाथापी में।
0: जी
1: कहते हैं कि जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला, जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो ये समझ पहले, ये सोच हमने करनी है पहले, बाद में बच्चों को सिखानी है। है बच्चों को आज के पीढ़ी जो है काफी सृजनशील हैं, काफी हमसे ज्यादा होशियार हैं वो, दे एब्सॉर्ब थिंग्स मच फास्टर देन वी डिड। बहुत बहुत प्रगत पीढ़ी है आजकल की
0: जी।
1: व्हाई आई से दिस इज बिकॉज यू नो इन स्पाइट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस चेंजेस इन लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज्ड थिंकिंग और द सो कॉल्ड मॉडर्न थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली इज फॉलोड बाय टुडेज यूथ। हाँ, अब बात यह हो सकती है कि हमारे पीढ़ी में बहुत ज्यादा लोग धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे, अध्यात्म ज्यादा प्रचलित था हमारे दिनों, लेकिन आज कम है। लेकिन आज कम है माने आज की पीढ़ी अभी 20-25 की है, उन्हें 30-35 तक आने दीजिए, वो ज्यादा प्रगल्भ हो जाएंगे, ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे
0: जी।
1: तो उसके लिए उन्हें वक्त भी देना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक बात है।
1: See, there are instances of people from foreign countries adopting our culture and our lifestyle, whereas our own youth are seen to be taken over by vices, by vulgarity, violence, and an overdose of so-called modernization.
0: Correct.
1: This said, the earlier we come back to our roots, the better it will be for our youth and our future generations. ये बात तो है, माने हम अपने पुराने आध्यात्मिक पद्धति के तरफ हमने आना जरूरी तो है, लेकिन इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: उसके लिए वक्त भी देना चाहिए। एंड यहां एक लोहार की नहीं चलेगी सर, 100 सोनार के ही लगेंगे। क्योंकि क्योंकि हाँ नहीं, क्योंकि हम हमारे हाथ में लोहा नहीं है सर, हमारे हाथ में सोना है। तो सोने के लिए सोनार के 100 ही लगेंगे। ये है।
0: यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी ट्रू। बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई आपने। कई बार मैं मानता हूं प्रवीण जी, और आपने इस बात को कहा तो उसी बात को मैं मान रहा हूं कि हम ये जनरेशन गैप की कहानी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हमारे से जो ऊपर थे वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, हम अपने नीचे वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं फिर। लेकिन आपने कहा भी कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे हमको दिया गया वैसे उनको भी दीजिए, तो दे विल कम अप विद समथिंग मोर ब्यूटीफुल देन वी डिड।
1: हमें वक्त दिया गया या नहीं ये अलग बात है सर। अगर हमें वक्त ना भी दिया गया हो तो भी हमने कहीं वो चेन ब्रेक करना है कि जो शक्ति हमारे साथ बरती गई वही शक्ति हमने आगे बरतनी नहीं है।
0: करेक्ट।
1: वी हैव टू मेक अ चेंज समवेयर, वी हैव टू प्ले द गेम चेंजर्स। इफ आवर पेरेंट्स वर लेस अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन।
0: करेक्ट।
1: कहीं ना कहीं हमने ये जनरेशन गैप कम करना है,
0: ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, नो डाउट।
1: बिल्कुल।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों बस 2 मिनट का एक पॉज लेते हैं, विचार करते हैं प्रवीण जी ने क्या कहा, और इस बीच में इस प्यारे से भजन को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रवीण जी के पास।

0: बहुत सुंदर भजन। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बात अभी यंग जनरेशन की ही हो रही थी, आध्यात्म की, उनकी समझ की, तो जाहिर से बात है आज की यंग जनरेशन और यूं देखा जाए तो आज का पूरा जमाना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डूबा हुआ है। अब
1: बिल्कुल
0: एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठ के बाहर आता है कि साहब, सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ता है, या उल्टा कह लें, आध्यात्म को सोशल मीडिया यूज कैसे करता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका?
1: सोशल मीडिया अध्यात्म को यूज कैसे करता है? आई मे बी कॉल्ड नेगेटिव और आई मे बी कॉल्ड लिटिल ब्लंट, बट सोशल मीडिया आजकल को यूज कर रहा है
0: जी।
1: वो एक तरह से मार्केटिंग के तौर पे यूज कर रहा है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ।
0: जी
1: बिकॉज वाई सी दिस इज बिकॉज अध्यात्म में कोई खर्चा नहीं होता। अध्यात्म हैज नो प्री क्वालिफिकेशंस। लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इस कोर्स के उतने फीस भरिए, उस कोर्स के इतने फीस भरिए, ऑनलाइन कोर्स है, आपके वक्त पे हो जाएगा, ये सारी चीजें देख ऑल्दो आई मिट साउंड सिनिकल एंड नेगेटिव, सोशल मीडिया पर्टिकुलर जॉनर ऑफ फिल्म जहां वायलेंस दिखाया जाता है, जहां गलत चीजें दिखाई जाती हैं, जहां वल्गैरिटी दिखाई जाती है, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग द यंग माइंड्स एंड इन टर्न अफेक्टिंग एंड करप्टिंग अवर सोशल फाइबर। बट इन स्पाइट ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस, to stay true to one's conscience is the test of one's spirituality. On a very hopeful note, I could say, like all other aspects of our life, is like a matchbox. Sir, देखिए एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली से आप दिया जला सकते हैं भगवान के सामने
0: जी।
1: जब अंधेरा हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बुरा काम करना हो तो आप किसी का घर भी जला सकते हैं। उससे बुरा काम करना हो
0: जी
1: तो किसी पे पेट्रोल डाल के उसे जला
0: भी जला सकते हैं।
1: सर, ये रिसोर्स हमारे पास है। इस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारी सोच, हमारे माइंडसेट पर निर्भर है।
0: बहुत सुंदर। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कर रही है, या आध्यात्म में सोशल मीडिया का हम पदार्पण या कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन देखते हैं, वो चीज प्रवीण जी ने अभी हमें बताई। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इस बात को भी विचार करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एक दुधारी तलवार है। अगर हमें चलाना ना आया तो वो हमें काट देगी, और अगर उसको सही इस्तेमाल करना आया तो वो हमारा फायदा भी कर सकती है। जैसे बताया प्रवीण जी ने बड़ी खूबसूरती से कि किस किस तरीके से यूज करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाना चाहें तो हम अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला भी सकते हैं। तो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बहुत सुंदर। चलिए विचार करिए, 2 मिनट का पॉज लीजिए, विचार कीजिए,

0: बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, सोशल मीडिया की बात हो गई, यूथ की बात हो गई, अब सोशल स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की हमारे पर असर क्या होता है, इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, प्रवीण जी थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आध्यात्म हमारा जो तनाव है, एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं और हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचने में डूबे रहते हैं, अगर इसको साधारण भाषा में और कहें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग, डूबे ही हैं हम उसमें, इसमें आध्यात्म हमारी मदद कैसे करता है, इसे आजाद होने में, मेरा कहने का मतलब है?
1: ये बात तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि जिन जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया है, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी एंड वन मोर थिंग, तो आई कैन रिलेट टू ऑल दोस थ्री सिचुएशंस विच यू सेड। यस, स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प इन मैनेजिंग एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग एंड यू नो आवर डिफिकल्ट माइंडसेट।
0: जी,
1: इंसान जब समुद्र में गिर जाता है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं। हाथ पैर चलाते वक्त जो धीरज होता है, वो धीरज होता है, होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द फोर्स दैट पुशेस अस टू कीप गोइंग।
0: राइट,
1: स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हेल्प्स अस to stay grounded and away from the, हम क्या कहते हैं उन छह चीजों को, षड्रिपु ना, कभी कभी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ना हो और इंसान अगर कम कष्टों से सक्सेस मिल जाए तो एक तरह का अहम आ जाता है। तो वैसे हालात में spirituality helps us to stay grounded and away from the six personal enemies. Personal enemies, I say, because shad ripu, shad mane che, ripu mane enemies. Shad ripu hote hain kaam, krodh, lobh, moh, mad, matsar.
0: Ji.
1: Agar spirituality se hum level headed rahe, agar hum apne man pe kabu kar paaye, तो हम इन षड्रिपों से दूर रह सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ किया हो, उसके बाद मैंने कुछ किया हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी ने भी कुछ किया था, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैंने क्या किया है।
0: जी,
1: आज मेरे पास अगर 11-12 हैं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पिताजी ने 10 किए हैं और मैंने सिर्फ 1 या 2 उसमें
0: ऐड
1: बढ़ाए।
0: जी,
1: वो जो 10 का बेस है, आई बिल्ट अप ओनली 1 or 2 ऑन दैट बेस। सो दिस लेवल हेडेड थिंकिंग, दिस ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल थिंकिंग, स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ।
0: जी,
1: स्पिरिचुअल माने ये नहीं कि आप सिर्फ नाक पकड़ के मेडिटेशन करें, ध्यान धारणा करें, प्राणायाम करें। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, लाइक आई सेड, जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखें तो हम लेवल हेडेड आसानी से रह सकते हैं।
0: जी,
1: इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, इट इज दिस स्पिरिचुअल थिंकिंग दैट कीप्स अस गोइंग विथ रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन towards

0: fulfilling our duties, responsibilities and commitments towards everyone.
1: Mm-hmm.
0: Those who are weak at heart and mind. ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन जिनका स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग जिनकी नहीं होती या कम होती है, दे टेंड टू हार्म देमसेल्व्स, इधर थ्रू वाइसेस, बुरी आदतें हों, सब्सटेंस अब्यूज हों, या फिर एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे सुसाइड हों.
1: जी,
0: स्पिरिचुअलिटी सर्व्स एज अ लाइट हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म इन अवर लाइव्स एज वी अंडरटेक द जर्नी थ्रू द ओशन ऑफ लाइफ.
1: वाओ, ब्यूटीफुल.
0: दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस इन ओवरकमिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, एंड फ्रॉम माई ओन एग्जाम्पल डिप्रेशन ऑल्सो.
1: ओके,
0: यस,
1: राइट, अमेजिंग. बड़ी गहरी बात बताई है साहब प्रवीण जी ने. इस बारे में बिल्कुल बहुत प्यार से विचार करने की आवश्यकता है. प्रवीण जी के इस बातचीत को मुझे लगता है बार बार सुनने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है. देन ओनली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवरथिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं. बहुत सुंदर. लीजिए ना एक प्यारा सा भजन पेश करता हूं, फिर हाजिर होता हूं प्रवीण जी के पास.

0: प्रवीण जी, सिंपल बात अभी तक हुई जो थोड़ी सी गंभीरता से भरी हुई थी, हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी दिव्य दर्शन का ये प्रोग्राम गंभीर ही है, हमारी जिंदगी के बारे में है। इट्स नॉट फन, इट्स सीरियस। तो अगर हम आगे बढ़े तो दो शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से आपस में मिक्स कर दिया जाता है, हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक है आध्यात्म और दूसरा है धर्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं?
1: अब देखिए, सिक्का तो एक ही है
0: जी,
1: लेकिन सिक्के के दो बाजू हो सकते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू सेपरेट कंसेप्ट्स।
0: ओके,
1: although there may be a few similarities such as showing the path of righteousness, धर्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो, आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। ना धर्म कहेगा ना स्पिरिचुअलिटी कहेगी कि आप कोई बुरा काम करो। देन दे बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन टीच यू बिलीफ एंड फेथ इन द हायर सेल्फ और द सुप्रीम सुपर ह्यूमन एंटिटी। बट देन इन स्पाइट ऑफ दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड राइटियसनेस एंड रिलीजन,
0: जी,
1: द डिफरेंस विल डेफिनेटली आउटनंबर द सिमिलैरिटीज।
0: अच्छा सर,
1: बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स।
0: जी, आह क्या बात है
1: जी, जहां जहां रिलीजन खत्म हो,
0: जहां
1: धर्म
0: रुकता हो,
1: जहां धर्म थम जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। आई से दिस बिकॉज रिलीजन बाइंड्स अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर गॉड, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, religious practices, traditions, customs, etc. to be performed through a person's life journey. धर्म कोई भी हो, हर धर्म के अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क होते हैं, अपने अपने ढांचे होते हैं
0: जी,
1: और उस धर्म के मार्ग पर उस ढांचे के अंदर ही आपको चलना पड़ता है।
0: ओके,
1: यू आर नॉट यूजुअली अलाउड टू ब्रेक द फ्रेमवर्क, यू कैनॉट बी अ गेम चेंजर। वेयर एज स्पिरिचुअलिटी लिबरेट्स यू फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड बाइंडिंग्स। देर आर नो डूज एंड डोंट्स इन स्पिरिचुअलिटी, ओनली थिंग इज योर एक्शंस हैव टू कन्फॉर्म टू योर कॉन्शियंस। धर्म में क्या करना है ये आपको वेदों में, आपने बाकी के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। आध्यात्म में क्या करना है ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जिनके बारे में पढ़े हो, आप जिनको पढ़े हो, उनके विचार अगर आपको सही लगते हैं तो आप उनके दिखाए मार्ग पर चलिए, बस इतना सा है। See, religion introduces you to the concept of God. In contrast, spirituality takes you on an inward journey and introduces you to the subconscious you, to the conscious you, which is your soul, your atma, and your inner self.
0: Ji.
1: Religion is an outside affair. Whereas spirituality is a total inside affair.
0: Oh, all right.
1: अब आप एक 100 लोगों का एक odd group ले लें, तो people can be from different religions. Yet they may share the same concept of spirituality.
0: Oh, yes.
1: That is why I feel religion and spirituality are two very separate things.
0: सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. ये बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों कि अध्यात्म और धर्म दोनों एक चीज अलग अलग चीजें हैं. और जैसा बहुत ही सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने समझाया कि जहां पर धर्म एक तरीके से पूरा होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है. बहुत खूबसूरत. ओके, विचार कीजिए इसी विचार पर एक बार और गहराई से, और तब तक लीजिए इस भजन को, आनंद लीजिए. हम वापस आते हैं.

0: बहुत सुंदर प्रवीण जी, आपने अभी तक हमें बताया अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, आज की जेनरेशन के बारे में जो कि तयशुदा तौर पर स्मार्ट है, ज्यादा रिसेप्टिव है, सिर्फ उसको सिखाने की आवश्यकता है जो कि हमारा धर्म है, हमको करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया का यूसेज के बारे में आपने बताया, फिर हमें बताया अध्यात्म के फायदे के बारे में, किस तरह से हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आज़ादी पा सकते हैं, और डिफरेंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच। अब आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि चलिए छोड़िए, धर्म तो चलिए जो हो गया, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं जाऊं लेकिन आध्यात्मिक हो जाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, स्टेप बाय स्टेप, 1, 2, 3, बिल्कुल सिंपल बेबी स्टेप्स, क्या करे कि वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े?
1: वेल, आपने मेरे ख्याल से आप ही ने जवाब दे दिया।
0: मैंने समराइज किया सर जो आपने कहा।
1: जी जी बिल्कुल नहीं, आपने दो लब्जों में उत्तर दे दिया अपने ही प्रश्न का।
0: जी
1: आपने कहा बेबी स्टेप्स, तो दैट इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं
0: जी,
1: एकदम से थोड़े ही ना चलते हैं,
0: लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं,
1: पता नहीं कितने सौ बार हम लड़खड़ाए, कितने बार हम गिरे, कितने बार हमने चोटें खाई, सर पे चोट खाई, पांव पे चोट खाई, कहीं और चोट खाया, और किसी ना किसी का हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा
0: जी।
1: लाइकवाइज फिजिकली चलने की बात हुई, फिर हम स्कूल गए, पहले दिन हमें थोड़े ना कुछ आता था
0: जी,
1: वहां भी हमने वही बेबी स्टेप्स लिए। कॉलेज में हो तो स्कूल के जो बंदिशें थी, स्कूल के जो बंधन थे, वो कॉलेज में एकदम हम लोग फ्री हो गए। तो 11th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कोई और हुए, IAS IPS हो गए,

0: जी
1: तो पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ की हमने. दैट कंसंट्रेशन आल्सो वी लर्न थ्रू बेबी स्टेप्स ओनली.
0: करेक्ट.
1: दैट इज व्हाई आई सेड कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है. लाइक वाइज इवन इन स्पिरिचुअलिटी, कोई 10 ग्रंथ एक दिन में पढ़े ना तो ये मुमकिन है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ना ही उसे कुछ हासिल होगा. तो स्पिरिचुअलिटी में भी बेबी स्टेप्स ही लेने हैं. स्पिरिचुअलिटी मेक्स द जर्नी इजियर.
0: प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा व्याख्यान हमें ठीक से समझने के लिए आपने समझाया. बहुत बहुत आभार है आपका. थैंक यू सो वेरी मच. यो इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारे साथ,
1: प्लेजर ऑलवेज.
0: थैंक यू सर. प्लीज टेक केयर.
1: थैंक यू.

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम, जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: तो बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: मैं तो अच्छी हूँ, यहाँ पर तो दिन है, आई एम इन यूएसए इन ह्यूस्टन, सो इट्स मॉर्निंग
1: जी,
2: और बहुत गर्मी भी है पर मौसम अच्छा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी इनवाइट किया है।
1: हम भी बहुत एक्साइटेड हैं मैम, और हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप वहां से समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए आज इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए आपके प्यारे से पेट बेंजी के बारे में। आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस एपिसोड।
2: सो डू आई, बहुत बेंजी की बहुत याद आ रही है।
1: आई एम
2: श्योर
1: जी। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बेंजी एक कॉकस पैनल था और 1990 से 10 इयर्स तक वो आपके फैमिली का एक हिस्सा था, बहुत ही एक क्रूशियल हिस्सा था, एक फैमिली मेंबर जैसा था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेट रखने का जो डिसीजन था, बेंजी को आपके जीवन में अपनी फैमिली में इंक्लूड करने का जो डिसीजन था, वो आपने कैसे लिया और किस तरह से वो जर्नी रही?
2: वो ऐसा हुआ कि जब हम बचपन में इंडिया में ग्रो अप कर रहे थे ना, तो डॉग्स हमारी फैमिलीज के बहुत ही अहम मेंबर्स भी हुआ करते थे
1: जी।
2: तो डिफरेंट ब्रीड्स थे ऑफ एंड ऑन, डिफरेंट साइजेस भी थे, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स की अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। बट तो मोस्टली हम तो छोटे थे तब, और इंडिया में क्या था कि जो पेट्स हम रखते थे बेसिकली वो खेलने के लिए होते थे। उसका मकसद ही ये होता था कि हम भी या फिर गार्ड डॉग्स होते थे, सेफ्टी के लिए भी लोग रखा करते थे। तो हमारे पास कुछ बड़े भी थे, लाइक जर्मन शेपर्ड या कुछ, और फिर छोटा मेरे पास एक वो भी था, रशियन सेमोइड भी थे। रशियन सेमोइड जो था वो मोर लाइक कंपेनियन, डेकोरेटिव, इनडोर इस तरह का था
1: जी।
2: और जर्मन शेपर्ड जो था वो थोड़ा बाहर का आउटडोर डॉग था, वो बहुत रखवाली करता था हमारी
1: जी जी,
2: तो कंपेनियनशिप भी हो जाती थी।
1: सरे।
2: और फैमिली को एनिमल से बहुत लगाव था
1: जी,
2: तो जिनके होते खुशी और प्यार में बहुत महसूस होता था आसपास।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इमेजिन कर सकती हूँ मैम। आप जब बेंजी को अपने जीवन में लाए तो बहुत सारी चेंजेस आपको लाने पड़े होंगे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, घर के माहौल में। तो क्या प्रेपरेशंस आपको करनी पड़ी? जैसे आपने बताया कि आपके पास हमेशा पेट्स रहे हैं, पर जब आप यूएस में थे तो वहां के हिसाब से क्या कुछ स्पेशल प्रेपरेशंस थी? किस तरह से आप चेंजेस लाए, और बेंजी ये क्यूट सा नाम किसने डिसाइड किया?
2: तो बेंजी जो था एक्चुअली जो यूएसए में एक सेलिब्रिटी टेलीविजन डॉग हुआ करता था।
1: वाओ।
2: एकदम जैसे हमारे बेंजी की जो वही उसका शक्ल भी वैसी, और उसका जो कलर था वो भी एग्जैक्टली सेम था, तो तभी शायद उसका नाम भी बेंजी पड़ा जिन्होंने भी उसको पहले लिया था
1: जी।
2: तो 70s में क्या था कि बेंजी यूज टू बी एक प्रॉपर सीरीज हुआ करती थी टेलीविजन की।
1: राइट।
2: तो तब बेंजी का नाम भी वैसे ही पड़ा, और चेंजेस जो थे काफी आए हमारी लाइफ में। और जैसे आपको पहले बताया कि इंडिया में काफी हेल्प होती थी, डोमेस्टिक हेल्प होती थी ना, तो उनको जो खाना सही टाइम पे मिले या उनको बाहर घुमाने को जाना है तो ये सब होता था। पर जब हम यूएसए में आए तब हमारे पास ये हेल्प तो नहीं थी।
1: करेक्ट।
2: और कुछ तो वो चेंजेस हमको जरूर करने पड़े थे अपनी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेट को रखना, खासकर एक जैसे कुत्ते को रखना. एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी जब हमारे बच्चे नहीं थे. तो कुत्ता और बिल्ली दोनों जैसे इकट्ठे भाई बहन की तरह ही होते थे, तो मस्ती बहुत करते थे, बहुत
1: क्यूट.
2: अगर टाइम बचेगा बाद में तो मैं आपको उनकी भी कहानियां सुना सकती हूँ, पर अभी हम लेट्स जस्ट स्टिक टू आपका जो फॉर्मेट है ना.
1: जी इसी के साथ अगर मैं आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूं और यहीं पे आपको इलैबोरेट करने का एक छोटा सा मौका दूं कि आपका बेंजी के साथ बिताया हुआ सबसे क्यूट मोमेंट जो आपको आज भी याद आता है तो हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं, तो वो कौन सा होगा?
2: पता मोमेंट्स तो बहुत थे तनुषा, क्योंकि और जैसे मैंने उसकी प्रोफाइल में शेयर किया था आपसे कि वो जो लम्हा था ना जब वो हम उसको लेने गए और हमने अपनी वैन का साइड डोर खोला तो मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था तो वो दरवाजा तो खुला रखने के लिए और ये दौड़ के आके हमारी बस वैन के अंदर घुस गया और बैक सीट के ऊपर बैठ गया
1: जब आप उसे लेने गए थे उस टाइम.
2: हक के साथ एकदम हक से और एकदम डट के और बिल्कुल जैसे हम उसको देख रहे हैं कि ये कौन है डॉगी, इतना सुंदर कुत्ता है और ये तो नहीं हो सकता बिकॉज वाई वुड एनीबडी वॉन्ट टू पार्ट विद सच अ ब्यूटिफुल क्रीचर, यू नो, इस तरह से हमको लगा. तो ये बेंजी आके हमारे बैठ के आके पास में और कभी कभी लगता है और वो उठ ही नहीं रहा था वहां से, बट समझ में आया बाद में कि यही वो था जिसको हम लेने आए थे और इसका उतरना है. तो मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टिंक्टिवली कि जानवर हमें हमसे ज्यादा जांच लेते हैं, जैसे कौन उनसे प्यार करेगा या कौन प्यार करता है, whether we are animal lovers or not. तो you know, इस तरह से हमें लगा. तो अब वो हिले ही ना वहां से तो अब वो हमारा ही हो गया. तो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हमें मेरी मेमोरी में रहता है कि वो जो लम्हा था ना उसने हमको चूज किया, हमने उसको नहीं चूज किया, यू नो,
1: जिस तरह से यू नो हम अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं उसी तरह से कहीं कई बार पेट्स हम पेट्स को नहीं, पेट्स हमें चूज करते हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि वो इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं कि कौन उन्हें किस तरह का प्यार दे सकता है, केयर दे सकता है, तो बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं स्पेशली डॉग्स. तो उसमें आई थिंक दे एस एट इट. एंड आई कैन इमेजिन आपने कितने खूबसूरत लम्हे बेंजी के साथ बिताए होंगे उन 10 सालों में. इसी गहरी बात के साथ, इन्हीं प्यार भरी बातों में हम एक पहला गीत सुनेंगे हमारा आज का. मैम अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बताएं.
2: नहीं कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी फरमाइश बताइए और बाद में अगर आपको टाइम हो बाद में तो मैं कुछ और भी लम्हे शेयर करूंगी आपके साथ.
1: बिल्कुल मैम, समय ही समय है आज तो हमारे पास, बहुत सारी बातें करेंगे आगे. अभी चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत, फिल्म दूसरा आदमी.

0: क्या खूबसूरत गीत है ये। आगे चलते हैं मैम, आपके हिसाब से, बिकॉज आपने अगेन, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अगेन कि आपके पास पेट्स एनिमल्स हमेशा रहे, यू ऑलवेज बिन अ पेट ओनर, अ पेट पेरेंट, तो आप बिकॉज आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें कि पेट केयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है।
1: मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो पेट्स प्यार मांगते हैं और उसके साथ साथ जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह और उसके साथ जो सही वक्त पर और सही किस्म का खाना हो उनको घुमाना है, पर उनकी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी मेडिकल केयर, उनके वैक्सीनेशन के साथ अपडेटेड रहना हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब पेट केयर में शामिल होती हैं। उसके बगैर जैसे अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए आप केयर करते हैं, उसी तरह इनके साथ भी पेश आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और मैं आपको इसके साथ साथ बताती चलूं कि हमारा बेंजी एक एपिलेप्टिक था।
0: हाँ,
1: उसको एक मेडिकल कंडीशन थी जो जब वो हमारे घर पे आ गया उसके दो तीन दिन के बाद हमने नोट किया कि तो फ्राइडे शाम की बात कर रही हूँ और फ्राइडे थी और सडनली मैंने देखा बेंजी को सीजर्स हो रहे हैं। तो मैंने तो कभी ना सोचा था ना कभी सुना था कि डॉग्स को भी
0: एपिलेप्सी होती है।
1: हो सकती है
0: जी।
1: तो आई टोटली फ्रीक आउट, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है इसको। और फ्राइडे नाइट थी, सब कुछ बंद था, कोई वेटनेरियन नहीं था कोई, और हम लोग इस शहर में भी थोड़े बहुत नए थे तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे कि कोई पेट हॉस्पिटल है पास है कुछ। तो जब तक हमको उन दिनों में टेलीफोन डायरेक्टरीज भी हुआ करती थी, ऑनलाइन तो कुछ नहीं अब ना, मैं आपको 90s की बात कर रही हूँ। तो वो क्या हुआ, जब तक मुझे एक फोन नंबर मिला एक एनिमल हॉस्पिटल का, तब तक बेंजी का सीजर खत्म हो गया। ओके, और फिर जब मेरी बात हुई जिन्होंने भी फोन उठाया दूसरी तरफ से, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कौन सी ब्रीड है आपकी। हमने कॉकर स्पैनियल है, तो वो बोले कि कॉकर स्पैनियल्स में सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है फॉर सीजर्स।
0: ओ माय,
1: मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी क्योंकि कभी कॉकर स्पैनियल तो ये फर्स्ट टाइम ही हमारे घर आया था
0: जी।
1: तो उससे बहुत ज्यादा जानकारी बढ़ी हमारी। और फिर उसके बाद एनीवे जब मंडे आया तो हम उसको अपने वेटनेरियन के पास ले गए यहाँ पे, तो देन ही वाज प्लेस्ड ऑन फिनोबार्बिटॉल जो एंटी सीजर मेडिकेशन होती है ना
0: जी जी।
1: तो वो बेंजी को दिन में दो बार ही मिला करती थी और तो उसकी सेफ्टी के लिए, और मतलब वो उसको हम एक ब्रेड के उसके अंदर डाल के ऊपर से फेंकते थे तो वो एकदम मुंह से कैच करता था और खा जाता था
0: जी।
1: तो नहीं, इट्स नॉट ए वेरी टेस्टी। हाँ, और फिर उसके लिए हमने एक पोर्टेबल डॉग कैरियर भी लेके रखा हुआ था घर पे, क्योंकि जब भी हम घर छोड़ के जाते थे अगर उसको सीजर होता है तो ही वॉज इन साइड अ कंटेन्ड स्पेस और उसको इंजरी होने से बचाता था वो। हाँ
0: करेक्ट, कि वो खुद को भी हार्म नहीं करे एंड सराउंडिंग्स को भी हार्म ना कर पाए ऐसी सिचुएशन में। बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा मैम ऐसी सिचुएशन में उसको, आई एम श्योर एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्यार भी देना पड़ा होगा। और जैसे आपने बहुत सरलता और सुंदरता से बताया कि सबसे पहली चीज तो प्यार है और फिर उसके बाद बाकी सभी चीजें आती हैं। जैसे आपके डॉग को स्पेशल कंडीशन थी तो आई एम श्योर स्पेशल केयर स्पेशल लव सभी चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना पड़ा होगा उन 10 सालों में जब आपके पास बेंजी था। तो बहुत ही जी। क्या इससे आपके घर में आपके जो बच्चे थे, आई एम श्योर आपके बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी, उनने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की होंगी, तो क्या आपको लगता है कि पेट्स घर में लाना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरह से वो उन्हें शेप करता है?
1: मेरे ख्याल में तो इसका आंसर मैं यस बोलूंगी एंड आई कैन ओनली स्पीक अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हमारे बच्चों ने भी बेंजी की प्रेजेंस से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, काइंडनेस सीखी, एम्पथी सीखी और कैसे एनिमल्स की तरफ प्यार दिखाना। और उनकी रिस्पेक्ट करना जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, क्योंकि अब वो तो हमारा फैमिली मेंबर ही हो गया था ना. तो बच्चों को भी बहुत मतलब सेंसिटिविटी रही इस कंडीशन से जो भी थी, क्योंकि फिनोबार्बिटॉल के साथ क्या होता है कि एंटी सीजर मेडिसिन होती है तो उसके साथ थोड़ी सेडेशन भी आ जाती है ना. बहुत एक्टिव नहीं, तो होता क्या था कि नॉर्मली डॉग्स के साथ बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खूब करते हैं, और बेंजी भी करता था जब अपने मूड में होता था तो. पर बिकॉज उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की थी तो उसका थोड़ा सा यू नो सेडेशन इफेक्ट भी होता था.
0: बहुत एक्टिव नहीं रहता था. जी जी जी बिल्कुल, जैसे घर में एक छोटा बच्चा जब बीमार होता है.

0: तो हम सब उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, तो ये तो बेजुबान जानवर है. तो आई कैन इमेजिन एंड दिस इज वेरी सैड टू नो दैट ही हैड दिस कंडीशन. हाउएवर आई एम वेरी प्राउड कि आपने उसे 10 साल अपने साथ रखा और इतनी केयर और इतना प्यार दिया. बहुत ही खूबसूरत बात है मैम ये. इसी के साथ क्या ऐसे भी मोमेंट्स होते थे जब आप लो फील कर रहे हैं, घर का माहौल थोड़ा सा लो है, तो बेंजी के कुछ रिएक्शंस ऐसे हों जो आपको चीयर अप करने की कोशिश करता हो? क्या ऐसे कभी एक्सपीरियंसेस हुए?
1: ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए. मैंने कहा ना, एनिमल्स ये इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं जब आप उदास हो या आप लो फील कर रहे हो.
0: हाँ जी.
1: और ये तो कभी कभी ह्यूमंस भी नहीं फील करते कभी कभी बहुत.
0: नहीं, देखते हुए भी अनजान बनते
1: तो
0: हैं हम, साथ रहते हुए भी.
1: हाँ, और ये एनिमल्स में एक खासी जैसे होता है, इट्स अनदर सेंस. तो जब मेरा बेंजी मुझे इस तरह कभी देखता था या फिर बच्चों को भी इस तरह होता था, तो बहुत प्यार से जाके पास में बैठ के अपना एक पॉ उसकी गोद में रखता था, मेरी गोद में रखता था, कि और जैसे ट्राइंग टू टेल मी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से. जस्ट
0: अडोरेबल.
1: जस्ट रीअश्योरिंग दैट मैं हूं ना, सब सब ठीक हो जाएगा, जो रीअश्योर कराता था मुझे.
0: अडोरेबल.
1: इस तरह वो फीलिंग आती थी मुझे. और मैं संगीत में काफी इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैं जब भी रियाज करती थी तो ऑफकोर्स मेरे मुंह पे तो खुशी आती ही थी, बट बेंजी को भी लगता था कि ये म्यूजिक कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी. और वो मेरी बेस्ट ऑडियंस भी होता था, वो इतने प्यार से आके सुनता था. सच्ची कह रही हूँ, कभी कभी धीरे धीरे उसके मुंह से हमको हमिंग भी सुनाई देती थी.
0: वाओ.
1: आई एम टेलिंग यू, इट वॉज सच अ मेमोरेबल
0: आई नो, एंड सो यूनिक.
1: बहुत यूनिक था, क्योंकि कभी कभी अगर घर के आसपास से एम्बुलेंस भी जा रही है ना, सायरन बजता था,
0: जी.
1: तो ये सायरन की आवाज निकालने की कोशिश भी करता था.
0: ओह, सच अ म्यूजिकल पेट. आई थिंक द पेट पेरेंट ग्रू ऑन बेंजी. आपका जो मेलोडी है दैट ग्रू ऑन हिम एंड ही बिकेम एज मेलोडियस एज यू. अब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ साझा कर दी है कि आप म्यूजिक में बहुत इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हैं, जो मैं वैसे तो जानती हूँ, बट हमारे श्रोताओं के लिए भी बता दूं कि बिंदु मैम बहुत खूबसूरत गायकी करती हैं. तो एंड में आप हमें एक गीत तो जरूर सुनाएंगे बेंजी के नाम.
1: बेंजी के नाम से, ओ माय गुडनेस, ये तो यू आर कैचिंग मी टोटली अनअवेयर,
0: आप कोई सा भी गीत, एनीथिंग
1: बट
0: एनीथिंग एनीथिंग दैट कम्स टू यू नेचुरली, बट वो डेडिकेटेड होगा बेंजी को.
1: जरूर जरूर कोशिश करूंगी. जो मेरे बच्चे भी गाया करते थे उसके लिए मैं भी गाती थी
0: जी
1: कभी कभी. तो हाँ,
0: जी
1: तो मैं आपको बता रही हूँ, तो कभी कभी वो जैसे बोला ना, अपना एक पॉ रखता था मेरे ऊपर और जस्ट रीअश्योर कराने के लिए. फिर कभी कभी जाके मेरी म्यूजिक इक्विपमेंट के पास या मेरे माइक के पास बैठ जाता था कि मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तुम गाओ. वेरी वेरी क्यूट मोमेंट्स. हाँ, बहुत ही अच्छे मोमेंट्स
0: वेरी
1: रहे वो
0: मेमोरेबल.
1: मेरे पास.
0: या वेरी मेमोरेबल. चलिए, इन्हीं प्यारी बातों, इन्हीं सुरीली बातों के बीच में हम एक और गीत सुनेंगे. आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, फिल्म कस्मे वादे.

0: वेलकम बैक बिंदु मैम। गीत से पहले हम बहुत सारी गीतों भरी बातें कर रहे थे, कैसे बेंजी भी एक म्यूजिकल डॉग था और आपके म्यूजिक लेसन्स में, आपकी म्यूजिक लर्निंग में आपका साथ देता था, आपकी ऑडियंस बनता था और खुद भी गाने की कोशिश करता था। तो ये तो हुई मैम मजे की बातें। अब बिकॉज हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पेट्स की तरफ जो अवेयरनेस है, जो नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेंसिटिव हुए हैं इन द लास्ट 1 डेकेड आई थिंक। तो आपकी तरफ से, बिकॉज यू सच एन एक्सपीरियंस्ड पेट ओनर एंड पेट पेरेंट, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: तनुषा, ऐसा है कि पेट्स को लेने से पहले बहुत सारी मैं इंडिया की बात भी कर रही हूँ कि लोग रखते हैं जस्ट फॉर लाइक अ स्टेटस सिंबल या फिर अ प्ले थिंग या फिर सुंदर लगता है तो उसको रख लो घर में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, जो पेट्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, आप उनको पहले समझिए एंड डोंट गेट पेट्स इफ यू आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देम। अभी इंडिया में बात हमारी अलग थी क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प काफी हो जाती थी। घर में हमारी मदर भी थी जो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थी कि इसकी ग्रूमिंग सही होनी चाहिए, उसको रोज ब्रश करना चाहिए, उसकी
0: वाओ
1: खुराक ठीक हो, हाँ सब कुछ, और उसको घुमाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, विच ऑल्सो एक्चुअली हमें भी बहुत हेल्प करता है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो अपना भी माइंड क्लियर होता है, डिस्ट्रेस करता है
0: एब्सोल्युटली
1: हमको, बहुत सारी मसलों के हमको हल मिल जाते हैं जो दिमाग में चल रहे हैं। तो हमारी मम्मी बहुत ही पर्टिकुलर थी कि इनको सही तरीके से इनकी देखभाल की जाए, पेट लेने से पहले समझ लो कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और फिर डिसिप्लिनिंग द पेट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
0: एब्सोल्युटली
1: क्योंकि कई पेट्स को आप अगर ठीक से नहीं डिसिप्लिन करेंगे या उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे थोड़ी बहुत, तो कभी कभी बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। फिर और फिर वो किसी को जाके बाइट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, तो वो भी
0: इट्स वेरी
1: उसको समझना
0: डेंजरस।
1: चाहिए। हाँ, अभी जरूर इंडिया में बात अलग है पर यूएसए में क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर तो पीपल कैन फाइल अ लॉ सूट, आपके किसी को काट लिया जाके, आपने अगर लीश पे नहीं रखा है डॉग को, आप अगर घुमाने जा रहे हैं तो देर इज अ प्रॉपर लीश लॉ
0: राइट, इट्स अ टॉट, यस, लॉ
1: एंड
0: ऑफ टॉट।
1: यस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत अरसा हो गया है इंडिया को छोड़े मुझे, तो मुझे पता नहीं शायद वहां पे भी कुछ तब्दीली होगी, पर यहाँ पे तो ये जबरदस्त है।
0: बिल्कुल
1: और इसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी अगर
0: जी
1: टाइम परमिट
0: जी
1: करेगा
0: जी
1: तो।
0: बिल्कुल
1: वो बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। मेरे डॉग के साथ नहीं हुआ पर मैंने किसी और डॉग को रिसासिटेट करके जान बचाई थी। तो
0: वाओ
1: इस तरह से मैं आपको वो भी बता दूंगी
0: जी।
1: बाद में अगर
0: नहीं,
1: टाइम हो तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, यू कैन शेयर इट राइट अवे, बिल्कुल टाइम है जी।
1: तो वो ऐसा था कि हमारी नेबरहुड में एक डॉग ओनर थे, हमको जानते भी थे, हमारे देसी थे, सिंधी लोग थे। उनका एक छोटा सा डॉग था, शिवावा था। अब शिवावा को आपने देखा है कि वो इतना छोटा होता है कि आपके पॉकेट में भी आ सकता है, इट्स अ वेरी स्मॉल डॉग। ठीक है, तो मैं अपनी नेबरहुड में मम्मी कहीं पे मुझे विजिट कर रही थी और किसी के घर पे थी, उनको लेने जा रही थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी। तो रेजिडेंशियल एरिया में तो जगह जगह पे वो भी होते हैं ना, आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी, तो यू कैन नॉट इवन ड्राइव वेरी फास्ट, 10 या 15 मील की स्पीड के ऊपर आप चला रहे हैं। सडनली मैंने देखा, दोपहर का टाइम था, इट वाज आफ्टरनून, और लोगों के घर भी बड़े बड़े हैं, लॉन्स हैं यहाँ पे, तो किसी का स्प्रिंकलर भी चल रहा था। और ये जो अपने डॉग को घुमा रहे थे, ये सड़क के एक तरफ चल रहे थे और जो इनका डॉग था वो सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था, साइड वॉक पे। अभी सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार में कुछ अटका जैसे, तो
0: ओह शिट।
1: हाँ, और मैंने अपनी रियर व्यू से, अपनी कार की रियर व्यू मिरर से देखा तो देखा कि ये जनाब जो इनके ओनर थे वो आके उन्होंने कोई चीज अपने हाथ में उठाई, छोटी सी तो थे वो द डॉग, तो मेरे से रहा नहीं गया। मुझे ऐसे लगा बहुत, हालांकि मेरी अपनी फैमिली में इमरजेंसी थी, मम्मी को लेने जा रही थी, बट आई टर्न माई कार अराउंड और तो लगा कि अरे मुझे तो ऐसे लगता है मैंने किसी का पेट को हिट किया है। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं जाके उसको शिवावा को अपने हाथ में उठाया, एंड आप मानेंगे नहीं, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसकी आंखें एकदम खुली थी और डायलेटेड थे उसके पिपल्स। और बिकॉज मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू, तो ये चीजों पे गौर भी करती हूँ मैं, तो एकदम नेचुरल आता है मेरे साथ। देखा कि दिस डॉग प्रैक्टिकली डेड,
0: ओह माय,
1: यू नो। हाँ, तो मैंने उसको कुत्ते को हाथ में उठाया एंड द फर्स्ट, और मैं सीपीआर इंस्ट्रक्टर भी हूँ
0: जी
1: हेल्थ केयर फैसिलिटी में,
0: जी।
1: तो वो एकदम जैसे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि ये तो

0: इंस्ट्रक्शन देने शुरू करे
1: right.
0: अंदर से मैंने आई वॉज प्रेइंग कि ये भगवान इस कुत्ते को बचा लो
1: बिल्कुल
0: जिस तरह से और क्योंकि वो जो थे उनके ओनर थे वो भी आए ऊंची ऊंची रो रहे हैं उस कुत्ते का नाम था गोंजो
1: राइट right.
0: तो वो मैं भी आज तक भूली हूँ इस बात को बहुत अरसा हो गया है बट ही केम ऑन वो गोंजो डोंट गो गोंजो डोंट गो इस तरह से वो मुझे सीख रहे थे और विद इन 5 to 7 minutes की जब मैंने कंप्रेशन करी तो सडनली उसने अपनी आंख को झपका
1: ओह माय
0: हाँ उसकी आंखें एकदम खुली थी ना बताया एकदम डायलेटेड वगैरह तो उसने अपनी आंख को झपका तो मैंने थोड़ी सी दिल में उम्मीद आ गई कि ये
1: बच सकता है
0: कमिंग बैक टू और जिस घर के बाहर ये सब हो रहा था ये उनका घर भी नहीं था ये तो उनके घर से काफी दूर था बट उनका लॉन स्प्रिंकलर चल रहा था वहां पे तो मैंने उसकी डॉग की तो जो जीप थी वो तो ऑलरेडी बाहर लटक रही थी तो हमने थोड़ा सा पानी लेके उसकी जीप के ऊपर रखा तो उसने उसको पी भी लिया
1: जी
0: सो यू नो दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ
1: ओह माय गॉड
0: और तो फिर अभी मुझे आगे जाना था अपनी मम्मी को पिकअप करना था कहीं से तो थोड़ा इमरजेंसी था मेरे लिए तो मैंने इनको बोला आप ऐसा कीजिए कि आप इसको अपने वेट के पास ले जाइए और इसको चेकअप करा लें अभी मुझे आगे जाना है तो बोले कि हमारा तो वेट ही नहीं है
1: बताएं
0: तो मुझे अंदर से गुस्सा हाँ मुझे इतना अंदर से गुस्सा आया आई टेल यू तो वही मिला नेबरहुड के बाहर ही एक शॉपिंग स्ट्रिप थी वहाँ पे उनका
1: वेट
0: हॉस्पिटल था तो अपने डॉग को वहाँ ले जाती थी अभी इतना महंगा कुत्ता आपने रखा है शिवावा रखा है और आपके पास इसका
1: वेट नहीं है
0: हाँ तो इसकी भी प्रॉपर केयर आप कराइए तो सही तो मैंने उनको बोला लीजिए मेरी चाबी पकड़िए आप मेरी कार चलाइए और मैं आपके कुत्ते को ऑब्जर्व करती रहूंगी एंड आई विल गाइड यू आप हमारे वेट के पास मैं आपको ले चलती हूँ
1: राइट इमेजिन
0: मैंने ऐसे ही किया हाँ तो मैं उसको ले गई वहाँ पे मेरी मम्मी वेट कर रही है कि देर हो गई अभी एनीवे मुझे जैसे लगा ना किसी जैसे ह्यूमन की लाइफ हम बचा रहे हैं वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको फॉलो अप भी करना है तो मैं अपने वेट के पास इनको ले गई और उनका नाम डॉक्टर कीडो था
1: जी
0: और अभी भी है उनका पेट हॉस्पिटल वहीं पे
1: जी
0: तो एनीवे उनको हमने बताया पूरा किस्सा मैंने कहा आप नाउ दिस डॉग इज योर्स और मेरे को जाना है आगे तो आप उसको प्लीज रखिए अभी वहां से मैं निकली बाहर और मम्मी को मैंने वही नेबरहुड में से लिया और मम्मी को पूरा किस्सा सुनाया
1: जी।
0: तो अब मम्मी भी तो डॉग लवर है तो उनको एकदम इतनी कंसर्न हो गई कि ओए वो कुत्ता वो पंजाबी हम लोग हैं
1: जी,
0: वो कुत्ता बेचारा
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो ये सब हुआ अच्छा उसके बाद वापसी पे हम मम्मी को जहाँ भी ले जाना था मैं लेके गई वापसी पे मम्मी ने कहा नहीं वेट के पास चलो वेट के पास चलो
1: अगर
0: हम गए तो पूछे तो द डॉक्टर टोल्ड मी कि मिसेस मल्होत्रा व्हाटएवर यू डिड दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ बिकॉज ये मर गया था
1: राइट राइट
0: इसके ऊपर एक हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट हो गया था
1: राइट
0: तो वो बोला कि हमने इसको ओवरनाइट रखेंगे वी विल ऑब्जर्व है तो इस तरह से उसको उन्होंने ओवरनाइट रखा और वो कुत्ता उसके बाद काफी साल जिया और उसके जो ओनर थे वो मुझे आज तक भी फॉरगिव नहीं कर पाए कि तुमने हमारे कुत्ते को हिट किया
1: बताएं जबकि आपने सेव किया
0: दिन रात को पता क्या हुआ जब हमने रात को उनको फोन किया उनको मैं जानती थी हमारे इंडियन लोग ही थे
1: जी।
0: तो मैंने उनको पूछा वो तो मेरे ऊपर एकदम गुस्से हो गए कि कॉस्टिंग मनी पता नहीं $120 थे या कुछ ऐसा था तो बोले कि इट्स कॉस्टिंग अस सो मच एंड यू नीड टू पे फॉर इट
1: ऑफ कोर्स दे वर थिंकिंग इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पेट यस
0: You know, like, tell me how many people would... हम तो अपना निकल ही जाते हैं
1: नहीं रुकते भी नहीं है मैम यस यस पीपल डोंट स्टॉप
0: नहीं सो व्हाट आई डिड एक्चुअली उसी हमारे को हमारे फ्रेंड्स के बेटी और उनका जो हस्बैंड थे वो अटॉर्नीज हैं तो मैंने उनको फोन किया देखिए आप मुझे बताइए ये ऐसा किस्सा हुआ और इज देयर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो मैं उनको पे कर दूंगी जाके तो गाड़ी से तो मेरी टकराया बट एनीवे उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बोला आंटी यू डोंट

0: owe them anything at all, but in anything, they broke the leash law.
1: Right.
0: आपने तो जिंदगी जान बचाई है.
1: Yes.
0: You know,
1: even you drove it to the vet.
0: Will do what you did.
1: Yes.
0: So anyway, तो उसने बोला, बट हमारे जो लोकल न्यूज पेपर था ना, क्रॉनिकल
1: नाम
0: है, तो बोले बट आंटी दिस विल मेक अ ग्रेट स्टोरी फॉर द
1: हिस्ट्रीड.
0: So,
1: indeed,
0: I'm telling you, so this also happened in my life, and I always, you know, share, I teach CPR.
1: Yeah, absolutely.
0: कुछ करे ना करे पर compression जरूर कीजिए.
1: Right.
0: You know, because heart को वापस लाना बहुत crucial रहता है. और चाहे वो जानवर हो, चाहे वो humans हो, तो ये चीज मेरे बड़ा रेयर एक्सपीरियंस होता है किसी को भी इस तरह का.
1: एब्सोल्युटली वेरी रेयर एंड या वेरी लाइक यू नो सिग्निफिकेंट इन योर जर्नी वेर इन कई लोग सच में मतलब ऐसी चीजों को भी अपॉर्चुनिटी समझ के उसको मिंट करने की कोशिश करते हैं जबकि गलती उन्हीं की होती है और उनके पास वेट भी नहीं है विच इज अमेजिंग फॉर मी. आई मीन एंड यू पेटिंग अ डॉग दैट इज यू नो एज एक्सपेंसिव लाइक यू मेंशन एंड एज यू नो हाई मेंटेनेंस एंड उसके बाद भी आप सामने वाले के ऊपर जबकि सामने वाला इज द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ योर पेट एंड ड्रोव यू टू द वेट ऑल्सो. सो हाउएवर it's amazing that you know the way you handle the situation and I'm so happy that the pet survived. You know, sabse badi baat ki the pet survived. Gonzo, right? Yeah, beautiful. So,
0: that's
1: beautiful.
0: Significant in my life too.
1: Yeah.
0: I जरूर होता है तो share कर देती हूँ.
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल. चलिए, इन्हीं खूबसूरत बातों के बीच, इन्हीं गहरी बातों के बीच, इन्हीं जीवन के experiences के बीच हम एक और गीत का break लेंगे जो जीवन से ही जुड़ा हुआ है, जीवन का ही फलसफा है. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले. फिल्म बड़े दिल वाले.

0: आगे चलते हैं मैम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप अपना जीवन पेट्स के बिना इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि आपने इतनी लंबी जीवन जो जर्नी आपकी रही है, उसमें पेट्स आपकी जीवन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। तो क्या आपका जीवन पेट्स के बिना आज वैसा ही है? क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जीवन पेट्स के बिना होगा, और किस तरह का वो एक्सपीरियंस है? और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो लाइफ लेसन अगर कुछ सीखा हो अपने पेट से, तो वो क्या होगा?
1: ऐसा है कि पेट्स के साथ एक तो अनकंडीशनल लव, यू नो, और लॉयल्टी एंड टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट,
0: यू नो,
1: ये चीजें बहुत अहम रहती हैं। क्योंकि जब हम अपने पेट्स को डिसिप्लिन करते हैं, उन्होंने कुछ गलती कर दी या कुछ उनको मना किया कि कार्पेट पे नहीं जाना है, और वो कभी कभी मुझे ट्राई करता था जरूर, यू नो, कि माँ देख तो नहीं रही है तो मैं जा रहा हूँ, बैठूंगा जाके या कुछ करूंगा। और खासकर जब घर में ऐसे होते हैं, कोई आ गया घर में, तो देन दे थिंक जस्ट लाइक चिल्ड्रन की, ओह आई कैन गेट अवे विद दिस,
0: मैं
1: करता हूँ, है ना? तो इस तरह से होता था। पर फिर उनको डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा न्यूज पेपर को रोल करके, जो मम्मी ने सिखाया था मुझे कि उन्होंने शायद पढ़ा था या फिर जब पेट केयर का, तो कि आप एक न्यूज़पेपर को जैसे रोल करके ना उसको करें, तो उससे चोट नहीं लगती है एनिमल को, पर उसकी जो आवाज होती है उससे से वो चौंक जाते हैं, उनको पता है कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर वो आगे से नहीं करेंगे। तो वो एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अ डॉग स्पेशली, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ऑफकोर्स लॉयल्टी तो मैंने बोला कि वो भी उन्हीं से सीखी, और लिविंग इन द प्रेजेंट, कि हम अपने पास्ट में नहीं चले गए, फ्यूचर का सोचना बंद कर दिया, तो एंजॉय द मोमेंट, उसी मोमेंट में रहे, तो वो ठीक था। और दूसरा सवाल, वो मैंने कहा कि बहुत सालों से अब मेरे पास कोई पेट नहीं है, क्योंकि मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ। हमारे हस्बैंड जो है वो एक्सटेंसिव पीरियड्स के लिए ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं अपने अपने घरों में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैं, और मैं भी मेरी भी जॉब है जो आई कंटिन्यू टू वर्क, तो बहुत ही मुझे लगता है कि क्रूअल होगा कि अगर कुत्ते को हम पालेंगे तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल कर पाते हैं।
0: ब्यूटीफुल, यस,
1: क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई भी पेट।
0: करेक्ट करेक्ट, बट डू यू फील अ डिफरेंस लाइक अ वैक्यूम जब आपके पास पेट था, और जब यू नो अब यू डोंट हैव अ कंपेनियन एंड अब बच्चे भी बाहर हैं, डू यू फील दैट वैक्यूम, और डू यू एवर थिंक कि नहीं शायद ले आऊं या कुछ कोई एक छोटा सा पेट रख लूं, ऐसा कभी कुछ मन में आता है मैम?
1: मन में आता जरूर है, और रख भी सकूं तो नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बहुत सेवा करनी पड़ती है जैसे बोला। और देख रही थी टीवी पे आजकल एक वुफी करके एक डॉग है, हु इज लाइक एन एआई जनरेटेड डॉग, और वो एकदम और वो क्या है कि एकदम रियल डॉग की तरह है, जो आपके आसपास घूमता है, आपकी कमांड्स भी फॉलो करता है, आप उसको वॉक के लिए भी ले जा सकती हैं। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जाके एक वुफी ले आऊं अपने लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एआई का जमाना है तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही मैम आपसे, बहुत ही सरल और साझा, सरल और सटीक तरीके से आपने अपनी बातें साझा की। अब अंत में, जैसे मैंने कहा था, बिकॉज अब गाती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दें जो हम बेंजी को डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: बेंजी को डेडिकेट करती हूँ एक सॉन्ग, मेरे बच्चे और मैं, बच्चे भी छोटे थे तब, तो हमें गाना इंग्लिश में है, गाया करते थे
0: जी।
1: और तो वो उसकी दो लाइनें सुना सकती हूँ आपको।
0: बिल्कुल।
1: सो इट गोज लाइक दिस, यू आर माई सनशाइन, माई ओन।

0: love you. Keep my Please don't take my sunshine away.
1: Yeah, this is a beautiful song.
0: I'm sorry,
1: very beautiful song. Yeah, it's a very sunny and lovely song. I've heard it before. It's a beautiful song. And I hope ye song aapki feelings, hamari feelings, puri SN family ki feelings, Benji tak heavens mein zarur pahunchi hongi. Aaj humne Benji ko yaad kiya aur usse ye geet dedicate kiya, ye episode dedicate kiya. So I hope Benji is smiling at us from the heavens above. Thank you so much,
0: Bindu
1: ma'am.
0: Thank you, dear, for the opportunity, Tanusha. God bless you.
1: Thank you so much. Aaj humare saath judne ke liye aur itni achhi baatein saajha karne ke liye.
0: Sure, it was a pleasure.
1: Bindu ji aur Benji ki kahani waqai dil ko chhu lene wali hai. बेंजी की पहली मुलाकात बिंदु जी के परिवार से ऐसी थी जैसे उसने पहली ही मुलाकात में सबको अपना बना लिया और फिर 10 सालों तक प्यार और वफादारी के साथ उस रिश्ते को निभाया और बहुत खास बनाया। बिंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज हमारे साथ इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें साझा की और हम सब ये एपिसोड बेंजी को डेडिकेट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग, सिर्फ एसएन रेडियो पर। याद रखिए, पेट्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनते हैं, लेकिन अपनी यादों से हमारी जिंदगी भर मुस्कुराने की वजह दे जाते हैं। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जिंदगी जीने के तीन नियम। पहला नियम, ये व्यक्ति कहते हैं, चमकती आंखों से अपने आसपास की पूरी दुनिया को देखो। महान रहस्य ज्यादातर अजीबोगरीब जगहों पर होते हैं। जो चमत्कारों पर भरोसा नहीं रखते, उनके साथ चमत्कार होते भी नहीं। तो भैया, आंखों से जितना हम देख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे हो रहा होता है। जी हां, फिर चीजें दिखती तभी हैं जब खोजने वाली नजरें हों। तो ध्यान दीजिए अपनी चारों तरफ, ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। नियम नंबर दो, लक्ष्य होना अच्छा है, पर उससे हमारे अच्छे गुणों का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इन्होंने तो कह दिया, मतलब क्या हुआ। जीवन में कुछ बड़े सपने होने चाहिए। देखिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की गई कोशिशें भी हमें तरक्की की मार्ग पर ले जाती हैं। कोशिश तो करें, हमारी मेहनत हमें मांझती है, तैयार करती है। हमारा जुनून हमें बहुत कुछ बदल डालता है। कोशिश तो करें, पर किसी भी कीमत पर इच्छाओं को पूरा करने की जिद हमें कहीं नहीं ले जाती। जिद मत करिए, पैशनेट रखिए और काम करते तो रहिए। नियम नंबर तीन, स्वीकार करें और फिर काम करें। इस पल में जो कुछ भी सामने है, उसे मान लें, जैसे उसे आपने ही चुना हो। अपने आज का विरोध ना करें, जबरदस्ती अपोज ना करें उसका। उसे फ्रेंड बनाएं, शत्रु नहीं। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। कल कैसा होगा हम कुछ नहीं कह सकते, पर कल को बेहतर बनाने के लिए हम आज मेहनत तो देखिए जरूर कर सकते हैं, पर इसके लिए आज को समझना भी तो जरूरी है। तो समझिए, आज में खुश रहिए, आज को समझिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दस्तकें। दरवाजे पर दी गई दस्तकें हैरत की आवाजें हैं। ये पूछना कि बाहर कौन है, दिल का जोर जोर से धड़कना है। दरवाजे खोलना प्रार्थनाएं हैं। दरवाजे के उस तरफ उसका नहीं होना कविता है। आंखें बंद करना और दरवाजों की दस्तक पर हैरान होना प्रेम है, प्रतीक्षा है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

एक बार महर्षि व्यास ने अपने बेटे सुखदेव को पढ़ने के लिए राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक का महल देखकर सुखदेव जी को लगा कि राजा उन्हें क्या उपदेश दे पाएंगे, बेकार में ही पिताजी ने इनके पास मुझे भेज दिया है। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए। लेकिन सुखदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार न कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस सुखदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आज आपको बताता हूं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हां, इनका नाम था कैलाश सांखला। अपने यहां कहा भी गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब वीर ही इस धरती का भोग करेगा। यही बात व्यवहार में जब बहुत मजबूत हो गई तो अपना देश गुलाम हो गया। हमारे ज्यादातर कथित वीर अपने दुश्मनों को धूल चटाने के बजाय बाघ मारने में मस्त हो गए। 1875 से 1925 के बीच कथित वीर राजा राजकुमारों और कथित अंग्रेज बहादुरों ने 80,000 बाघों का कत्ल कर दिया। 1947 में अनुमानतः 40,000 बाघ थे। मैसूर के एक महाराजा और उनके मेहमानों ने 1945 से 1967 के बीच 100 से ज्यादा बाघ मार डाले। वो महाराज अपने अंतिम दिनों में बड़े निराश रहते थे कि 95 बाघ मारने के बाद वो 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। और तो और, भारत की आजादी के बाद भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ साल 1961 में सवाई माधोपुर आई और एक बाघ मारने की अपनी खूनी शौक पूरा कर गई। बाघों और वन्य जीवों ने इस जम्बू द्वीप पर कथित इंसानों के हाथों हैवानियत का वो दारुण दौर देखा है जब जंगल के कथित रक्षक अधिकारी शिकार की मंजूरी दिया करते थे। वन कटवाना, वन्य जीवों को मरवाना बिकवाना, ये कानूनी धंधा था। तब तमाम यारबाज वन रक्षक या कहिए तो भक्षक शिकार करवाने के लिए बहुत मशहूर हुआ करते थे। राजस्थान में एक ऐसे ही अधिकारी थे जो शिकार की मंजूरी बेधड़क दिया करते थे, लेकिन एक दिन संयोग से वो खुद शिकार पर निकल पड़े। आसानी से एक बाघ दिख गया, उससे भी ज्यादा आसानी से रक्षक महोदय ने उस पर बंदूक साध दी और गोली चला दी। बड़े ही शान से वो उस बाघ के पास पहुंचे और गौर किया कि कितने खूबसूरत जीव को उन्होंने मार गिराया। उसके बदन पर बहुत सुंदर चमकीली धारियां थीं, एकदम कोमल। शायद उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, शायद वो पूछना चाहता था, साहब आप वन रक्षक हो या भक्षक? वन आपको रक्षा करने के लिए दिया गया है या तबाह करने के लिए? वन का मतलब केवल पेड़ नहीं होते, वन्य जीव भी तो होते हैं। वन्य जीवों के बिना पेड़ों का या फिर जंगलों का मतलब ही क्या है? सवालों ने अधिकारी महोदय का पीछा करना शुरू कर

दिया, बताओ कि शिकारी हो या संरक्षक, अगर संरक्षक हो तो शिकार क्यों किया, क्यों मारा? अगर जिंदा कर सकते हो तो जिंदा करके दिखाओ। खाल पर जो सुंदर धारियां हैं उनमें से एक भी बनाकर दिखाओ तो जाने। पछतावे ने बहुत बेचैन कर दिया, होने लगी बहुत परेशानी। ये क्या कर डाला मैंने, क्या यही भारतीय वन्य सेवा है? वो सोचने में डूब गए कि मैंने तो एक ही मारा, लेकिन सैकड़ों बाघों को शिकार का लिखित मंजूरी देकर मैंने ही तो मरवाया। मैं अनगिनत बाघों और वन्य जीवों का अपराधी हूं। उन्होंने गौर करना शुरू किया तो देखा भारी सरकारी पैसा पा रहे अनेक रजवाड़े शिकार करके मूछे ऐठ रहे हैं। उदयपुर के महाराज हों या टोंक के नवाब, जयपुर के कर्नल हों, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1000 बाघों के शिकार में भाग लिया। जाने कितने ही तेंदुए, जंगली सुअर और अन्य बड़ी बिल्लियां मार दी गईं, कोई हिसाब नहीं। असर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में लोग चर्चा करने लगे कि एक युवा वन अधिकारी हैं कैलाश सांखला, जो शिकार की मंजूरी नहीं देते। साल 1956 से ही सांखला ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि कृपया अबोध वन्य प्राणियों को मत मारिए, वरना वो समाप्त हो जाएंगे और जंगलों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब हालात बेहद खराब थे। दुनिया भर में भारत में पर्यटन का मतलब होता था जंगलों में जाइए और जानवरों को मारने का मजा लूटिए। कैलाश सांखला देश में पहले ऐसे वन्य जीव प्रेमी थे जिन्होंने समझ लिया कि पहले देश का कानून बदलना पड़ेगा। सांखला के प्रयासों से धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। वन्य जीवों और उनके अंगों का व्यापार रुक गया, निर्यात रुका और अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को समझ में आ गया कि बाघों को बचाना होगा, और तब देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कैलाश सांखला उसके पहले निदेशक बनाए गए। तब भारत के जंगलों में 300 से कम बाघ बचे थे। वो कहते थे कि जंगलों में कुछ मत करो और किसी को कुछ करने भी मत दो, प्रकृति अपने आप असली रंग रूप में लौट आएगी, और बस कम से कम मानवीय हस्तक्षेप तो ना होने दो। भारत में साल 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शानदार शुरुआत हुई। उस साल बाघ देश के 9 जंगलों में सुरक्षित थे और अब करीब 53 जंगलों में सुरक्षित हैं। 29 जुलाई को जब विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है तब पूरी दुनिया गौर करती है, 75% बाघ केवल अकेले भारत में हैं। यहां वनों में उनकी संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में कैलाश सांखला को भला हम कैसे भूल सकते हैं? दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेम करुणा और क्रोध घृणा की शक्तियां संसार में हमेशा काम करती रहती हैं। ये एक झूले के खेल की तरह होता है। अब सवाल यह है कि आप झूले के किस सिरे को वजनदार करना चाहते हैं। जैसे ही आप ऐसी चीजों में विश्वास करना शुरू करते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, स्वाभाविक है आप द्वंद में जीने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। आज आप एक शांत व्यक्ति हैं, लेकिन कल अगर कोई आपकी मान्यताओं और परंपराओं का विरोध करने लग जाए तो आप उससे तुरंत झगड़ने लगते हैं। विश्वास में जीने में भला क्या बुद्धिमानी है? विश्वास में जीने से क्या लाभ है? सिर्फ इतना ही कि आपका अहम संतुष्ट हो जाता है। मैं नहीं जानता, अहम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जानता हूं, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अहम को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी खास स्थिति में जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, आप किसी के साथ लड़ने के योग्य नहीं रह जाते, आप विरोध के योग्य भी नहीं रह जाते, आप अत्यंत विनम्र और बेहद अच्छे इंसान हो जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर शांति लाने के योग्य नहीं हैं, आप भला विश्व में शांति स्थापित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? मतलब यह हुआ कि अगर आप अंदर से खुद शांत नहीं हैं, तो बाहर आप शांति कैसे फैला सकते हैं? अगर इस छोटे से मन को आप शांत नहीं कर सकते, तो क्या विश्व में शांति पैदा कर पाएंगे? आप संसार में जो भी देख रहे हैं वो आपके छोटे से मन की एक छवि है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपके मन में नहीं हो रही? वही तो हो रही है। योग विज्ञान अपने भीतर देखने का एक तरीका है। किसी खास दृष्टिकोण से नहीं देखना, सिर्फ भीतर देखना। यदि आप किसी चीज से अपनी पहचान बना लें तो आप भीतर नहीं देख सकते। जैसे ही आप किसी चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है दोस्तों कि मैं एक तरह की गाड़ी चलाता हूं, मैं एक तरह के मकान में रहता हूं, फ्लैट में रहता हूं, एक तरह का मोबाइल लिए फिरता हूं। क्या मेरी पहचान इन चीजों से है या मेरी पहचान से इन चीजों की पहचान है? सोचने की कोशिश कीजिए। आपका सोचना और महसूस करना बस इसी बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त आपने अपनी पहचान किससे बनाई है। गाड़ी से, मोबाइल से, घड़ी से, घर से, किससे? अपनी पहचान को मिटाने और सच्ची शांति का अनुभव करने में ध्यान आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो कम से कम उस वक्त तो आपके लिए कुछ भी और मायने नहीं रह जाता, सिर्फ आपका वजूद बच जाता है। वहां भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शांति का मतलब है शून्यता या खालीपन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं। शांति ऐसी कोई चीज नहीं है जो घटित होती है। शांति ऐसी चीज है जो हमेशा है। शांति ही अस्तित्व की बुनियाद है। सतह पर जो होता है व्यवधान है, उपद्रव है, वो ठीक समुद्र जैसा होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है ना, लेकिन नीचे गहराइयों में ये पूरा शांत होता है। जब आप इस गुण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेंगे तो वास्तव में शांति पा जाएंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पता नहीं भैया, तुम लोगों का ब्रेकअप कैसे हो जाता है? यहाँ तो मेरी सेटिंग ही नहीं हो पा रही है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
6: कुछ कहती हैं सब्जियाँ,
7: आज बच्चे खेल खेल में सब्जी बने हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बबलू महाराजा कद्दू बनेगा, उसकी राजकुमारी मिर्ची बनेंगी चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
8: सब्जी खेलेंगे।
9: हाँ, सब्जी खेलेंगे।
10: चन्नम्मा तुम मिर्ची बनोगी,
11: पिंकी तुम टमाटर बनोगी।
12: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
13: मैं करेला बनूंगा।
14: बबलू तुम दही बनोगे,
15: मिर्ची बनोगे,
16: तुम टमाटर बनोगे।

0: राजकुमारी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
1: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ, लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
1: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
3: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
1: अच्छा।
3: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
1: ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
3: अच्छा, बड़ा समझती हो।
4: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ।
5: तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
6: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
5: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
6: आलू
7: आलू आलू पसंद है। पसंद है।
1: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
8: आलू के फायदे तो बताओ।
5: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
9: मुझे भी चाहिए शक्ति।
10: मुझे भी शक्ति।
11: मुझे चाहिए।
12: मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।
2: हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
3: हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
0: ये हुई ना बात।
1: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
2: हाँ मिर्ची, हम सब
3: भाई बहन।
4: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
1: ओ, मैं तो गिर गई।
2: अरे मिर्ची,
4: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
0: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
1: जी पिताजी।
0: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है, होता है कि नहीं?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, प्यार फैलता है, एकता बढ़ती है ना एकता?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूंगी।
0: ये हुई ना बात। शाबाश बेटी।
5: तो सुना आपने बच्चों, सभी सब्जियों के कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं, इसीलिए अब से ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बात ये है बच्चों कि हमें है सभी सब्जियां खाना।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
7: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
5: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
8: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
9: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
5: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
8: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
10: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
8: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
11: माँ, ये चिट्ठी।
8: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
9: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
11: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
9: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
11: अच्छा,
9: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
11: अच्छा,
9: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
11: हाँ
9: ठीक है। बहुत अच्छे।
5: तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की माँ, जो स्वयं शिक्षिका थी, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खीजे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।
9: उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
12: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
5: तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला, जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है। वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया।
12: उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
9: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
12: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
5: तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की माँ स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की माँ की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए।
9: थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
12: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है।
5: साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
12: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
9: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
12: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
9: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
12: लगभग 10,000 बार।
9: 10,000 बार?
12: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
9: अच्छा।
12: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
9: अरे वाह।
12: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
9: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
12: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
9: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
12: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
9: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
12: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
7: और अब सुनते हैं एक अरबी लोक कथा जिसमें अपराधी के विरुद्ध गवाही दे रहा है एक दरख्त। पुराने जमाने

0: की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा,
1: तुम्हारे पास कोई गवाह है?
0: आदमी ने कहा,
1: नहीं, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं।
0: दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला,
2: हुजूर, ये शख्स बहुत कसमें खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
0: काजी ने जब उस आदमी को इस तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि उसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया,
2: हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपए की अशद जरूरत थी, ये बहुत परेशान था, इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया, मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने जिंदगी भर की कमाई जो सिर्फ 100 रुपए थी अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए।
0: काजी ने पूछा,
1: तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे?
2: एक दरख्त के नीचे।
1: जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे, तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है?
0: काजी ने दूसरे शख्स से पूछा,
1: तुम क्या कहते हो, क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है?
3: ये झूठ बकता है, मैंने न उस दरख्त को देखा है और न ही उस जगह को जानता हूँ, मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं।
0: काजी ने उसकी बात सुनकर कहा,
1: अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो।
0: फिर दावा करने वाले शख्स से कहा,
1: तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो।
0: काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा,
2: काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा।
0: काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा,
1: ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो।
0: मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
1: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
0: उसने जवाब दिया,
1: अभी नहीं।
0: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई, उससे कहा,
2: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
0: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
2: हुजूर, दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
1: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
0: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया।
1: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
0: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
3: काजी साहब मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
0: काजी ने जवाब दिया,
1: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज ना देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

0: के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसके आपको संघर्ष करना पड़ेगा जरूर।
1: क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे हटो हटो, बंद करो ये गाना।
2: अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे बात छोड़ दो।
1: अरे तुझे चौप, कान खोल कर सुन लो, कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच खाना पर, अब ये जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार
0: नहीं।
1: अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चलाएगा इधर। ओके,
0: अरे ये तो हमारी जमीन है,
2: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
0: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
2: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
0: अरे हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे।
1: चलो भागो यहाँ से, हट जाओ।
3: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
4: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
3: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
2: हाँ जादो नाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
0: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे

0: शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
1: लेकिन लेकिन जादू भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। कल कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
0: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी। हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
1: जादू भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
0: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग लू। हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा।
3: यही है जादो ना।
1: अरे अरे, कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
3: हटो पीछे। नहीं मोंटी, ये ले।
2: क्यों मार रहे
0: हो? ए कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को। हिम्मत है तो मुझे मार।
4: यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो, देखो कैसे आंखें दिखा रहे हैं। देखो देखो इसे।
3: सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से।
5: इसके साथियों को भी ले चलो। जादो ना चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन लियू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
2: कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
1: सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे।
2: हम
1: अंग्रेजों को मजा चखाएंगे। उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं।

0: लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों तैयार हो जाओ।
1: तैयार है।
0: इससे पहले कि वो इधर आए हम उन पर हमला कर देंगे। इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों गाइडन लियू को सब प्यार से रानी गाइडन लियू कहते।

0: थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
1: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है।

0: भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन ल्यू को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन ल्यू को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन ल्यू ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन ल्यू भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
1: अरे रामू काका।
2: नमस्ते टीचर जी।
1: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
2: बस ठीक हूँ।
1: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
2: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
1: अरे
2: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
1: अरे
2: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
1: कैसी बातें करते हो रामू काका। इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
2: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,
1: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का 5वीं पास होना जरूरी है, और तुम्हारी बेटी तो 5वीं पास कर चुकी है।
2: जी।
1: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
2: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा? खाना पीना, कपड़े, किताबें।
1: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
2: क्या?
1: हाँ,
2: मुफ्त में दिया जाएगा।
1: और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
2: अच्छा। हाँ। तो क्या टीचर जी, मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना?
1: हाँ, और एक दिन आत्मनिर्भर भी बनेगी।
2: अच्छा, धन्यवाद टीचर जी, मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ।
1: कल क्यों, आज।
2: अच्छा टीचर जी, आज ही करवाता हूँ।
1: पढ़े बालिका करे उजियारा, खुशहाल बने संसार हमारा।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: अरे पिंकी, आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
1: अरे सहेली किसकी है भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
2: पर हमको तो नहीं आता था।
1: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई।
2: अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती। क्यों?
0: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
2: हाँ।
1: अच्छा चलो चलो घर चले।
3: चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो।
4: धीरे धीरे। अरे भाई हरीश, सभी आ गए बस में?
3: देखता हूँ उस्ताद, शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
2: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
3: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
2: आओ चलो चलो चलो, आओ इधर बैठो।
3: आराम से चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब, अब चलाओ गाड़ी।
4: हाँ जी अभी लो।
3: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
2: अच्छा सुनो, मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना।
0: हाँ भाई, पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
1: अरे बुद्धू, गाने के साथ साथ बजानी
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है। पिंकी
1: चलो, पिंकी शुरू हो जाओ।
2: बजे समय का एक तारा, अक्षर

0: बुलबुल बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आग भगवान आग लग गई है बैटरी पर। हां बैटरी पर ये देखो आग। अमित अमित चलो चलो जल्दी राकेश हमें सब और पूरा का है। हां वो आग तो बढ़ती ही जा रही है। अरे
2: अरे उस्ताद गाड़ी रोको। उस्ताद गाड़ी रोको, गाड़ी में आग लग गई है।
3: आग
2: मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी। हाँ तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ, पानी का इंतजाम करो। मैं यहाँ बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे तो आग बढ़ती जा रही है। अरे मुझे पकड़ाओ। अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो। अरे तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है। अरे जल्दी बाहर आओ पिंकी, बाहर आओ, तो तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई है।
1: नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पहले पूनम को पकड़ो। अमित अमित देखो, पहले पूनम को।
2: अरे मुझे पकड़ाओ। अरे पिंकी बेटा तुम मुझे पकड़ाओ, जल्दी से
1: आओ,
2: बाहर आओ पहले, जो तुम्हारे आग लगी है जल्दी आओ।
1: बच्चे के कपड़ों में आग लगी हुई है। बच्चों को बाहर निकालो, ये देखो तो। अरे उसकी मदद करो।
4: अरे फोन करो ना जल्दी से, बच्चे हैं छोटे छोटे।
5: अरे दमकल को बुलाओ ना भाई,
4: जल्दी बुलाओ ना जल्दी।
0: भयंकर आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते निकालते भी छह बच्चों ने आग में झुलस कर वहीं दम तोड़ दिया। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, किंतु अदम में साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने पांच बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिंकी के इस वीरता पूर्वक बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला। वर्ष 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पिंकी के अभिभावकों को ये पुरस्कार प्रदान किया। वाकई ऐसे बच्चे हमारे देश हमारे समाज की शान हैं।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनी परिवार का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। जैसा कि रेडियो टंटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, हमारा आप तक खेती बाड़ी के माध्यम से भिन्न भिन्न खेती संबंधी जानकारियों को आप तक पहुँचाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप जो हमारा किसान है वह अपनी आय में वृद्धि करें, साथ ही अपनी आजीविका को सशक्त बनाएं और हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलावों को समझें और पर्यावरण के अनुरूप खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। और इसके लिए हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हमें भिन्न भिन्न कृषि के बारे में ज्ञान हो, साथ ही अच्छी पैदावार वाली फसलों के बारे में पता हो, उपकरणों के बारे में पता हो, साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी

0: फसल है जिसकी डिमांड जो है वो बाजार में ज़्यादा है और अलग अलग देशों में प्रदेशों में, साथ ही जो मंडी के भाव है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फसल है, हमारे पास जो भंडारण रखे हैं हमने, उसे हमें कहाँ पर देना है, कहाँ पर बेचना है, वो क्या है, जिसके अनुसार हम हमारा जो किसान है वो यह पता कर पाए कि उसे आने वाली समय में कैसी कृषि करनी चाहिए। साथ ही हमारी मृदा परीक्षण है, मृदा हमारे पानी की जो जांच है, जो हमारी फसलों पर और हमारी फसलों पर और पशुओं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, जो पानी का पीएच है, हमारी मिट्टी की में जो गुण है वो कौन कौन से गुण है और गुण के हिसाब से हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें खेती बाड़ी कार्यक्रम जो हमें कृषि के माध्यम से मिलती है, केवीके के माध्यम से मिलती है, तो वही सारी जानकारियों को हम चाहते हैं कि रेडियो टांटिया भील के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप जानें और आवश्यकता अनुसार अपनी खेती में आप सुधार करें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे बायोगैस और बांस की खेती के से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, आप और हम जानते हैं कि हमारे घर में पशु है जिससे हम बायोगैस बना सकते हैं, साथ ही हमारे हमारी जो पेड़ है, हमारी जो खेतों की मेड़े हैं उस पर हम आसानी से कोई ना कोई पेड़ लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम बांस की खेती करें। वहाँ पर बांस का जो पौधा है उसको अगर हम हमारे खेतों की मेड़ों पे अगर हम लगा दें तो ना केवल हमारी जो बाउंड्री है वो सशक्त बनेगी, बांस का जो पौधा है वो टमाटर की खेती के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर की जो लताएं हैं उसको ऊपर चढ़ाने के लिए हम कहीं ना कहीं बांस के लठों का सहारा लेते हैं। तो किसान साथियों, हम देखें तो इसका कहां कहां उपयोग किया जाता है वो भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: ये बातचीत के यहाँ पर शुरुआत करते हैं और पहले जैविक खेती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दवाज, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज की तारीख में क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि जो किसान है वो जैविक खेती को अपनाए, क्या महत्व है इसका?
3: मोनालिसा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा किसान है आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है, साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो, यानी कि रेजिड्यू ना हो। इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, प्राकृतिक जो संसाधन वो उसका सही उपयोग होता है और साथ साथ में जो छोटे और मझोले किसान है उनको इससे ज्यादा लाभ है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं। लेकिन जैविक खेती करने के लिए उनको कुछ बातों का खास ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछें जिससे हम इस विषय पे अच्छी तरह से बातचीत कर सकें।
2: जी जरूर, तो विस्तार से हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में जैविक खेती और इसमें बायोगैस स्लरी के महत्व को लेकर, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% प्रतिशत फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10-20% बढ़त हो जाती है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती है।
2: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए।
5: जी हाँ, बांस की नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और एक साल में, आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, कि एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है। अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है इससे हो जाता है वो। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी 2 साल में पूरी हो जाती है, तो ये तैयार 2 साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी दान करने वाला पौधा नहीं है। जी। अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम 2 साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की में तुलना करें तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है। और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हम तो अभाव व्यापार। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं तो बांस अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
2: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है। और साथ ही किसानों के लिए यह काफी फायदेमंद है क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में, तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
4: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दें। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
2: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते, और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई उनके पास पशु हैं
2: जी,
3: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
2: जी,
3: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
2: जी
3: पानी के साथ दिया जा सकता है। इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
2: जी।
3: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप सही मात्रा में सही समय पे सही खाद देंगे
2: जी।
3: और ये जो बायोगैस सलरी होती है इसमें खाली एक पोषक तत्व नहीं होता, खाली नाइट्रोजन, बल्कि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो सभी के सभी पोषक तत्व इस खाद के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और जब पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, चाहे वो जड़ों की हो चाहे पत्तों की हो, और जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। और क्योंकि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो इस प्रकार की फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। और एक और खास बात है, जब इस खाद का हम प्रयोग करते हैं बायोगैस सलरी का, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तीन तरह से प्रभावित करती है
2: जी।
3: एक तो मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की फिजिकल यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जो रासायनिक गुणवत्ता है उसमें बढ़ावा करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम पानी का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी हम अधिक पैदावार ले पाएंगे, यानी कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारे पास पानी की भी बचत होगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है
2: जी,
3: वो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फसल का उत्पादन कम होने की बजाय अधिक होगा, और साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस तकनीक में एक और फायदा ये होता है बायोगैस में कि हमारे किसानों को घर में खाना बनाने के लिए बहुत ही स्वच्छ और अच्छी गैस मिल जाएगी, अच्छा खाद मिल जाएगा। यानी कि किसान की दो आवश्यकता, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरा खाद की आवश्यकता, उन दोनों की आपूर्ति ये करता है। और यह तकनीकी हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि छोटे और मझोले किसानों के पास में पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास भूमि के जो क्षेत्रफल कम है, और इस खेती में इस खाद का अगर प्रयोग
2: तो छोटे किसान है उनके लिए ये काफी उपयोगी है। डॉक्टर
3: मैं आपको बताना चाहूंगा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्लांट किस आकार का लगाएंगे
2: जी,
3: और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, यानी कि जो इनपुट अवेलेबल है
2: जी।
3: क्योंकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा गोबर होगा तो हमें बड़ा प्लांट लगाना है, पशुओं की संख्या मध्यम है तो मध्यम प्लांट लगाना पड़ेगा, और पशुओं की संख्या कम है तो छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट का आकार है वो घन फुट या घन मीटर इनमें नापा जाता है
2: जी।
3: सबसे छोटा प्लांट जो किसान के लिए उपयोगी हो सकता है वो 35 घन फुट या 1 घन मीटर का होता है, और इस प्लांट के लिए 25 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी किसान के पास दो पशु हैं तो वो इस प्रकार के प्लांट को लगा सकता है, और इससे उसको जो खाद मिलेगा वो उसके 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा, साथ साथ में जो गैस मिलेगी वो 5 आदमियों के परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त रहेगी। और जितना आपके पास गोबर है उसी के आधार पे प्लांट का हम साइज बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का हो जाएगा, यानी कि 70 घन फुट का
2: जी।
3: और अगर आपके पास 75 किलो गोबर है तो 105 घन फुट या 3 घन मीटर का प्लांट हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम ये गणना करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, यानी कि गोबर कितना अवेलेबल है। और मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं गोबर ही अवेलेबल हो आपके पास। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है तो पोल्ट्री वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, पिगरी फार्म खोल रखा है उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है। आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है जिसमें आप कोई भी जो हमारे अनाज या फलों का या सब्जियों का वो कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उसका जो भी वेस्ट है वो भी काम आ सकता है। आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है। जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी हमारे बायोगैस प्लांट के लिए इनपुट है।
2: जी बिल्कुल।
3: हम जब भी बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो बायोगैस प्लांट का जैसे हमारा खाना होता है या पशुओं का खाना होता है, इसी प्रकार से प्लांट का भी खाना होता है। और प्लांट का खाना है जो भी गोबर है या बायो वेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो उसका खाना है
2: जी।
3: तो हमें जितना भी हमारा जिस आकार का प्लांट है उसी के आधार पे उसको रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी कि लगातार खाना खिलाना है। क्योंकि इसमें बायोगैस प्लांट में भी दो किस्म के प्लांट होते हैं, एक तो रेगुलर फीडिंग वाले होते हैं और एक ऐसा होता है कि एक बार आपने फीडिंग कर दिया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तो उससे आपको गैस भी मिलती रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे फिर दोबारा फीडिंग करेंगे
2: जी।
3: इस ऐसे प्लांट में सॉलिड फीडिंग ज्यादा होती है तो जहां पे हमने फसलों का अवशेष का प्रयोग करते हैं तो वहां इस किस्म के प्लांट होते हैं। लेकिन इस किस्म के प्लांट में आपको जो गैस की मात्रा मिलेगी वो लगातार बराबर नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी
2: जी। जी।
3: दूसरा होता है रेगुलर फीडिंग वाले प्लांट, यानी कि जिसको रोज ही खाना चाहिए। जिन प्लांट को आप रेगुलर फीडिंग करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है। और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मच्छर मक्खी या मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है। तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है। क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
2: बिल्कुल।
3: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे प्लांट का आकार छोटा है तो कच्चा खाद निकलेगा।
2: जी जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज़्यादा मुनाफे में हो सकता है।
3: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं, और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
2: जी।
3: वो जनता बायोगैस था। लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल, यह भी ईंट का सीमेंट का कंक्रीट का बनता है और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है और साथ साथ में इससे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है और किसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आजकल भारत सरकार या अधिकतर जो सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं वो दीन बंधु प्लांट को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं और ये ज्यादा उपयोगी भी है। क्योंकि सर्दी के मौसम में जो केवीआईसी मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो दीन बंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीन बंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और कम लागत आती है। तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीन बंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए। क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है
2: जी, जी।
3: और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
0: जी हाँ बिल्कुल। आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: बायोगैस प्लांट है ये MNRE मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है। तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी। जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट, इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए।
2: जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास, आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीन बंधु मॉडल के बारे में, मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं।
1: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है।
2: जी,
1: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है। अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसको सही। तो जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल हैं जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है। तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं, उसका लाभ उठाएं।
2: बिल्कुल। जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
1: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
2: जी,
1: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा। दूसरी बात आती है, जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
2: अच्छा।
1: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी।
2: जी।
1: दूसरी बात आती है, जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
2: जी।
1: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं और साथ साथ में आपको फीडिंग, खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है बाहर का तापमान काफी कम है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी।
2: अच्छा।
1: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है।
2: जी।
1: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है।
2: अच्छा।
1: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे, क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है, तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है और जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है, और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी, तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को,
2: जी
1: वो गैस का प्रयोग करते हैं, अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
2: अच्छा।
1: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है, तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
2: अच्छा।
1: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
2: अच्छा।
1: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की, उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता है छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी होगा निकल जाएगा, तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी।
2: जी बिल्कुल। इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
1: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसान

0: या रागी की रोटी है, मोटे अनाज वाली रोटियां, उनको बनाने के लिए चूल्हा जरूरी है
1: जी।
0: लेकिन इसकी गैस पे चूल्हे जैसी रोटियां बन सकती हैं, क्योंकि इसका जो चूल्हा है वो एलपीजी के चूल्हे से काफी डिफरेंट है।
1: अच्छा,
0: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आपको शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी। रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं। ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है
1: जी। बिल्कुल,
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं। और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं। और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू। उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का
1: जी।
0: और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है
1: जी जी,
0: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूर अपनाना
3: जी। हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का

0: ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके साथ हम खाना बना सकते हैं और जो उसका अवशेष बच रहा है, जो ठंडी हुई घास, उसको केंचुए बहुत ही चाव से खाते हैं। और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: और झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, DAP, यूरिया और कुछ लोग पोटास, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों काफी कमी हो गई है, और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध है। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
1: ठीक है,
2: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो HTB के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं। उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं, या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी, और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
1: जी,
2: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे। और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आप HDP का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी, तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं, क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई का है, तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है हिल बैंक है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
1: जी।
3: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकलेमस सोमदेवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है डेंडोकलेमस सिकिमियंसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां 2-3 मोटे बांस की और एक बैम्बूसा न्यूटस 3 जातियों की खेती हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है और सबसे अच्छे पौधों का चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक ही धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है, या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके कि आप बांस का पौधा खरीदे या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2x2x2 फीट, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है। इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है, तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप चौथे साल के एंड में या पांचवें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में।
3: जी हाँ, पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें, गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें और 100 ग्राम खली डालें और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP, अगर DAP नहीं है सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है
1: जी।
3: ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें, फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती हैं थोड़ी सी फरवरी में, फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसी उसमें और उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं और 100 ग्राम के आसपास खली और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है, यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद हम नाइट्रोजन कम डालते हैं और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है और 100 ग्राम खली और 100 ग्राम DAP या 120 ग्राम SSP और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैरायटी आपको हमने देखा है 6-7 वैरायटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखुआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है
1: जी।
3: तो आप तीन वैरायटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस आपको पानी बहुत चाहिए लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
1: जी,
3: वो लगाएं, या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCV से बांध बना दें, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके।
1: जी।
3: अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी है।
1: जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए।
3: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खुरदरा होता है। बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं
1: जी।
3: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दें। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उतना एमएल प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
1: जी।
3: और दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
1: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: खाते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर दबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में अगर आप देना चाहें।
2: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है और साथ साथ में दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान भाइयों आप लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं और आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है। तो किसान साथियों आज का जो हमारा मुख्य विषय था वो बायोगैस और बांस की खेती के ऊपर, कार्यक्रम के माध्यम से आपने बायोगैस से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही बहुत सारे किसान भाइयों का जो सवाल थे कि बायोगैस से जो बदबू आती है खाना बनाते समय, इन आदि सवालों का भी जवाब आपको मिल गया होगा। और साथ ही बांस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, बांस को कहाँ लगाना चाहिए, कौन सी उचित भूमि होती है और बांस को हमें किन किन कीटों से बचा के रखना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना। किसान साथियों आशा करते हैं कि आप सभी को यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही हम आशा करते हैं कि जो भी आज के इस कार्यक्रम में जो भी आपको जानकारी मिली है ऐसे आप अपने खेतों में ज़रूर इसका प्रयोग करेंगे और अपनी फसल को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हम जो बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर बायोगैस जो प्रसिद्ध है वो गैस के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी गैस का प्रयोग करके हम अपने घरों में किचन में अपना खाना बना पकाते हैं। लेकिन साथ ही हमने ये जाना कि जो केचुए बनाने की खाद है वो भी वहीं से हमें मिल सकती है, जहाँ पर ओवरफ्लो होने के बाद जो अवशेष जो निकलता है उससे केचुए उसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं, क्योंकि जो अपना गोबर है उसके अंदर काफ़ी हीट होती है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से केचुआ एकदम से उसे खा नहीं सकता। तो जब तक उसकी हीट निकल जाने के बाद केचुआ बहुत ही अच्छे से और थोड़ी गति से उसको खाता है। तो किसान साथियों ये एक अच्छा गैस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हम केचुआ खाद बना के जो जैविक खाद है वो भी हम अच्छे से बना सकते हैं। तो किसान

यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी होस्ट RJ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। लेकर आई हूं एक और दिलचस्प एपिसोड जिंदगी के रंग गीतों के संग का। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी आवाज जो सिर्फ लिखती नहीं है, महसूस करवाती है। एक पोएट, एक स्टोरी टेलर, एक एजुकेटर, एक ऑल इंडिया रेडियो टॉकर और एक मल्टी अवार्ड विनिंग पर्सनालिटी, सोनल शर्मा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सोनल शर्मा जी का हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। तो सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं सौभाग्य मानती हूँ अपना कि आज मैं SN रेडियो पर हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया SN रेडियो को कि मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आपके समक्ष आज ये इंटरव्यू दे पाऊँ।
1: जी सोनल जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे मैंने अभी आपकी इंट्रोडक्शन में बताया, आप इतनी मल्टी फेसेटेड और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, इतना कुछ आप अपने करियर में अचीव कर चुकी हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से मैम। आप एक एजुकेटर हैं, एक पोएट हैं, एक स्टोरी टेलर हैं, बट ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? मतलब ये कौन सा बीज था, बचपन में डला ये बीज या ओवर द इयर्स जैसे आप बड़े होते गए उस तरह से आप डेवलप हुए? किस तरह से आपका ये सफर शुरू हुआ और ऐसा कौन सा वो पल था आपके जीवन में, कौन सा वो फर्स्ट मोमेंट था जब आपको लगा कि वर्ड्स मेरी पहचान है?
2: सो तनुषा, मैं सबसे पहले एक एजुकेटर ही थी। लाइक बिफोर माई मैरिज आई डिड टीचिंग फॉर 11 गुड ईयर्स। तो और मैं लिखा करती थी, पर मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे लिखा करती थी। मेरी एक ब्लू डायरी हुआ करती थी, उसमें मैं कुछ कुछ लिखा करती थी, बट वो मेरे तक ही सीमित था। फिर मैं टीचर बन गई, मैंने 11 इयर्स तक मैंने टीचिंग की। एंड देन जब मेरी शादी हुई तो मैंने डिसाइड किया दैट आई विल क्विट माई जॉब, नॉट बिकॉज समबडी फोर्स्ड मी, बट वो मेरी चॉइस थी, क्योंकि मुझे ये जो न्यू फेज था मेरी जिंदगी का, उसे भरपूर उसका आनंद उठाना था। मुझे अपने परिवार को संभालना था, एक यू नो माँ बनकर मदरहुड को एंजॉय करना था, और वो मैंने किया भी जी। तो इस तरह से बहुत साल निकल गए, बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो एक वो हॉलोनेस फील होने लगी जिंदगी में। लगा कि अब कुछ कुछ समय निकल रहा है, तो अब क्या करना है, कोई ना कोई पर्पस तो ढूंढना है जिंदगी में। तो ये तो तय था कि मुझे एजुकेटर फिर से नहीं बनना था, क्योंकि शायद मुझे लगता है टीचिंग ने मुझे बच्चों से प्यार करना सिखाया, पर जब मैं जो स्कूल में लिखती थी, जो कॉलेज में लिखती थी, शब्दों ने मुझसे खुद से प्यार करना सिखाया। तो मुझे लगा कि वो एक कॉलिंग की तरह आया मेरे जहन में, और मुझे लगा कि अगर वो शब्द मुझे खुद से प्यार करा सकते हैं, तो वो शब्द कितनी सकारात्मकता, कितनी ऊर्जा दुनिया में फैला सकते हैं। तो इस तरह से 2016 में मॉम्स प्रेसो प्लेटफॉर्म पर मैंने मेरा पहला ब्लॉग लिखा मदरहुड के बारे में, और सिलसिला चलता रहा। और इस तरह से मैंने उस पर कोट्स, 100 बर्थ स्टोरीज, और इस तरह से 2000 ब्लॉग्स लिख दिए। काफी ब्लॉग्स मेरे वायरल भी हुए, काफी शॉर्ट स्टोरीज मेरी वायरल भी हुई। और फिर शुरू हुआ मेरा स्टोरी टेलिंग का सफर टेल टेल्स पर। कोविड टाइम्स था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो स्टोरी टेलिंग शुरू हुई, और फिर शुरू हुई मेरी पोइट्री। और इस तरह से मुझे मेरा पर्पस मिला, और 10 साल हो गए इस बात को, 10 साल से मैं लिख रही हूँ कंसिस्टेंटली, और आज मैं आपके सामने हूँ।
1: हाउ ब्यूटिफुल मैम, और ये कितनी सिरेंडिपिटस बात है, कितनी कोइंसिडेंटल बात है कि आई डोंट नो, ये डेस्टिनी का इशारा है या बस हमें आज ही कनेक्ट होना था कि आपका पहला जो पीस ऑफ राइटिंग था वो मदरहुड के ऊपर था,
2: मदरहुड पे,
1: और आज हम मदर्स डे पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन, एंड बहुत ही ब्यूटिफुली आपने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया, और सच में वर्ड्स में वो ऊर्जा होती है, वो सकारात्मक एक शक्ति होती है जो हमें खुद से तो मिलवाती है, बट हमारे शब्द लोगों तक जब पहुंचते हैं तो वो कितनी सारी जीवन, कितनी सारी यू नो ड्रीम्स को चेंज कर सकते हैं, उनको इफेक्ट कर सकते हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म एक पर्पस दे सकते हैं आपके वर्ड्स. तो आई एम श्योर आपने जी आपने 2016 से आज तक 10 सालों में बहुत लोगों के लाइफ्स को इम्पैक्ट किया होगा. 11 साल आपने टीचिंग भी की है जैसे आपने बताया. तो एक टीचर होने के नाते आपको आई एम श्योर आप जब बच्चों को पढ़ाते होंगे तो उसमें भी स्टोरी टेलिंग का जो एक एलिमेंट है वो सामने आता होगा. तो किस तरह से उस स्टोरी टेलिंग ने, उस क्लासरूम टीचिंग ने आपकी राइटिंग को एक शेप दिया?
2: आई थिंक इट हैज प्लेड अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन माई लाइफ इन शेपिंग माई राइटिंग. क्योंकि क्लासरूम में जब मैं होती थी और मैं इंग्लिश और सोशल साइंस की टीचर हुआ करती थी, तो इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं पोइट्री होती है, प्रोज होता है, चैप्टर्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, और सोशल साइंस में यू नो विच इज अदरवाइज अ बोरिंग सब्जेक्ट, पर हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री तो आप जानते हैं कहानियों से भरी हुई है. तो किस तरह से उसको समझाना, तो ये मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही करती थी कि उन शब्दों को, उन कहानियों को फिरो के शब्दों में और इस तरह से बच्चों को समझाती थी कि वो इंतजार करते थे कि कब हमारी इंग्लिश की क्लास आए, कब हमारा सोशल साइंस का पीरियड आए. तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि क्लासरूम स्टोरी टेलिंग टीचिंग ने मेरी राइटिंग को बहुत बहुत शेप किया है. क्योंकि वहां पे खड़े होना, वहां पे जो कहानियां, किताबी कहानियों को अपने शब्दों में बच्चों तक पहुंचाना, वो बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है मेरे जीवन का, और उसने मेरी राइटिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से शेप किया.
1: सच है. जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री में इतनी स्टोरीज होती हैं, इंग्लिश में इतनी स्टोरीज होती है, इंग्लिश तो खैर सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो आई एम श्योर आपकी टीचिंग ने आपको बहुत शेप किया. और बच्चे सिर्फ इसीलिए वेट नहीं करते होंगे कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, जब आप इतने खूबसूरत दिखते हैं, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है, तो आई एम श्योर बच्चे सच में वेट करते होंगे कि सोनल मैम का पीरियड कब आएगा. मैं आपकी स्टूडेंट होती तो मैं तो बस आपको देखती रहती, सुनती तो शायद बाद में. तो बहुत ही प्यारी बात आपसे हो रही है.
2: सो स्वीट ऑफ यू एक्चुअली.
1: जी बिल्कुल सच में, बस सच है ये बात. खैर आगे चलते हैं मैम, हम आज का हमारा पहला गीत सुनेंगे, तेरी है जमीन तेरा आसमां फ्रॉम द फिल्म बर्निंग ट्रेन.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक सोनल मैम। आगे चलते हैं सोनल मैम, आपने बताया आपको बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिले और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस आपको मिले हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ऑनर, प्राइड ऑफ राजस्थान और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में आई थिंक बेस्ट पोइट्री का प्राइज। तो इन सब मोमेंट्स में से आई एम श्योर ये माइलस्टोन इवेंट्स हैं आपके जीवन में और ये सब बहुत ही अच्छे यू नो प्रेस्टिजियस ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं कि कैटेगरीज में आते हैं किसी भी लेखक के लिए, किसी भी पोएट के लिए। ये बहुत बड़ा एक सम्मान है कि उसका काम इतने स्तर पर और इतने खूबसूरत स्तर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो आपके लिए इन सब में से वो कौन सा मोमेंट था जो लाइफ चेंजिंग था, जिसने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया और आपके दिल के बहुत करीब है? आज भी जब आप उस मोमेंट को याद करते हैं तो आपको लगता है यार कुछ तो बहुत अच्छा किया है जीवन में।
1: जी बिल्कुल, वैसे तो ये तीनों अवार्ड्स ही मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े अवार्ड्स है। पर जो एक अवार्ड है जो मेरे दिल के हमेशा करीब रहता है, जो एक मोमेंट मेरे दिल के हमेशा करीब रहता है, वो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ब्रूइंग पोएट्री का विनर होना। क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आप विश्वास ही नहीं करेंगी कि बीइंग अ जयपुराइट, बीइंग अ लिटरेचर पर्सन माई सेल्फ, बीइंग अ पोएट माई सेल्फ, अ राइटर माई सेल्फ, मैं आज तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गई ही नहीं थी इससे पहले। मैं हर साल सोचती थी, लोग दूर दूर से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मैं हर साल सोचती थी मुझे यहाँ जाना है, पर कुछ घर की जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से ऐसा लगता था शायद ये 3 दिन का समय निकालना थोड़ा आसान नहीं होगा, और ठीक है अगले साल सही, अगले साल सही। और देखिए भगवान की क्या कृपा हुई, माँ सरस्वती की क्या कृपा हुई कि जब मैं गई तो मैं गई एज अ परफॉर्मर और उसे जीत कर आई। तो मुझे लगता है कि अपनी ही सिटी में इतने बड़े स्तर पर, इतने प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में, क्योंकि मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेजेस इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी शो ऑन द अर्थ, उसे जीत कर आना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और मेरे दिल के सबसे करीब है।
0: बिल्कुल, ये एशिया का बिगेस्ट फेस्टिवल है,
1: एब्सोल्यूट
0: फेस्टिवल है, और खैर 2006 से ये इंसेप्ट हुआ था और आज तक इसकी जर्नी इंटरनेशनल क्या ग्लोबल, हर लेवल पर इंटरनेशनल इट इज अक्लेम्ड। तो उस स्तर का सच में अवार्ड जीतना, उसमें अपनी बेस्ट पोएट्री का अवार्ड जीतना ब्रूइंग पोएट्री कॉम्पिटिशन में, ये शो करता है कि आपकी राइटिंग की पावर, आपके पेन की पावर कितनी अच्छी और कितनी स्ट्रांग है। और अब उसको वैलिडेशन मिल गया है, नॉट जस्ट नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड इस साल से आई प्रोमिस कि मैं आपको लेके चलूंगी, क्योंकि मैं पिछले जितने साल से JLF है उतने साल से मैं जा रही हूँ, तो इस साल से आई मेक श्योर कि हम साथ चलें। और इसी एहसास के साथ मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल्स में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे एक एहसास होते हैं आपको, आप बहुत लोगों को सुनते हैं, उनको समझते हैं। आप बनारस लिटरेचर फेस्टिवल की भी आपने बात की है या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का भी स्टेज आपने शेयर किया है व्हेन यू वन द अवार्ड, तो वो कौन सा एक इंटरनल इमोशन होता है आपका जो आपको ऑडियंस से एक इंस्टेंट कनेक्ट देता है जब आप स्टेज पर, जब भी आप कहीं भी किसी, नॉट जस्ट दीज स्टेजेस बट एनी वे दैट यू आर परफॉर्मिंग, बिकॉज आपकी बहुत सारे परफॉर्मेंसेज स्टेज परफॉर्मेंसेज रहे हैं, स्टोरी टेलिंग रही है, तो विच इमोशन डू यू ऑलवेज कैरी कि ये तो मुझे रखना ही है एक ऑडियंस कनेक्ट मेंटेन करने के लिए? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो बडिंग स्टोरी टेलर्स हैं, जो बडिंग स्टेज परफॉर्मर्स हैं, वो समझ सकें कि वो कौन सा फैब्रिक होता है व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द स्टेज एंड यू आप एक कनेक्ट बनाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि वो कनेक्ट बनेगा तभी आगे आपकी बात आगे चलेगी। तो वो क्या है मैम?
1: सो तनुषा, द थिंग इज फॉर मी वन इंटरनल इमोशन दैट इज ऑलवेज बीन देयर विथ मी, जब मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ, जब मैं शुरू करती हूँ बोलना, दैट इज ऑनेस्टी।
0: एब्सोल्युटली,
1: तो आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आप वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी आंखों में दिखती है। एंड टूडेज ऑडियंस वो बहुत स्मार्ट है, यू कांट जस्ट फूल देम। तो जब आप सच्चाई के साथ, जब आपने कुछ लिखा है वो सच्चाई के साथ नहीं लिखा, ईमानदारी के साथ नहीं लिखा, और आप प्रिपेयर्ड नहीं है और आप ऐसे ही बस चले गए और आप यू आर जस्ट देयर, मतलब आप क्लूलेस हो, तो ऑडियंस पकड़ लेती है, झट से पकड़ लेती है उस बात को। तो ये बहुत ही जरूरी है एज अ परफॉर्मर, व्हेन यू गो ऑन द स्टेज देयर शुड बी कंप्लीट ऑनेस्टी व्हेन यू स्टैंड देयर, एंड देयर शुड बी अ सिंक बिटवीन योर माइंड, योर हार्ट एंड योर स्पीच। So for me, this internal emotion that connects me instantly with the very first line that I narrate on the stage is honesty.
0: Absolutely. क्योंकि सच में आपने जैसे बताया कि ऑनेस्टी एकदम कनेक्ट करती है लोगों को और दिखता है कि कौन सा स्पीकर सिर्फ एक यू नो मैनिक्योर्ड वे में बोलने की कोशिश कर रहा है और कौन सा स्पीकर अपने सच को बोल रहा है और आज की ऑडियंस सच सुनना चाहती है और आई थिंक इट इज द बेस्ट कनेक्ट योर ऑनेस्टी सच में इट ट्रांसेंड्स ऑल इमोशंस एंड इट डायरेक्टली रीचेस द ऑडियंस सो इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला खूबसूरत और सच्चाई से भरा हुआ गीत पटाका गुड्डी फ्रॉम द फिल्म हाईवे.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक सोनल मैम। मैम, आपकी राइटिंग में इमोशंस की गहराई बहुत महसूस होती है। मतलब जैसे आपने कहा कि ऑनेस्टी, इमोशंस बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी राइटिंग में, आपकी स्टोरी टेलिंग में। तो जब आप लिखती हैं और परफॉर्म करती हैं, तो आपकी जो लेखनी है वो क्या पर्सनल होती है, या आप ड्रॉ करती हैं एक्सपीरियंसेस से, अपने आसपास के लोगों से? क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप शुरुआत करती हैं किसी भी चीज को लिखने की, या जब आप स्टोरी टेलिंग करती हैं तो कौन से एहसासों से आप ड्रॉ करती हैं फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, और जो आपके अंदर है उसमें से किस तरह से आपका वो प्रोसेस होता है? और अगर अंत में, लाइक अभी नहीं, आई थिंक मेरे जो लास्ट सेगमेंट है उसमें अगर आप हमें कुछ सुना सके अपना लिखा हुआ, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल।
1: एब्सोल्युटली तनुषा, तो यस तनुषा, आई एम अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन विथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ सेंसिटिविटी। मुझमें बहुत ज्यादा है, मैं इमोशंस को बहुत ज्यादा फील करती हूँ, और उसे ज्यादा फील करती हूँ, बहुत गहराई से फील करती हूँ। और आप यूं कह लो कि आंसू जैसे बस आंख पर बैठे ही रहते हैं, कि कब कुछ ज्यादा महसूस हुआ नहीं कि झलक जाते हैं। तो और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बींग्स, वी आर मेड अप ऑफ इमोशंस। कुछ होते हैं जो बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ होते हैं जो कि बहुत स्किलफुली उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं, राइट? एंड बीइंग एन इमोशनल पर्सन, अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, मुझे लगता है कि जो बहुत इमोशनल होता है, जो बहुत सेंसिटिव होता है, उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। वो बहुत उतार चढ़ाव देखता है, तो वो बहुत कुछ देखता है, और इसीलिए मेरी राइटिंग्स जो है वो दोनों चीजों का समावेश है उसमें। जो मैंने पर्सनली, जो मेरे पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, राइट? एंड तो वो भाव उस गहराई से आ पाते हैं, क्योंकि मैंने उसको महसूस किया है, बहुत गहराई के साथ महसूस किया है। और जो मैं दूसरों की जिंदगी में देखती हूँ, जो जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जी रहे, जो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो कि मुझे क्लिक कर

0: है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेन इज द ट्रिगर टू एनी राइटर. एटलीस्ट मैंने जितने राइटर्स को, अच्छे राइटर्स को जो बहुत दिल से लिखते हैं, उनको देखा है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है, कोई ऐसा वाक्या रहा है, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म पीरियड या शॉर्ट टर्म पीरियड रहा है जिसने उनको इंस्पायर किया है, उनको ट्रिगर किया है टू राइट समथिंग. और वो जब उतर के आता है, वो पेन जब पन्ने पर उतर कर आता है, तो उससे सच्चा, उससे गहरा कोई एहसास नहीं होता. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. तो आई रियली एको योर थॉट्स एंड आई कैन इमेजिन कि आप कितना सुंदर लिखते होंगे. हालांकि मैंने अभी तक आपकी कोई पोएट्री पढ़ी नहीं है, बट मैं सुनना जरूर चाहूंगी और अपने श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी. आगे चलते हैं मैम, आजकल के डिजिटल एरा के बारे में बात करते हैं.
1: राइट.
0: जहाँ पे आप और हम तो उससे आई थिंक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक दूसरे एरा में यू नो पैदा हुए थे और बड़े हुए. बट अब जो कंटेंट है, जो सब चल रहा है, वो बहुत फास्ट कंज्यूम होता है, बहुत फास्ट आता है, कंज्यूम होता है और यू नो ट्रैश में चला जाता है. कोई उसका यू नो एक एहसास आपके ऊपर चढ़ता नहीं है, आपके साथ रहता नहीं है. तो ऐसे समय में जहाँ सब कुछ इतना क्विक है और इतना यू नो आई थिंक कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, तो ऐसे में आप कैसे मीनिंगफुल राइटिंग को जिंदा रखने के क्या प्रयत्न आप करते हैं? कितना चैलेंजिंग आपके लिए होता है अपना प्रेजेंस मेंटेन करना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, किस तरह से आप इसको अप्रोच करते हैं?
1: सो तनुषा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कंटेंट बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है. दैट्स ट्रू. लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है, राइट. क्योंकि और मुझे लगता है कि हाँ, मुश्किल जरूर है, बट मुझे लगता है फिर भी मतलब ठीक है. और लोगों को कुछ फन थिंग्स और एंटरटेनिंग थिंग्स से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ह्यूमर से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जिसमें बहुत कुछ बहुत सीरियस होता है या कुछ भाव होता है, उससे कम कनेक्ट करते हैं. बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव कि अगर आपके कंटेंट ने अगर फर्स्ट टू सेकेंड्स में कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया, तो कोई भी बिना स्वाइप करे नहीं जाएगा, वो सुनेगा उस चीज को. और जो स्पेशली जो आपके को पोएट्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, राइटर्स हैं, वो जरूर सुनते हैं. दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि सी, दिस इज चैलेंजिंग, बट देन व्हाट आई टेल यू इज सी, लाइक वी मिलेनियल्स, जेन एक्स जो है हम लोग, और आजकल जो जेन जी और जेन अल्फा चल रहा है, तो हम तो ऐसे दौर से हैं जिसमें तो ऑलरेडी इतना मीनिंग था. तो उस मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करके क्यों ना आप अपना कंटेंट बनाए. हमने ज्वाइंट फैमिलीज देखी, हमने दादी नानी की कहानियों से लेकर नो मोबाइल फोन्स वाला जोन देखा है, छतों पर सोना देखा है, रामायण महाभारत देखना टीवी पर. तो इतना कुछ था, हमने इतना कुछ देखा है. एंड एज अ पोएट, एज अ राइटर, इट इज आवर ड्यूटी कि हम उस एरा को आजकल के जनरेशन तक पहुंचाएं. तो यू ऑलरेडी हैव लाइक पीपल लाइक अस ऑलरेडी हैव सो मच मीनिंग विथ अस. सो उस मीनिंग को आप शब्दों में पिरो कर आप जब पेश करोगे, तो चीजें चैलेंजिंग रहेंगी नहीं, बहुत आसान हो जाएंगी. बिकॉज वो दौर जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर था और उसकी कहानियां हर कोई सुनना चाहेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक हम वो कंटेंट बहुत देख रहे हैं आजकल आता हुआ.
1: एब्सोल्युटली, यही रीजन है उसका.
0: जी जी, नॉस्टैल्जिया में रिवेल कर रहे हैं और आई थिंक जेन जी और जेन अल्फा भी उसमें एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टोरी सुन के उनको लगता है कि अच्छा, ऐसा भी हुआ था, एक ऐसा भी एरा था जहां पे ऐसे भी लोग रहते थे. उनके लिए वो एलियन जरूर है, बट वो उसे आइडेंटिफाई क्या, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको उन स्टोरीज को यू नो सुन के आई थिंक इट्स गिविंग देम अ गुड फीलिंग. बिकॉज एब्सोल्युटली हमने उनको जिया है, उन पलों को और उन डेज को, तो हमें तो पता है कि वो क्या थे वो दिन और क्या सुंदरता थी हमारे बड़े होने में, हमारे बचपन में. बट खैर, हाँ, एवरी एफर्ट कैन बी डन एंड राइट यू लाइक यू सेड कि इस तरह से हम जरूर ट्रांसेंड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस फास्ट कंटेंट की दुनिया में हम एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां लोग स्लो पेस पे, स्लो चर्निंग से उन कहानियों को, उन स्टोरीज को सुने, बुने, गुने और शायद उनकी कोई सीख अपने जीवन में अपना सकें.
1: बिल्कुल.
0: इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत. आवाज दी है फ्रॉम द फिल्म एतबार.

0: तो सोनल जी, आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, परफॉर्म किया है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी क्वालिटी जो एक परफॉर्मर के लिए, एक राइटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है और जिसके बिना आई डोंट थिंक कोई एक अच्छा राइटर, आपके हिसाब से, नॉट आई, आपके हिसाब से कोई एक अच्छा राइटर या परफॉर्मर नहीं बन सकता, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यू नो प्योर विथ योर थॉट्स एंड एवरीथिंग, आपको क्या लगता है वो कौन सी क्वालिटी है जो अगर आपके अंदर नहीं है आप उसको डेवलप करें, बट उसके बिना कोई एक अच्छा स्टोरी टेलर और राइटर नहीं बन सकता?
1: सो तनुषा, फॉर मी देयर आर थ्री क्वालिटीज, नॉट जस्ट वन, देयर आर थ्री क्वालिटीज। When you stand on the stage, the first quality that is a sign of a great and a good performer is confidence. You know, there is a quote that goes that have confidence, even if you don't have, just pretend it. Believe me, nobody will tell the difference. So, yeah. So, the moment you step on the stage and you start narrating your piece, confidence is just, it just, you know, it is like you are there. You are just absolutely there. आपको फिर कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है. Secondly, delivering your 200%. Because what I feel when you are standing on a stage,
0: जब आप stage पे, जी,
1: and लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, audience आ रही है, उन्होंने ticket खरीदा है, वो आपकी performance सुनने के लिए आए, तो it is your foremost duty that as a performer, आप वो 5 मिनट उनके लिए ऐसे बना दें कि वो घर जाके भी आपको याद रखे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकंड लाइन, आप इस तरह से अपने पीस को नरेट करें. एंड थर्डली, मेमोराइजिंग योर पीस. सी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट फॉर मी, इफ यू, इफ फ्रॉम अ राइटर टू अ राइटर, अ पोएट टू अ परफॉर्मर, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ परफॉर्मर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोन में ना देखकर, डायरी में ना देखकर, पेज में ना देखकर बोले, बिकॉज मेरे लिए लुकिंग इन टू द ऑडियंस साइज एंड वेन दे लुक into mine is the biggest form of connect. तो और आपने, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, आप तो अब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपनी डायरी में देख के या फोन में देख कर बोलती हूँ आई मेमोराइज माई पीसेज. और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप खुद की रचना पढ़ रहे हैं, आप किसी और की रचना भी पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको कंठस्थ करते हैं, तो आप उनके इमोशंस को अपने अंदर बहुत ही खूबसूरती से एब्जॉर्ब करते हैं और बेहतरीन तरीके से आप उसको डिलीवर कर पाते हैं. सो फॉर मी, दीज थ्री क्वालिटीज दैट आई पर्सनली फील is a sign of a great performer. Confidence, delivering your 200% and memorizing your piece.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही आपने कहा कि कनेक्ट क्रिएट करने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप कुछ चीजें अपने ऑडियंस को ओ करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो आपको 5 मिनट या 2 मिनट भी सुन रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा लेके जाएं जो उनका वर्थ एवरी वाइल हो. तो आपके लिए भी और उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह से डिलीवर करें और इस तरह से अपने पीस को नरेट करें या लिखें कि वो एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाए. एंड ऑफ कोर्स, गिविंग योर 200% इज आई थिंक द की टू एवरीथिंग,
1: राइट?
0: तो आगे चलते हैं मैम. मेरा आखिरी सवाल है आज का, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और उनके पास एक आउटलेट नहीं है अपने इमोशंस के लिए, वो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब लोग ना लिख पाते हैं ना, यू नो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत इमोशंस हैं बट वो उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए कोई तरीका ही नहीं ढूंढ पाते, तो वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कैसे अपनी आवाज पे भरोसा कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरा इमोशनल आउटलेट हो सकता है, ये मेरा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है, किस तरह से वो शुरू कर सकते हैं, अगर कोई आप सलाह देना चाहें?
1: डेफिनेटली तनुषा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बहुत जरूरी है फिगरिंग आउट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट, क्या आप सच में एक कवि बनना चाहते हो, एक लेखक बनना चाहते हो, आर यू सीरियस अबाउट इट? मतलब कई, अभी देखो अभी क्या हो रहा है ना, कि जो भी आई सी मेनी यंगस्टर्स, अब किसी को भी लगता है कि अगर वट एवर दे आर स्टडिंग इन द कॉलेज, वे आर दे आर डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब, सबको लगता है कि साइड में पोएट्री कर लो बिकॉज AI इज अवेलेबल, ChatGPT इज अवेलेबल, तो किसी कोई कॉन्टेंट को हल्का सा कॉपी किया, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट एंड टर्न किया, ChatGPT में डाला और उसको पेश कर दो. सो this is not the right thing. You have to figure out, are you really meant for it? Secondly, you have to stay true to your craft. You just copying the content from somewhere, ChatGPT से, AI से आप बोलोगे, जैसे हम जैसे लोग तो फटाफट बता देते हैं, क्योंकि ह्यूमन टच होता ही नहीं है उस कॉन्टेंट में, आपको बिल्कुल पता चल जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर इट आउट. वंस यू हैव फिगर इट आउट, जस्ट AI और चैट जीपीटी इन सबको या कहीं कॉपी वॉपी करना ये सब साइड में रख दो। दूसरी चीज है अपनी डायरी बनाओ, एक पेन लो और शुरू करो लिखना। अब सवाल आता है कि क्या लिखें, तो सबसे पहले जो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जब आप शुरू करते हो लिखना तो आप अपने एनेक्डोट्स लिखो, अपनी पर्सनल कहानियां लिखो, क्योंकि हर इंसान के दिल के करीब बचपन बहुत होता है, दिल के करीब माँ बहुत करीब होती है, दोस्त बहुत करीब होते हैं, कॉलेज के दिन बहुत करीब होते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स उनमें से निकल के आएंगे। उन थॉट्स को लिखो, जैसा आ रहा है, जैसी लाइन्स आ रही है, रॉ आ रही है, उनको लिखो। थॉट्स आने बंद हो रहे हैं, डायरी को बंद कर दो, लेट इट फर्मेंट, लेट इट स्टे देयर ओवरनाइट। अगले दिन जाओ एक ताजा मनस्थिति के साथ, एक ताजा दिमाग के साथ फिर से लिखो और फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश करके और अच्छे शब्दों में लिख के, उस शब्दों में आप जरूर हेल्प ले सकते हो, आप थिसॉरस यूज कर सकते हो एंड आप शब्दकोश यूज कर सकते हो, तो इस तरह की जो आप वो भी अगर आप है ना नेचुरली यूज करो, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, वो क्योंकि वो डिक्शनरी की खुशबू एंड यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल हैबिट, उसमें देखना आजकल बच्चे भूल ही गए।
0: मुझे लगता नहीं बहुत लोग जानते हैं शब्दकोश और थिसॉरस के बारे में आज की जनरेशन,
1: तो
0: हम तो पढ़ते ही उससे थे, हमारे साथ हमारे बैग में रहती थी हमेशा थिसॉरस,
1: बैग में रहती थी, राइट राइट। तो अगर ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो उसके लिए आप जरूर चैट जीपीटी या एआई की हेल्प ले लो आपको अच्छे वर्ड्स ढूंढने के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन दैट। और जरूरी नहीं है कि आप फैंसी राइटिंग लिखो, सिंपल राइटिंग्स भी बहुत कनेक्ट करती है लोगों के साथ, जल्दी कनेक्ट करती है। सो फर्स्ट इज फिगरिंग आउट, सेकेंड इज स्टार्ट पेनिंग डाउन, स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर एनेक्डोट्स, थर्ड इज कंसिस्टेंसी। जब आपने कुछ लिखा, आप मेक श्योर करो कि आप हर रोज लिखो, आप चाहे दो लाइन लिखो पर आप हर रोज लिखो, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर आर्ट, राइट। देन फोर्थ इज रीड अलॉट, तो कुछ लिखने
0: नंबर वन,
1: यस, सो कुछ लिखने के लिए आपको बहुत सारा कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। आपके जो इफ यू आर अ कंटेम्प्ररी बडिंग राइटर, आपके जो कंटेम्प्ररी राइटर्स हैं उनको पढ़ो, फिर धीरे धीरे जब आपको, क्योंकि वो ईजी होता है रीड करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, फिर जो स्टैब्लिश, जो बहुत पुराने और जो यू नो रिनाउंड ऑल टाइम रिनाउंड पोएट्स हैं उनकी आप पढ़ सकते हो रचनाएं। और इससे क्या होगा ना कि आप बहुत कुछ सीखोगे, आप देखोगे कि किस तरह से एक बहुत ही सिंपल सी चीज को किस तरह से शब्दों के डेकोरेशन से कितने अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। तो ये आर्ट आप उसी से सीखोगे जब आप बहुत सारा पढ़ोगे। एंड लास्ट इज ग्रेटिट्यूड, जस्ट बिकॉज मैं खुद के लिए भी हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं लिखती, माँ सरस्वती लिखवाती है, मैं नहीं कहती, माँ सरस्वती कहलवाती है मुझसे, मेरी जुबान से। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करो कि आपके, सो दैट यू गेट दैट ब्लेसिंग कि यस, माँ सरस्वती, माँ शारदा की ब्लेसिंग से आपको आपको ये हुनर मिला कि आप अपने विचारों को इतने खूबसूरती से कह पाओ, लिख पाओ, दुनिया के सामने पेश कर पाओ। तो ये ग्रेटिट्यूड हमेशा रखे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि सुख वेले अरदास, दुख वेले शुक्राना और हर वेले भी शुक्राना। तो सच में शुक्र करना तो खैर बहुत बहुत बहुत जरूरी है, जो आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है, तो उसको समझिए, देखें। और मैम ने जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरती से बताया सोनल मैम कि किस तरह से ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये सब चीजें वो हैं जो इनएविटेबल हैं किसी भी राइटर या स्टोरी टेलर के लिए या किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए। आपको ट्रू रहना, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और अपने आप को बेस्ट और बेटर करने के लिए, बेटर और बेस्ट करने के लिए, इनफैक्ट अपने आप को रेजर शार्प करने के लिए रीडिंग करना, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपको थॉट्स आएंगे ही नहीं। आप शायद दो पोइट्री जरूर लिख पाएंगे बट जब तीसरी पोइट्री लिखने बैठेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास तो थॉट्स ही नहीं है। तो अगर आप उन पोएट्स को नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने इतनी खूबसूरत रचनाएं करी हैं, या उन लोगों को नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोज लिखे हैं, लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे एनी लैंग्वेज जो आप लिखना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक आप अपने बेस्ट पोटेंशियल को कभी भी टैप कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी, लाइक यू सेड अगेन, आई वुड लाइक टू प्रेस ऑन द पॉइंट कि कंसिस्टेंट रहें, चाहे दो ही लाइन लिखें रोज बट लिखें, अगर आप इस जर्नी को पे चलना चाहते हैं, इस पथ पे चलना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं इस लाइन में। तो थैंक यू सो मच सोनल मैम। आखिर में मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमें कुछ अपने प्यारे शब्दों और अपनी बहुत खूबसूरत आवाज में और प्रेजेंटेशन स्किल्स में कुछ सुना सके।
1: बिल्कुल तनुषा, इट इज प्लेजर, माई प्लेजर कम्प्लीटली। तो मैं जो आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो कविता है पुनर्जीवन की उड़ान। तो आपने फिनिक्स सुना है, फिनिक्स के बारे में,
0: राइज फ्रॉम द एशेज।
1: तो क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं लिखते हुए, तो लेट मी टेल यू कि कई भी ये सफर आसान नहीं होता। यू नो, कई बार होता है विचार नहीं आते, कई बार आप बहुत जूझते हो, आपको सही शब्द नहीं मिलते, और कई बार सही रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। कई बार आपको लगता है कि मैंने ये क्यों लिख दिया, ये तो है ही नहीं, ये दिस डजंट मैच माई स्टैंडर्ड। तो बहुत सारे ऐसी चीजें आती है, और बहुत सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद आप एक पॉलिश्ड पोएट या राइटर बनते हो। तो उसी पर ये मेटाफर है, उसी पर ये कविता है पुनर्जीवन की उड़ान। एंड इट गोज लाइक दिस। ध्वंस की छाव में चुपचाप फड़फड़ाई, ध्वंस की छाव में चुपचाप फड़फड़ाई, राख से उठी अंगारों में मुस्काई कविता। जलाने के लिए कागज भी कम पड़े, जलाने के लिए कागज भी कम पड़े, मिटकर भी फिर से उठ खड़ी हुई कविता। शब्दों की भीड़ में जब मौन सा छा गया, शब्दों की भीड़ में जब मौन सा छाया, मन की झील में पत्थर बन गिरी कविता। कलम थमी भाव बिखरे, रहा भी खो गई, कलम थमी भाव बिखरे, रहा भी खो गई, अपने ही साये से डरकर सहमी कविता। आत्मा को चीर कर सिसकी सी जब निकली, आत्मा को चीर कर सिसकी सी जब निकली, वही टीस बनकर दिलों में बहती कविता। तन्हाई की सीलन में जब स्वर भीग गए, तन्हाई की सीलन में जब स्वर भीग गए, आंसुओं की स्याही से ढांढस बांधती कविता। डरती पर उड़ती, डरती पर उड़ती, सूने गगन की रौनक बढ़ाती, टूटे पंखों से भी नभ की ऊंचाइयां नापती कविता। न सरहदे न बंदिशे न ध्रुव तारों पाई, न सरहदे न बंदिशे न ध्रुव तारों पाई, दूर दूर तक पहुंची ख्याति पाती कविता। न भाषा की दीवार न लिपियों की कड़ियां, न भाषा की दीवार न लिपियों की कड़ियां, जहां संवेदना पहुंचे वहीं बसेरा करती कविता। सोच के वीरानों में अक्सर भटकती, सोच के वीरानों में अक्सर भटकती, जीवन के अनेक अर्थ रचती कविता। अनकहे दर्द को सलीके से कहती, अनकहे दर्द को सलीके से कहती, घावों पर मरहम का काम करती कविता। जिसकी उड़ान में समय की सांसें बसती, जिसकी उड़ान में समय की सांसें बसती, ऐसे ही खाक से फलक तक का सफर तय करती कविता। और अपने

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जिंदगी जीने के तीन नियम। पहला नियम, ये व्यक्ति कहते हैं, चमकती आंखों से अपने आसपास की पूरी दुनिया को देखो। महान रहस्य ज्यादातर अजीबोगरीब जगहों पर होते हैं। जो चमत्कारों पर भरोसा नहीं रखते, उनके साथ चमत्कार होते भी नहीं। तो भैया, आंखों से जितना हम देख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे हो रहा होता है। जी हां, फिर चीजें दिखती तभी हैं जब खोजने वाली नजरें हों। तो ध्यान दीजिए अपनी चारों तरफ, ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। नियम नंबर दो, लक्ष्य होना अच्छा है, पर उससे हमारे अच्छे गुणों का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इन्होंने तो कह दिया, मतलब क्या हुआ। जीवन में कुछ बड़े सपने होने चाहिए। देखिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की गई कोशिशें भी हमें तरक्की की मार्ग पर ले जाती हैं। कोशिश तो करें, हमारी मेहनत हमें मांझती है, तैयार करती है। हमारा जुनून हमें बहुत कुछ बदल डालता है। कोशिश तो करें, पर किसी भी कीमत पर इच्छाओं को पूरा करने की जिद हमें कहीं नहीं ले जाती। जिद मत करिए, पैशनेट रखिए और काम करते तो रहिए। नियम नंबर तीन, स्वीकार करें और फिर काम करें। इस पल में जो कुछ भी सामने है, उसे मान लें जैसे उसे आपने ही चुना हो। अपने आज का विरोध ना करें, जबरदस्ती अपोज ना करें उसका। उसे फ्रेंड बनाएं, शत्रु नहीं। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। कल कैसा होगा हम कुछ नहीं कह सकते, पर कल को बेहतर बनाने के लिए हम आज मेहनत तो देखिए जरूर कर सकते हैं, पर इसके लिए आज को समझना भी तो जरूरी है। तो समझिए, आज में खुश रहिए, आज को समझिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दस्तकें। दरवाजे पर दी गई दस्तकें हैरत की आवाजें हैं। ये पूछना कि बाहर कौन है, दिल का जोर जोर से धड़कना है। दरवाजे खोलना प्रार्थनाएं हैं। दरवाजे के उस तरफ उसका नहीं होना कविता है। आंखें बंद करना और दरवाजों की दस्तक पर हैरान होना प्रेम है, प्रतीक्षा है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी यानी कि आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पापा ने पूछा, बेटी बड़ी होकर तुम क्या करोगी? बेटी ने बहुत हंसते हुए कहा, शादी कर लूंगी। पापा ने कहा, ये गलत बात है बेटे, अभी से किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचते। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

एक बार महर्षि व्यास ने अपने बेटे शुकदेव को पढ़ने के लिए राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक का महल देखकर शुकदेव जी को लगा कि राजा उन्हें क्या उपदेश दे पाएंगे, बेकार में ही पिताजी ने इनके पास मुझे भेज दिया है। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए। लेकिन शुकदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार न कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस शुकदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आज आपको बताता हूं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हां, इनका नाम था कैलाश सांखला। अपने यहां कहा भी गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब वीर ही इस धरती का भोग करेगा। यही बात व्यवहार में जब बहुत मजबूत हो गई तो अपना देश गुलाम हो गया। हमारे ज्यादातर कथित वीर अपने दुश्मनों को धूल चटाने के बजाय बाघ मारने में मस्त हो गए। 1875 से 1925 के बीच कथित वीर राजा राजकुमारों और कथित अंग्रेज बहादुरों ने 80,000 बाघों का कत्ल कर दिया। 1947 में अनुमानतः 40,000 बाघ थे। मैसूर के एक महाराजा और उनके मेहमानों ने 1945 से 1967 के बीच 100 से ज्यादा बाघ मार डाले। वो महाराज अपने अंतिम दिनों में बड़े निराश रहते थे कि 95 बाघ मारने के बाद वो 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। और तो और, भारत की आजादी के बाद भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ साल 1961 में सवाई माधोपुर आई और एक बाघ मारने की अपनी खूनी शौक पूरा कर गई। बाघों और वन्य जीवों ने इस जम्बू द्वीप पर कथित इंसानों के हाथों हैवानियत का वो दारुण दौर देखा है जब जंगल के कथित रक्षक अधिकारी शिकार की मंजूरी दिया करते थे। वन कटवाना, वन्य जीवों को मरवाना बिकवाना, ये कानूनी धंधा था। तब तमाम यारबाज वन रक्षक या कहिए तो भक्षक शिकार करवाने के लिए बहुत मशहूर हुआ करते थे। राजस्थान में एक ऐसे ही अधिकारी थे जो शिकार की मंजूरी बेधड़क दिया करते थे, लेकिन एक दिन संयोग से वो खुद शिकार पर निकल पड़े। आसानी से एक बाघ दिख गया, उससे भी ज्यादा आसानी से रक्षक महोदय ने उस पर बंदूक साध दी और गोली चला दी। बड़े ही शान से वो उस बाघ के पास पहुंचे और गौर किया कि कितने खूबसूरत जीव को उन्होंने मार गिराया। उसके बदन पर बहुत सुंदर चमकीली धारियां थीं, एकदम कोमल। शायद उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, शायद वो पूछना चाहता था, साहब आप वन रक्षक हो या भक्षक? वन आपको रक्षा करने के लिए दिया गया है या तबाह करने के लिए? वन का मतलब केवल पेड़ नहीं होते, वन्य जीव भी तो होते हैं। वन्य जीवों के बिना पेड़ों का या फिर जंगलों का मतलब ही क्या है? सवालों ने अधिकारी महोदय का पीछा करना शुरू कर दिया। बताओ कि शिकारी हो या संरक्षक? अगर संरक्षक हो तो शिकार क्यों किया, क्यों मारा? अगर जिंदा कर सकते हो तो जिंदा करके दिखाओ। खाल पर जो सुंदर धारियां हैं उनमें से एक भी बनाकर दिखाओ तो जाने। पछतावे ने बहुत बेचैन कर दिया, होने लगी बहुत परेशानी। ये क्या कर डाला मैंने? क्या यही भारतीय वन्य सेवा है? वो सोचने में डूब गए कि मैंने तो एक ही मारा, लेकिन सैकड़ों बाघों को शिकार का लिखित मंजूरी देकर मैंने ही तो मरवाया। मैं अनगिनत बाघों और वन्य जीवों का अपराधी हूं। उन्होंने गौर करना शुरू किया तो देखा भारी सरकारी पैसा पा रहे अनेक रजवाड़े शिकार करके मूछे ऐंठ रहे हैं। उदयपुर के महाराज हों या टोंक के नवाब, जयपुर के कर्नल हों, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1,000 बाघों के शिकार में भाग लिया। जाने कितने ही तेंदुए, जंगली सुअर और अन्य बड़ी बिल्लियां मार दी गईं, कोई हिसाब नहीं। असर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में लोग चर्चा करने लगे कि एक युवा वन अधिकारी हैं कैलाश सांखला, जो शिकार की मंजूरी नहीं देते। साल 1956 से ही सांखला ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि कृपया अबोध वन्य प्राणियों को मत मारिए, वरना वो समाप्त हो जाएंगे और जंगलों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब हालात बेहद खराब थे। दुनिया भर में भारत में पर्यटन का मतलब होता था जंगलों में जाइए और जानवरों को मारने का मजा लूटिए।
कैलाश सांखला देश में पहले ऐसे वन्य जीव प्रेमी थे जिन्होंने समझ लिया कि पहले देश का कानून बदलना पड़ेगा। सांखला के प्रयासों से धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। वन्य जीवों और उनके अंगों का व्यापार रुक गया, निर्यात रुका और अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को समझ में आ गया कि बाघों को बचाना होगा और तब देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कैलाश सांखला उसके पहले निदेशक बनाए गए। तब भारत के जंगलों में 300 से कम बाघ बचे थे। वो कहते थे कि जंगलों में कुछ मत करो और किसी को कुछ करने भी मत दो, प्रकृति अपने आप असली रंग रूप में लौट आएगी और बस कम से कम मानवीय हस्तक्षेप तो ना होने दो। भारत में साल 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शानदार शुरुआत हुई। उस साल बाघ देश के 9 जंगलों में सुरक्षित थे और अब करीब 53 जंगलों में सुरक्षित है। 29 जुलाई को जब विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है तब पूरी दुनिया गौर करती है, 75% बाघ केवल अकेले भारत में हैं। यहां वनों में उनकी संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में कैलाश सांखला को भला हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेम करुणा और क्रोध घृणा की शक्तियां संसार में हमेशा काम करती रहती हैं। ये एक झूले के खेल की तरह होता है। अब सवाल यह है कि आप झूले के किस सिरे को वजनदार करना चाहते हैं। जैसे ही आप ऐसी चीजों में विश्वास करना शुरू करते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, स्वाभाविक है आप द्वंद में जीने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। आज आप एक शांत व्यक्ति हैं, लेकिन कल अगर कोई आपकी मान्यताओं और परंपराओं का विरोध करने लग जाए तो आप उससे तुरंत झगड़ने लगते हैं। विश्वास में जीने में भला क्या बुद्धिमानी है? विश्वास में जीने से क्या लाभ है? सिर्फ इतना ही कि आपका अहम संतुष्ट हो जाता है। मैं नहीं जानता, अहम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जानता हूं, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अहम को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी खास स्थिति में जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, आप किसी के साथ लड़ने के योग्य नहीं रह जाते, आप विरोध के योग्य भी नहीं रह जाते, आप अत्यंत विनम्र और बेहद अच्छे इंसान हो जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर शांति लाने के योग्य नहीं हैं, आप भला विश्व में शांति स्थापित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? मतलब यह हुआ कि अगर आप अंदर से खुद शांत नहीं हैं, तो बाहर आप शांति कैसे फैला सकते हैं? अगर इस छोटे से मन को आप शांत नहीं कर सकते, तो क्या विश्व में शांति पैदा कर पाएंगे? आप संसार में जो भी देख रहे हैं वो आपके छोटे से मन की एक छवि है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपके मन में नहीं हो रही? वही तो हो रही है। योग विज्ञान अपने भीतर देखने का एक तरीका है। किसी खास दृष्टिकोण से नहीं देखना, सिर्फ भीतर देखना। यदि आप किसी चीज से अपने पहचान बना लें, तो आप भीतर नहीं देख सकते। जैसे ही आप किसी चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है दोस्तों कि मैं एक तरह की गाड़ी चलाता हूं, मैं एक तरह के मकान में रहता हूं, फ्लैट में रहता हूं, एक तरह का मोबाइल लिए फिरता हूं। क्या मेरी पहचान इन चीजों से है या मेरी पहचान से इन चीजों की पहचान है? सोचने की कोशिश कीजिए। आपका सोचना और महसूस करना बस इसी बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त आपने अपनी पहचान किससे बनाई है। गाड़ी से, मोबाइल से, घड़ी से, घर से, किससे? अपनी पहचान को मिटाने और सच्ची शांति का अनुभव करने में ध्यान आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो कम से कम उस वक्त तो आपके लिए कुछ भी और मायने नहीं रह जाता, सिर्फ आपका वजूद बच जाता है। वहां भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शांति का मतलब है शून्यता या खालीपन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं। शांति ऐसी कोई चीज नहीं है जो घटित होती है। शांति ऐसी चीज है जो हमेशा है। शांति ही अस्तित्व की बुनियाद है। सतह पर जो होता है व्यवधान है, उपद्रव है, वो ठीक समुद्र जैसा होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है ना, लेकिन नीचे गहराइयों में ये पूरा शांत होता है। जब आप इस गुण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेंगे तो वास्तव में शांति पा जाएंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं ये प्रसिद्ध जोड़ी आनंद मिलिंद की। आनंद मिलिंद हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। प्रतिभाशाली संगीतकार चित्रगुप्त के ये दोनों बेटे आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त अपनी शुरुआती दौर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक रहे।

अपने पिता के सहायक के तौर पर भी उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं उनकी बनाई हुई तर्ज पर ये गीत।

उनकी पहली सफल हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक थी। बस इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म आमिर खान की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उदित नारायण जी ने गाया था। इस फिल्म के संगीत के लिए आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चलिए सुनते हैं यही गीत।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अगर 60 का दशक म्यूजिक के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो 80 और 90 के दशक को अब भी इसकी सुरीली धुनों के लिए याद किया जाता है। इस जोड़ी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दे दिया है।

इनकी सबसे पहली फिल्म थी 1982 में अब आएगा मजा। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फारूक शेख और अनीता राज ने काम किया था। इसके कई गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस फिल्म के संगीतकार आनंद मिलन हैं, बस लता जी के आशीर्वाद से इनकी डिमांड बढ़ती चली गई।

उदित नारायण की आवाज इन्हें शुरू से ही पसंद थी, तो इसलिए इनके ज्यादातर गाने उदित नारायण जी ने ही गाए। और दूसरी गायिका थी अलका याग्निक। अलका याग्निक भी इनके संगीत पर बराबरी से गाती रहीं। चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक और गीत।

गोविंदा की दूल्हे राजा और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों के गाने सुनने में बड़े हल्के फुल्के से लगते हैं, लेकिन ऐसे गाने संगीतबद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के फनकार हैं मदन मोहन जी, जो हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। आइए दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मदन मोहन जी के बनाए हुए इस गीत से।

मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस बलों के साथ महालेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। मदन मोहन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष मध्य पूर्व में बिताए थे।

1932 के बाद उनका परिवार अपने गृह शहर चकवाल फिर पंजाब प्रांत पाकिस्तान झेलम जिले में लौट आया। उन्हें एक दादा दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया जबकि उनके पिता व्यवसाय के अवसरों की तलाश में बॉम्बे आए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की।

लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत कम समय के लिए एक करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी। हालांकि संगीत में उन्हें कोई खास प्रशिक्षण नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

सन 1943 में वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 साल तक वहां सर्विस की, फिर सेना छोड़ दी और अपने संगीत हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई लौटे। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। वहां वो उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इन दिनों के दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत बनाते थे। चलिए दोस्तों, सुने उनका ये गीत।

संगीतकार मदन मोहन के मामले में संगीतकार खय्याम साहब का कहना है कि वो संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती हैं उन्हें उनका गहरा ज्ञान था। हालांकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण उन्होंने कभी नहीं लिया। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी सी अवधि के लिए ही काम किया। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। बस फिर क्या था, मदन मोहन जी की किस्मत बदल गई। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 और 1948 के बीच उन्होंने संगीतकार एस डी बर्मन को दो भाई के लिए और श्याम सुंदर को एक्ट्रेस के लिए संगीत सहायक की भूमिका भी निभाई। चलिए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

कौन ये जाने कब मिल जाए, रास्ते में हम रात कोई, मेरे दिल का दर्द समझ।

जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है

Yeah.

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: कुछ दर्द सिर्फ दिल में रहते हैं, कहने से और बढ़ जाते हैं। लोग पूछते हैं सब ठीक तो है, हम मुस्कुराकर टाल जाते हैं। जो अपना था वही दूर हो गया, ख्वाब सारे बिखर जाते हैं। यादों के सिलसिले भी अजीब हैं, हर पल दिल को रुलाते हैं। आंसू आंखों से गिरते नहीं, बस दिल में रह जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जनाब, जो कभी अल्फाज नहीं बन पाते हैं, लेकिन एहसास बन के चुपचाप वहीं ठहर जाते हैं। कुछ लोग मिलकर भी नहीं मिलते, और कुछ बिन मिले ही दिल में बस जाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भीड़ पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। महफिलों लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपकी अपनी, आपकी महफिलों की रौनक बढ़ाने वाला प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, इस दुनिया के अजीब दस्तूर हैं, कभी कभी बहुत सारी बातें कह कर भी दिल का बोझ हल्का नहीं होता, और कभी महज एक नफीस नज्म को सुनते ही रूह जैसे अंदर तक भीग जाती है। आज की शाम भी कुछ ऐसे ही अछूते एहसासों का एक मुकम्मल गुलदस्ता है, जहां गुजरे दौर की वफा और आज के जमाने के रंग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज आपको हर मकाम पर एक नया मिजाज और रंग मयसर होगा। तो अपनी सारी मसरूफियात को किनारे कर दीजिए और सुरों के इस बहाव के साथ खुद को ताज़ा एहसास अता कीजिए। तो आइए पर्दा हटाते हैं आज की हमारी पहली और बेहद ख़ास पेशकश से। दोस्तों, गुजरी हुई बातें, पुरानी यादें और वो बीते हुए लम्हे, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने दिल से जुदा नहीं कर पाता। जब तन्हाई का साया गहरा होता है तो माजी का एक एक पल हमारे सामने आईने की तरह साफ दिखाई देने लगता है। शायर अमीर का जलबाश यादों के इसी सिलसिले को इस नज़्म में बेहद नज़ाकत के साथ समेटा है। वो महबूब से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछते हैं कि मुझे तो हमारे उस गुजरे कल का हर एक लम्हा आज भी वैसा ही याद आता है, पर क्या कभी तन्हाई में तुम्हें भी हमारा वो अफसाना याद आता है? और जब इस तहरीर को सुरों का लिबास पहनाने की बात आई तो हमारे सामने जो नाम आया वो है हमारे मारूफ गुलूकार गुलाम अली साहब का, क्योंकि लफ्ज़ों को सिर्फ गाते नहीं हैं बल्कि उसके दर्द को अपनी आवाज़ में घोल देते हैं। उनका वो साफ और बेदाग उर्दू लहजा सीधे जहन पर एक गहरा असर छोड़ जाता है। ज़रा इस गज़ल का मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या मोहब्बत के उस शुरुआती दौर का जिक्र है, कहते हैं, नया नया था वो रोना, नया नया था वो रोना, वो मुस्कुराना भी, हमें तो अब भी पहला जमाना याद आता है। और जब मोहब्बत में इंतज़ार आखिरी हदों को छूता है तो गुलाम अली साहब की ठहरी हुई तान सीधे कलेजे के पार हो जाती है। फरमाते हैं, गए दिनों का तसव्वुर बदल गया वरना, गए दिनों का तसव्वुर बदल गया वरना, हमें तो अब भी वो पहला जमाना याद है। दोस्तों, 80 की दहाई में इस कलाम को गजले दिल कैसेट एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत कलाम गुलाम अली साहब की रूहानी आवाज में, हमें तो अब भी वो गुजरा जमाना याद है। आपकी नजर में

दोस्तों, जब दो चाहने वालों के बीच एक लंबा अरसा गुजर जाता है और फिर वक्त के किसी मोड़ पर जब अचानक वो हमसफर सामने आ खड़ा होता है, तो बरसों की वो खामोशी पल भर में जश्न में बदल जाती है। अली सरदार जाफरी ने इस खूबसूरत कलाम में उसी रूहानी मिलन और सुकून को लफ्ज दिए हैं। मुद्दत यानी एक बहुत लंबा ज़माना, शायर कहते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने देखा अचानक तो ऐसा महसूस हुआ मानो इस बेचैन रूह को हमेशा के लिए अपनी मंजिल मिल गई हो। और दोस्तों, जब साल 1980 में इस नायाब तहरीर को मैं और मेरी तन्हाई एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया, तो हमारे जगजीत जी और चित्रा जी ने अपनी बेहद मखमली आवाज़ में इस चार चांद लगा दिए। गज़ल के मिसरे मुलाजा फरमाइए। तिश्ना नजरें मिली शोक नजरों से, जब मैं बरसने लगी जाम भरने लगे। फिर कहते हैं, रात सोने लगी सुबह होने लगी, शम्मा बुझने लगी दिल मचलने लगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये बेहद नफीस कलाम जगजीत और चित्रा सिंह की किया जादुई आवाज़ में। बाद मुद्दत तुम्हें देख कर यूं लगा,

गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया, किधर गया वो अजीब मानुस, अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। दोस्तों, जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में कभी कभी कोई ऐसा शख्स हमारे रास्ते में आता है जो बिल्कुल अजनबी होकर भी दिल के बेहद करीब महसूस होता है। वो हमारे अतीत की दबी हुई यादों को अचानक ताज़ा कर देता है और इससे पहले कि हम समझ पाएं वो चुपचाप उछल हो जाता है। शायर नासिर काज़मी साहब ने वजूद के इसी खामोश मलाल और बिरह को इन वजनी अल्फाजों में पिरोया है। सुराग यानी बीती हुई बातों की कोई निशानी या खोज। वो कहते हैं, वो शख्स न जाने कहाँ से आया, मुझे अपनी यादों की कश्मकश में छोड़ गया और फिर न जाने किधर गुम हो गया। और दोस्तों, जब साल 1983 में इस खूबसूरत तहरीर को मेराज़ गज़ल एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया तो इन अल्फाजों को रूहानी पैरहन ओढ़ाया गया हमारी आशाताई और उस्ताद गुलाम अली की खूबसूरत आवाज़ों में। जब उस्ताद जी की ठहरी हुई क्लासिकी गायकी के साथ आशाताई के सुरों का वो नाजुक सोज खुलता है तो ये कलाम सिर्फ एक गज़ल नहीं रहता बल्कि सीधे रूह के पार उतर जाता है। गज़ल का मिसरा सुनिए। ना अब वो यादों का चढ़ता दरिया, ना अब वो यादों का चढ़ता दरिया, ना फुर्सतों की उदास बरखा, यूं ही ज़रा सी कसक है दिल में जो जख्म गहरा था भर गया वो। फिर वो आगे कहते हैं, वो हिजर की रात का सितारा, वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस तीसरे और बेहद नफीस मरहले पर समायत फरमाते हैं आशाताई और उस्ताद गुलाम अली साहब की आवाज़ में इस खूबसूरत से कलाम को। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया, किधर गया वो अजीब मानुस, अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो आपकी नज़र।

साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे, साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे, दुनिया की निगाहों से जख्मों को छुपा लेंगे। दोस्तों, 1981 में इस बाकमाल सूफियाना ख्याल को मैं नौश कैसेट एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया, तो इसे अपने ख़ास सुरीले अंदाज से नवाजा हमारे दौर के बेहद बाकमाल गुलकार अनूप जलोटा जी ने। जी हाँ दोस्तों, अनूप जलोटा जी जिन्हें ज़्यादातर लोग भजन गाने के लिए ही समझते हैं या जानते हैं, लेकिन अनूप जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनकी मखमली मिठास और साफ उर्दू उच्चारण ने इस रिवायती विधा के साथ मिलकर जहन पर एक अजब सा सुकून तारी कर दिया। इस गजल का मिसरा मुलाजा फरमाए, कहते हैं हम देख नहीं सकते शर्मिंदगी कातिल की। मुलाजा फरमाए, गौर करें क्या कह रहे हैं, हम देख नहीं सकते शर्मिंदगी कातिल की, जब काबे में जाएंगे जम जम से नहा लेंगे। शायर कहते हैं जिसने मुझे जख्म दिए हैं मैं उसे अपनी ही आंखों में शर्मिंदगी का पानी भी नहीं देख सकता, यानी उसकी ही आंखों में शर्मिंदगी का पानी भी नहीं देख सकता जिसने मुझे ज़ख्म दिए हैं, इसलिए मैं अपनी तकलीफ़ों का इल्ज़ाम उन पर लगाने की बजाय खुदा की बारगाह में जाकर अपने आंसुओं और उस पाक पानी से अपने दिल के सारे ज़ख्मों को मुकम्मल तौर पर धो लूँगा। जब काबे में जाएंगे जम जम के नहा लेंगे। तो आइए सुनते हैं महफिल के अगले मरहले पर बहुत ध्यान से अनूप जलोटा जी की आवाज़ में इस बेहद खूबसूरत शाहकार को। साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे, दुनिया की निगाहों में जख्मों को छुपा लेंगे। शौक फरमाएं।

दोस्तों, इस मशहूर कलाम के शायर मसरूर अनवर साहब ने इस तारीखी कलाम को मोहब्बत के उसी अटूट हौसले को लफ्ज़ दिए हैं। वो महबूब की बेरुखी के जवाब में एक साफ गवाही देते हैं कि तुम आज भले ही मुझे अपने नज़रों से उछल कर दो, मगर मेरी इस पाकीज़ा चाहत को का जो नक्श तुम्हारे दिल पर छुटा है, उसे तुम मरते दम तक नहीं मिटा पाओगे। बुनियादी तौर पर ये गज़ल मेहदी हसन साहब की आवाज़ में साल 1967 में रिकॉर्ड हुई थी और आज हम इसे बिल्कुल नए और जुदा अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस तहरीर को अपने रेशमी और मखमली लहजों का पहरहन दिया है मोहतरमा अनुराधा पौंडवाल जी ने। जी हाँ, अनुराधा पौंडवाल जी ने जब इस गुज़रे ज़माने की इस महान विरासत को अपनी ठहरी हुई आवाज़ से नवाजा, तो ये कलाम बिरहा के जज्बात को एक नए सुकून के साथ बयान करने लगा। गज़ल का मिसरा कुछ यूं है, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बनके कभी बनके आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में ये गज़ल आपकी नज़र।

ए इश्क हमें इतना तो बता, ए इश्क हमें इतना तो बता, अंजाम हमारा क्या होगा। तकदीर बता अब इससे बुरा, अंजाम हमारा क्या होगा। दोस्तों, इस महफिल की आखिरी गजल एक बहुत नायाब चीज है। इस कलाम में मोहब्बत की उस बेबसी और आजमाइश को लिखा गया है, जहाँ सब कुछ लुटा देने के बाद भी इंसान को मंजिल का कोई सिरा नहीं मिलता। वो कहता है, ए इश्क तूने मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, ज़रा मुड़ कर देख कि अब इस तन्हाई से बुरा मेरा और क्या हशर हो सकता है। साल 1977 के उस सुनहरी दौर की इस तारीखी नज़्म को गाया है उर्दू अदब की एक बेहद शालीन और बुलंद शख्सियत ने, यानी मोहतरमा मुन्नी बेगम साहिबा ने, जिनकी पुरसोज भारी और ठहरी हुई आवाज़ में एक मखमली कशिश छुपी हुई है, जो सीधे सुनने वालों के दिल पर एक गहरा असर छोड़ जाती है। गजल का मिसरा कुछ यूं है, नादान चमन में कलियों ने लब खोल दिए हंसने के लिए। गौर फरमाएं दोस्तों, नादान चमन में कलियों ने लब खोल दिए हंसने के लिए। वो पूछ रही हैं शबनम से, वो पूछ रही हैं शबनम से, अंजाम हमारा क्या होगा। फिर ये कि कश्ती ना रही, साहिल की तमन्ना भी ना रही, कश्ती भी ना रही और साहिल की तमन्ना भी ना रही, अब पूछने वालों जाहिर है अंजाम हमारा क्या होगा। तो आइए सुनते हैं अल्फाज से एहसास तक के इस प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश। इश्क हमें इतना तो बता दे, अंजाम हमारा क्या होगा। मोहतरमा मुन्नी बाई की आवाज़ में आपकी नज़र।

दोस्तों, गुज़रे हुए ज़माने की यादों से शुरू हुआ अल्फाज और सुरों का ये कारवां अब आज के इस सुरीले सफ़र के आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा है। आज जो अजीम गुलुकारों के बेहतरीन कलाम हमने सुने, वो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। हकीकत यही है, रेडियो की तरंगे खामोश होने पर भी दिल के किसी कोने में ये अल्फाज और सुर गूंजते रहेंगे। किसी शायर ने महफिल के इसी खामोश असर को क्या खूब बयां किया है। कहते हैं, धुंधली सी एक लकीर मुकद्दर की खींच कर, धुंधली सी एक लकीर मुकद्दर की खींच कर, कुछ लफ्ज हवाओं में सुलगते ही रह गए। इसी खूबसूरत और मखमली असर को अपने दिलों में महफूज रखते हुए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आरती राय को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील। आप सभी कदरदानों को मेरी तरफ से पुरसकून शबा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: घर सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
8: हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनी परिवार का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। जैसा कि रेडियो टांटाबिल 90.8 FM छावा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुँचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, हमारा आप तक खेती बाड़ी के माध्यम से भिन्न भिन्न खेती संबंधी जानकारियों को आप तक पहुंचाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप जो हमारा किसान है वह अपनी आय में वृद्धि करें, साथ ही अपनी आजीविका को सशक्त बनाएं और हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलावों को समझें और पर्यावरण के अनुरूप खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। और इसके लिए हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हमें भिन्न भिन्न कृषि के बारे में ज्ञान हो, साथ ही अच्छी पैदावार वाली फसलों के बारे में पता हो, उपकरणों के बारे में पता हो, साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल है जिसकी डिमांड जो है वो बाज़ार में ज़्यादा है और अलग अलग देशों में, प्रदेशों में, साथ ही जो मंडी के भाव है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फसल है, हमारे पास जो भंडारण रखे हैं हमने, उसे हमें कहाँ पर देना है, कहाँ पर बेचना है, वो क्या है, जिसके अनुसार हम हमारा जो किसान है वो यह पता कर पाए कि उसे आने वाली समय में कैसी कृषि करनी चाहिए। साथ ही हमारी मृदा परीक्षण है, मृदा, हमारे पानी की जो जांच है, जो हमारी फसलों पर और हमारी फसलों पर और पशुओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, जो पानी का पीएच है, हमारी मिट्टी की में जो गुण है वो कौन कौन से गुण है और गुण के हिसाब से हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें खेती बाड़ी कार्यक्रम जो हमें कृषि के माध्यम से मिलती है, केवीके के माध्यम से मिलती है, तो वही सारी जानकारियों को हम चाहते हैं कि रेडियो टांटिया भील के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप जानें और आवश्यकता अनुसार अपनी खेती में आप सुधार करें।
9: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे बायोगैस और बांस की खेती के से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, आप और हम जानते हैं कि हमारे घर में पशु है जिससे हम बायोगैस बना सकते हैं, साथ ही हमारे हमारी जो पेड़ है, हमारी जो खेतों की मेड़े हैं उस पर हम आसानी से कोई ना कोई पेड़ लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम बांस की खेती करें। वहाँ पर बांस का जो पौधा है उसको अगर हम हमारे खेतों की मेड़ों पे अगर हम लगा दें तो ना केवल हमारी जो बाउंड्री है वो सशक्त बनेगी। बांस का जो पौधा है वो टमाटर की खेती के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर की जो लताएं हैं उसको ऊपर चढ़ाने के लिए हम कहीं ना कहीं बांस के लठों का सहारा लेते हैं। तो किसान साथियों, हम देखें तो इसका कहां कहां उपयोग किया जाता है वो भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे।
9: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: ये बातचीत के यहाँ पर शुरुआत करते हैं और पहले जैविक खेती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दवास, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज की तारीख में क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि जो किसान है वो जैविक खेती को अपनाए, क्या महत्व है इसका?
6: मोनालिसा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा किसान है आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है, साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो, यानी कि रेजिड्यू ना हो। इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, प्राकृतिक जो संसाधन वो उसका सही उपयोग होता है और साथ साथ में जो छोटे और मझोले किसान है उनको इससे ज्यादा लाभ है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं। लेकिन जैविक खेती करने के लिए उनको कुछ बातों का खास ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछें जिससे हम इस विषय पर अच्छी तरह से बातचीत कर सकें।
2: जी जरूर, तो विस्तार से हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में जैविक खेती और इसमें बायोगैस स्लरी के महत्व को लेकर। और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।
10: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है। इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10 से 20% बढ़त हो जाती है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती है।
2: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए।
11: जी हाँ, बांस के नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और एक साल में, आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, कि एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है। अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है एक साल हो जाता है वो। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी 2 साल में पूरी हो जाती है, तो ये तयार 2 साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी दान करने वाला पौधा नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम 2 साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है, और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हम तो अभाव व्यापारी। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं तो बांस अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
2: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है, और साथ ही किसानों के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं, और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में, तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
10: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है, इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है, इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दें। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है, इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
2: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
6: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते, और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई उनके पास पशु हैं
2: जी,
6: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
2: जी,
6: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
2: जी
6: पानी के साथ दिया जा सकता है, इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
2: जी।
6: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप सही मात्रा में सही समय पे सही खाद देंगे
2: जी।
6: और ये जो बायोगैस सलरी होती है इसमें खाली एक पोषक तत्व नहीं होता, खाली नाइट्रोजन, बल्कि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो सभी के सभी पोषक तत्व इस खाद के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और जब पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, चाहे वो जड़ों की हो चाहे पत्तों की हो। और जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। और क्योंकि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो इस प्रकार की फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। और एक और खास बात है, जब इस खाद का हम प्रयोग करते हैं बायोगैस सल्ली का, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तीन तरह से प्रभावित करती है
2: जी।
6: एक तो मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की फिजिकल यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जो रासायनिक गुणवत्ता है उसमें बढ़ाव करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम पानी का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी हम अधिक पैदावार ले पाएंगे, यानी कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारे पास पानी की भी बचत होगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है
2: जी,
6: वो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फसल का उत्पादन कम होने की बजाय अधिक होगा, और साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस तकनीक में एक और फायदा ये होता है बायोगैस में कि हमारे किसानों को घर में खाना बनाने के लिए बहुत ही स्वच्छ और अच्छी गैस मिल जाएगी, अच्छा खाद मिल जाएगा। इनके किसान की दो आवश्यकता, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरा खाद की आवश्यकता, उन दोनों की आपूर्ति ये करता है। और यह तकनीकी हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि छोटे और मझोले किसानों के पास में पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास भूमि के जो क्षेत्रफल वो कम है, और इस खेती में इस खाद का अगर प्रयोग,
2: छोटे किसान है उनके लिए ये काफी उपयोगी है। डॉक्टर
6: मैं आपको बताना चाहूंगा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्लांट किस आकार का लगाएंगे
2: जी,
6: और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, यानी कि जो इनपुट अवेलेबल है
2: जी।
6: क्योंकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा गोबर होगा तो हमें बड़ा प्लांट लगाना है, पशुओं की संख्या मध्यम है तो मध्यम प्लांट लगाना पड़ेगा, और पशुओं की संख्या कम है तो छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट का आकार है वो घन फुट या घन मीटर इनमें नापा जाता है
2: जी।
6: सबसे छोटा प्लांट जो किसान के लिए उपयोगी हो सकता है वो 35 घन फुट या 1 घन मीटर का होता है, और इस प्लांट के लिए 25 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी किसान के पास दो पशु हैं तो वो इस प्रकार के प्लांट को लगा सकता है, और इससे उसको जो खाद मिलेगा वो उसके 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा, साथ साथ में जो गैस मिलेगी वो 5 आदमियों के परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त रहेगी। और जितना आपके पास गोबर है उसी के आधार पे प्लांट का हम साइज बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का हो जाएगा, यानी कि 70 घन फुट का
2: जी, जी।
6: और अगर आपके पास 75 किलो गोबर है तो 105 घन फुट या 3 घन मीटर का प्लांट हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम ये गणना करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, यानी कि गोबर कितना अवेलेबल है। और मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं गोबर ही अवेलेबल हो आपके पास। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है तो पोल्ट्री वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, पिगरी फार्म खोल रखा है उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है जिसमें आप कोई भी जो हमारे अनाज या फलों का या सब्जियों का वो कर रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी वेस्ट है वो भी काम आ सकता है, आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी हमारे बायोगैस प्लांट के लिए इनपुट है
2: जी बिल्कुल।
6: हम जब भी बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो बायोगैस प्लांट का जैसे हमारा खाना होता है या पशुओं का खाना होता है इसी प्रकार से प्लांट का भी खाना होता है, और प्लांट का खाना है जो भी गोबर है या बायो वेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो उसका खाना है
2: जी।
6: तो हमें जितना भी हमारा जिस आकार का प्लांट है उसी के आधार पर उसको रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी कि लगातार खाना खिलाना है, क्योंकि इसमें बायोगैस प्लांट में भी 2 किस्म के प्लांट होते हैं, एक तो रेगुलर फीडिंग वाले होते हैं और एक ऐसा होता है कि एक बार आपने फीडिंग कर दिया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तो उससे आपको गैस भी मिलती ही रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे फिर दोबारा फीडिंग करेंगे
2: जी।
6: इस ऐसे प्लांट में सॉलिड फीडिंग ज्यादा होती है तो जहां पे हमने फसलों का अवशेष का प्रयोग करते हैं तो वहां इस किस्म के प्लांट होते हैं, लेकिन इस किस्म के प्लांट में आपको जो गैस की मात्रा मिलेगी वो लगातार बराबर नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी
2: जी। जी
6: दूसरा होता है रेगुलर फीडिंग वाले प्लांट, यानी कि जिसको रोज ही खाना चाहिए, जिन प्लांट को आप रेगुलर फीडिंग करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है, और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है, और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मक्खियां मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है, क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
2: बिल्कुल।
6: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया, उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे, प्लांट का आकार छोटा है, तो कच्चा खाद निकलेगा।
2: जी जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
8: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज्यादा मुनाफे में हो सकता है।
6: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले, जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं, और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
2: जी।
6: वो जनता बायोगैस था, लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल। यह भी ईंट का, सीमेंट का, कंक्रीट का बनता है, और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है, और साथ साथ में इससे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है और किसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आजकल भारत सरकार या अधिकतर जो सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं वो दीन बंधु प्लांट को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं, और ये ज्यादा उपयोगी भी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो केवीआईसी मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो दीन बंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है, और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीन बंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, और कम लागत आती है। तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीन बंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए, क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है, और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
8: जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
9: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: बायोगैस प्लांट है ये MNRE मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है। तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी। जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट, इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए।
2: जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास, आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीन बंधु मॉडल के बारे में, मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं।
1: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है।
2: जी,
1: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है। अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसको सही। तो जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल हैं जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है। तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं, उसका लाभ उठाएं।
2: बिल्कुल। जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
1: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
2: जी,
1: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा। दूसरी बात आती है, जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
2: अच्छा।
1: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी।
2: जी।
1: दूसरी बात आती है, जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
2: जी।
1: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं और साथ साथ में आपको फीडिंग, खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है बाहर का तापमान काफी कम है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी।
2: अच्छा।
1: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है।
2: जी।
1: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है।
2: अच्छा।
1: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे, क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है, तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है और जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है, और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी, तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को,
2: जी
1: वो गैस का प्रयोग करते हैं, अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
2: अच्छा।
1: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है, तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
2: अच्छा।
1: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
2: अच्छा।
1: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की, उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी होगा निकल जाएगा, तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी।
2: जी बिल्कुल, इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
1: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों की जो सोच है उसमें मैं हो सकता हूँ गलत सोच रहे हैं।
2: जी जी।
1: गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, केवल अगर हमने अपने बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को लिंक किया हुआ है।
2: अच्छा।
1: या हम कहीं से वो जाते चीज डाल रहे हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में H2S गैस बनती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अगर वो गैस बनती है तो थोड़ी सी बदबू आ सकती है और उसका भी प्रबंध हो सकता है। अगर हमारे पास हमने ऐसा यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटा सा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, उससे वो गैस भी रिमूव, जो खराब गैस वो रिमूव हो सकती है। अदरवाइज इस गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं होती और ना ही खाद में बदबू होती है। और गैस पे जो खाना बनाते हैं वो चूल्हे जैसा बनता है। गांव में एक भावना आती है कि जो ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है या रागी की रोटी है, मोटे अनाज वाली रोटियां, उनको बनाने के लिए चूल्हा जरूरी है।
2: जी।
1: लेकिन इसकी गैस पे चूल्हे जैसी रोटियां बन सकती हैं, क्योंकि इसका जो चूल्हा है वो LPG के चूल्हे से काफी डिफरेंट है।
2: अच्छा।
1: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आपको शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है।
2: जी बिल्कुल।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं, और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू, उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है।
2: जी जी।
1: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूर अपनाना।
3: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है, जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहां पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहाँ आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहाँ पर अगर आप वहाँ का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है, तो उसमें अपने आप वहाँ पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं, और जो उसका अवशेष बच रहा है जो ठंडी हुई घास उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं, और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, DAP, यूरिया और कुछ लोग पोटास, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों काफी कमी हो गई है, और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध है। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
1: ठीक है,
2: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो HTB के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं। उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं, या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी, और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
1: जी,
2: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे। और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आज आप HDP का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी, तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं, क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई का है, तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे, वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
1: जी।
3: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकलेमस सोमदेवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है, डेंडोकलेमस सिकिमियंसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां 2-3 मोटे बांस की और एक बैम्बूसा निकल्स, 3 जातियों की खेती हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है, और सबसे अच्छे पौधों का चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक की धोखा खा जाते हैं, तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके कि आप बांस का पौधा खरीदें या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2x2x2 फीट उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है, इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है। तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप चौथे साल के एंड में या पांचवें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में।
3: जी हाँ, पोषक तत्व का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें, गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें और 100 ग्राम खली डालें और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP, अगर DAP नहीं है सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है
1: जी।
3: ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें, फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका जब बारिशें होती है थोड़ी सी फरवरी वाले में तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसी उसमें और उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं और 100 ग्राम के आसपास खली और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद हम नाइट्रोजन कम डालते हैं और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है और 100 ग्राम खली और 100 ग्राम DAP या 120 ग्राम SSP और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैरायटी आपको हमने देखा है 6-7 वैरायटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखुआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है
1: जी।
3: तो आप तीन वैरायटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस आपको पानी बहुत चाहिए लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
1: जी,
3: वो लगाएं या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCV से बांध बना दें, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके।
1: जी।
3: अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी है।
1: जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए।
3: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खुरदरा होता है। बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं
1: जी।
3: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दें। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उतना ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
1: जी।
3: और दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
1: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: खाते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर डबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
2: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है और साथ साथ में दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
1: रेडियो स्टेशन

0: 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं और आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा मुख्य विषय था वो बायोगैस और बांस की खेती के ऊपर। कार्यक्रम के माध्यम से आपने बायोगैस से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही बहुत सारे किसान भाइयों का जो सवाल थे कि बायोगैस से जो बदबू आती है खाना बनाते समय, इन आदि सवालों का भी जवाब आपको मिल गया होगा। और साथ ही बांस से जुड़ी हुई जो समस्या है, बांस को कहाँ लगाना चाहिए, कौन सी उचित भूमि होती है और बांस को हमें किन किन कीटों से बचा के रखना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी को यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही हम आशा करते हैं कि जो भी आज के इस कार्यक्रम में जो भी आपको जानकारी मिली है, ऐसे आप अपने खेतों में जरूर इसका प्रयोग करेंगे और अपनी फसल को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हम जो बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर बायोगैस जो प्रसिद्ध है वो गैस के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी गैस का प्रयोग करके हम अपने घरों में किचन में अपना खाना बना पकाते हैं। लेकिन साथ ही हमने ये जाना कि जो केचुए बनाने की खाद है वो भी वहीं से हमें मिल सकती है, जहां पर ओवरफ्लो होने के बाद जो अवशेष जो निकलता है उससे केचुए उसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं, क्योंकि जो अपना गोबर है उसके अंदर काफ़ी हीट होती है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से केचुआ एकदम से उसे खा नहीं सकता। तो जब तक उसकी हीट निकल जाने के बाद केचुआ बहुत ही अच्छे से और थोड़ी गति से उसको खाता है। तो किसान साथियों, ये एक अच्छा गैस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हम केचुआ खाद बना के जो जैविक खाद है वो भी हम अच्छे से बना सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM के साथ।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे गाय के गोबर में कितनी गुणवत्ता है, कितने प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं हम कृषि में। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया, उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देशी गाय है, ओनली देशी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए, जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। इस गोबर गोमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है।
7: अच्छा,
6: अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं। और हाँ, और इसमें साइंस क्या है वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात यह है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, असंख्य होंगे।
7: बिल्कुल।
6: और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है
7: जी।
6: जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में, पानी के साथ इसको छोड़ दें, एक ड्रम को एक एकड़ में
7: जी,
6: तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा। जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे, और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के, और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी धरती में फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं
7: जी।
6: लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन रसोई है, सबके घर में रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज हैं, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा,
7: अपने आप तो नहीं बन सकता जी।
6: सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है, वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं, उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है
7: जी।
6: तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है, और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा?
7: नहीं जिएगा।
6: सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
7: जी,
6: वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा,
7: बिल्कुल
6: वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं, तो बताइए धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी, और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं, आप तो गांव में रहते हैं
7: जी।
6: मुझे अपार प्रसन्नता और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है और चलते हुए एक गोबर यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया और चली गई, ऐसा होता है ना
7: जी? बिल्कुल।
6: आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे।
7: अच्छा।
6: उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया और उसकी गंध पा करके धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं ना, जो मैंने बताया
7: जी।
6: और घन जीवामृत डालते हैं तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है, हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, जिस छेद से जाता उसे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर छेद को लीपते हुए जाता, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता
7: जी।
6: और धरती में जो खनिज हैं उनको खाके पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम के कर्तार्थपन।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि 1 एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है
7: जी।
6: वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी। और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ है खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है? जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं। बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है।
7: बिल्कुल,
6: तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है, स्टीलाइज पवित्र वर्षा जल, धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा? तो ये जो छिद्र बनाए हैं ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी
7: जी।
6: जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से

0: और आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है, जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन देता है, पानी कौन देता है, लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ के लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा हमें खाद बनाते हैं, ये तो जीवामृत है। एक है घन जीवामृत, वो क्या है, जब किसान के पास ज्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की एक क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीजें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गोमूत्र उसमें मिला के और पशुशाला के कोने पर रख दे, प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे। ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता। इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले डीएपी की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं। 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे, तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये 2 तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें हम नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक। गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आग, चिरायता, गिलोय ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के, 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएगी। मेरे 200 एकड़ खेत में कीटनाशक में छिड़कता ही नहीं, ये जो मैंने बताया इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बीमारी आना ही बंद होगी मेरे खेत में और ये जो छिड़काव है ये भी कम हो गए हैं। इतनी जमीन उर्वरक बन गई है कि उसमें मित्र कीटों ने अपना काम इतना कर दिया है कि अद्भुत काम उसमें शुरू हो गया। तो एक तो पद्धति खाद के रूप में तो ये है जीवामृत, घन जीवामृत। और इसके साथ एक है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम फसल बोते हैं तो इस प्राकृतिक खेती में एक तो मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोझ दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं और वो एक अब आ गई, किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जितना धरती को ढककर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। ये जो मल्चिंग है वो क्या है, खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ। उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर एक, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। एक काम। नंबर दो, इस मल्चिंग का लाभ है कि 50% पानी आपका बच जाएगा। 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? जब हम इसको ढके रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है, तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती है। किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं। जून का महीना है, मई जून का महीना, लूएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का, भार जिसको बोलते हैं, गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है, अवशेष हैं, ये आकाश के जलीय तत्व को खींच के जमीन को देते हैं। तो पानी की 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ,
1: किसान साथियों, हम लगातार खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं। सो किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाविल 90.8 FM के साथ छावा की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: तीसरा लाभ इसका यह है कि जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो रात में काम करता है, दिन में नहीं करता। दिन में क्यों नहीं करता? जब वो बाहर आता तो उसे पक्षी उठा ले जाते हैं
2: जी।
1: उसको अपनी मौत का खतरा है, वो इसलिए अंधेरे में काम करेगा, प्रकाश होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है
2: जी।
1: यदि किसान मल्चिंग करता, जमीन को ढकता है, तो वो केचवा जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया, तो वो फिर रात और दिन काम करेगा,
2: डबल शिफ्ट,
1: वो डबल शिफ्ट में आ जाएगा, डबल शिफ्ट करेगा, और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा, और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा, और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा। ये अद्भुत काम वो करेगा। और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं, जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे? उनको भोजन तो चाहिए। ये जो मल्चिंग है, घास फूस, ये उसका भोजन है, वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे, और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे
2: जी।
1: इसको भी खाद में बदल देंगे। और अंतिम पांचवा इसका लाभ क्या है, जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी
2: जी।
1: वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा।
2: अच्छा।
1: और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है। जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी। मैंने अपने खेत में, मेरे दो खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है
2: जी,
1: इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था, जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था,
2: बटाई पे दिया था।
1: ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। वो जो भाड़े पे, बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था मैं। मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, और मेरा खेत तुम्हारा हो गया। मिश्रा जी, अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास, और उन्होंने कहा, जी हम आपका खेत नहीं लेंगे। अच्छा। छोड़ रहे। क्यों छोड़ रहे भाई? कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए। मैंने कहा क्यों? कि जी होता ही नहीं पैदा। मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं, और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था कि, तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता।
2: अच्छा।
1: मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका। उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया, मेरे परिचय में भी थे, डॉक्टर साहब किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा, इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूंगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूंगा
2: जी,
1: वहां से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है, उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए। डेढ़ दो महीने बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा किसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5 से सब नीचे नीचे था
2: जी।
1: तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस जमीन की फर्टिलिटी खत्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा क्या करूं मैं, तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में ये बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी जमीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूंगा, आप क्या करोगे? मैं कहा ये जीव अमृत घनजीव अमृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का जमाना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? साइंटिस्ट में

0: आपनी बातें
1: मिश्रा जी, 3 साल पहले उस बंजर जमीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़, और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता, और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया
2: जी।
1: फसल लहलाने लगी।
2: अच्छा।
1: इतना बढ़िया हरा भरा खेत, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो, मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूं। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है, तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा? मैं कहा ना, एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को
2: सैंपल
1: तोल होगा तो मेरे को दिखाना
2: जी।
1: तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा पहले वर्ष, और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा। अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष। अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने एक वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो जिद्दी नहीं है, और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत
2: क्रांतिकारी
1: काम है
2: जी, जी।
1: तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और एक दो जगह भेजे, और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का एक साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.7, 0.8 हो गया।
2: अच्छा।
1: वो कहने लगा हमारी साइंस में तो हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं, और वो ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है, उनका सिस्टम तो केचुए को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे, वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 0.8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल। और अभी एक महीना पहले ये अब की साल जो कटा है उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए।
2: अच्छा।
1: उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां पर भेजे। तो अब मेरी जमीन का, अब उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया।
2: अच्छा।
1: 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूं। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी
2: जी, बिल्कुल।
1: उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू हो गई। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया
2: जी।
1: उन्होंने

0: जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए वो, उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे, ऐसे पांच किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे, उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी पांचों किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यूं मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे, तो उसकी एक ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया पांच जगह से, फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले एक ग्राम मिट्टी में। हमारी एक ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार इससे बड़ा क्या होगा? साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो फसल बढ़िया देगी, और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं। अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है, और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी
1: बिल्कुल
0: नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है, और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूं, कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी, और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं
1: जी जी।
0: प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें जहर नहीं जाएगा, तो हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा, दो लाभ। तीसरा, प्राकृतिक खेती से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे और रासायनिक से उनको बंजर जमीन देखे जाएंगे। चौथा, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है इसका नस्ल सुधार किया जाए, और ये गाय चलती फिरती जीवाणुओं की फैक्ट्री है, यदि ये बचेगी तो इसका A2 दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा, और इसका गोबर गोमूत्र कृषि को बचाएगा। इस समय भारत सरकार 125,000 करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया DAP पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा?
1: बिल्कुल।
0: और ये 125,000 करोड़ नहीं, फिर किसान इसे खरीदता है, ये 200,000 करोड़ का मामला है, और पेस्टिसाइड वो अलग है। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह
1: बिल्कुल
0: चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और पांचवा इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई हाइपरटेंशन को जानता था? ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है,
1: जमीन
0: आदमी बीमार हो करके वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी पर बीमार दुखी, ये सारी से मुक्ति का रास्ता इसे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए, ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा, अंतिम 2 साल में मैंने वहां प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए।
2: अच्छा।
0: और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया, उसमें एक IAS अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोन सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे, और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ, मेरे आने के बाद 1,00,000 किसान नए जोड़ दिए उन्होंने। अब 1,50,000 किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को पिछली जो अप्रैल गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए।
1: अच्छा।
0: कि इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: यानी के 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई,
1: वो भी आय बढ़ी।
0: और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गए कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो इस खेती में प्राकृतिक में लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं, उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई।
1: बिल्कुल।
0: अब अंतिम बात मैं करता हूं, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूं, 33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रासायनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया, उसके 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, मेरा 1,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चाया। उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत पे भी लेने को तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय, सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा,
1: यानी हर किसान प्राकृतिक खेती कर,
0: बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया पेस्टिसाइड DAP पे प्रतिबंध है और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको, 1 हेक्टेयर के लिए 1,000 रुपया प्रति एकड़, वो 10,000 रुपया प्रति एकड़, हाँ इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए
1: जी,
0: उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान यहाँ 2,00,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है, इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये खेती साइंटिफिक नहीं है, इस पर वो नहीं हुए हैं शोध। तो हम उनसे आग्रह करते हैं आप शोध करिए, हम तो आपको आह्वान करते हैं। वो उदाहरण देते हैं, लंका ने इस काम को शुरू किया जैविक को, वहाँ बड़ा उत्पादन कम हो गया, दिक्कत आ गई। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जैविक किया इसलिए उत्पादन कम हुआ। उन्होंने प्राकृतिक नहीं किया इसलिए फेल हुए। प्राकृतिक करें, हमारे टी विजय कुमार चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे, आईएएस अधिकारी, वो हिमाचल आंध्र प्रदेश में पिछले 5-7 साल से इस खेती को करवाते हैं। 5,00,000 से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1,50,000 किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता?
1: बिल्कुल।
0: यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता? 7-8 साल से जो आंध्र प्रदेश में करते हैं वो क्यों जुड़ते? जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे उसे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है। हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और जमीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे, और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।
1: बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत, और मुझे लगता है कि
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें।
1: मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया, तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है?
0: इसमें मिश्रा जी, छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है
1: जी।
0: कारण क्या है, छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा, यदि वो गाय रखता है 2-2.5 एकड़ का है तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे, और एक देसी गाय से तो 18-20 एकड़ से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी
1: जी,
0: और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खा तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 एकड़ का तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटे किसान मल्टी क्रॉप करेगा, एक एकड़ में जब चार चार पांच पांच तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: और ये जीवामृत घन जीवामृत जितना डालेगा इसका नुकसान ही कुछ नहीं है, इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत हैं इस साल उनमें केवल एक बार जीवामृत देना पड़ा हमें।
1: अच्छा।
0: एक बार वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहले पशुओं को खिलाने पड़े, इतनी बढ़ गए वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कम आएगा तो काटना पड़ा, इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 से ऊपर चला गया,
1: ऊपर चला गया जी,
0: बीमारी भी नहीं आनी आती क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है तो उसको बीमारी आएगी नहीं। जी धरती में यूरिया डीएपी से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी। जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा। तो वही स्थिति भूमि के साथ।
1: बिल्कुल। और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक इतने सारे, हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी ना किसी को जानता है जो इससे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो। और ये पिछले 8-10 सालों 10-15 साल की ही
0: इसी की देन है।
1: तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के सेंस उसका।
0: मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहाँ भटिंडा एक जिला है
1: जी,
0: वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है, उसका नाम ही कैंसर
1: एक्सप्रेस। जी,
0: यानी के पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खानपान हमारा और स्लो पॉइजन पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी जहर शरीर में जा रहा है उसके दुष्परिणाम।
1: और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, एक ये तो किसान को फायदे हैं
0: जी,
1: और उपभोक्ता को
0: हाँ बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 एफपीओ बनाए
1: जी,
0: और एक एफपीओ में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 एकड़ का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता, बड़ा उसको दिक्कत आती है। अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं ताकि इसका किसानों को उचित दाम मिले और उनकी मार्केट की व्यवस्था बढ़िया बन सके, इसमें भी बराबर काम चल रहा है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने जाना कैसे एक गाय जो हमारी देसी गाय है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और जो प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती है इससे हमें कैसे लाभ लिया जा सकता है, जैसे आपने जीवामृत और आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता चला है। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ अपना रुख करेंगे और अपनी खेती को, अपनी आजीविका को सशक्त बनाएंगे। इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है आपका प्यारा प्रोग्राम, आपका फेवरेट प्रोग्राम आज के कलाकार। और जैसा आप हमेशा से जानते आए हैं, हम कोशिश करते हैं नए कलाकारों को, नए गायकों को, नई गायिकाओं को एक मंच देने की, जहां से वो अपने प्रतिभा को पूरे संसार तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया सीजन नए कलाकारों के साथ और भी बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ। तो चलिए मजे लेते हैं। आइए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो टैलेंट मौजूद हैं, जो कलाकार मौजूद हैं, जो गायिका हमारे साथ है, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। वो हैं अनीशा पवार जी। और बाकी अनीशा पवार जी लीजिए, खुद अपने बारे में बताएंगी। अनीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए प्लीज। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कौन है आप?
1: थैंक यू समीर भाई। मैं अनीशा पवार, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। और सुनने वाले सभी को पहले तो मैं प्रणाम करूंगी। और मैं एक गृहिणी हूँ, पहले जॉब करती थी लेकिन अब गृहिणी हूँ। कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके बिजनेस में उनका थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसी मेरी रूटीन होती है और उसी के बीच टाइम मिले तो थोड़ा गा लेती हूँ।
0: वाह क्या बात है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है अनीशा जी, ट्रस्ट में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद हमारे साथ, हमारी फैमिली में, इस ग्रुप में दोस्तों के साथ जुड़ने के बाद आप अब वक्त निकालेंगे। ये नहीं होगा कि आपके पास टाइम बचा तो गा लिया, नहीं, अब तो आप गाएंगे और खूब गाएंगे और बहुत बढ़िया गाएंगे, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को अनीशा जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत ही प्यारी शुरुआत अनिता जी, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं और पूछना चाहूंगा आपसे, ये गीतों का संसार है, संगीत का प्रोग्राम है, आपको गाने का शौक कब से हुआ?
1: वैसे तो मुझे बचपन से ही गाने सुनने का बहुत शौक है। मतलब जब से याद आता है कि 4 या 5 साल की थी तभी से मैं गाने बहुत सुनती थी और उसके साथ ही गाने लग गई। तो स्कूल में जब मेरे टीचर्स ने मुझे सुना तो उन्होंने मुझे थोड़ा ट्रेनिंग भी दिया म्यूज़िक के बारे में, और स्कूल के सारे फंक्शंस में मैं हमेशा सबसे आगे होती थी सिंगिंग में। तो तभी से मुझे सिंगिंग के बारे में बहुत मतलब रुचि पैदा हो गई। और उसके बाद थोड़ी गैप भी हो गई, लेकिन फिर से जब मुझे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स मिले सिंगिंग के तो मैंने फिर से गाना शुरू किया। तो ऐसे मतलब मुझे बचपन से ही वैसे तो आदत मतलब रुचि है सिंगिंग में।
0: बहुत बढ़िया, ये तो बात ठीक है कि किसी भी कला से मोहब्बत, किसी भी कला के प्रति इज्जत, श्रद्धा, प्यार बहुत पहले से हमारे चरित्र में, हमारे शख्सियत में आ जाता है। और उस चीज को पहचानना कि हम बचपन से ही इसको प्यार करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत बढ़िया अनिशा जी, बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपको महसूस पहले से था, आपको पता था, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप ही का गाया हुआ अगला गीत हम पेश करते हैं हमारे दोस्तों को।

0: बहुत सुंदर। तो क्योंकि संगीत भी अनिशा जी एक कला है, एक पूजा है, और इसी तरीके से हमारे संसार में बहुत सारी कलाएं हैं। खाना बनाना भी एक कला है, जी हाँ, और भी इसी तरीके की बड़ी सारी कलाएं हैं। अपने घर चलाना भी एक कला है। मैनेजमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं इस चक्कर में। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बहुत सारी कलाएं सीखना चाहेंगे या फिर शायद किसी एक कला में महारत हासिल करना चाहेंगे, एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? बहुत सारी कलाएं या सिर्फ एक?
1: वैसे तो देखा जाए तो एक ही कोई कला में अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो वो कला निखर आती है, उसमें हम और बेहतर कर सकते हैं। तो लेकिन मैं खुद मतलब नेचुरली ही मुझ में वो बात है कि मैं जो भी देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है मैं सीख लेती हूँ। तो जैसे कि सिंगिंग तो मैं करती ही हूँ, वो मेरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। लेकिन मुझे पेंटिंग्स करना, स्केचेस बनाना, कैनवस पेंटिंग करती हूँ मैं, और हमारे घर में जो गणेश जी की स्थापना होती है तो वो मूर्ति भी मैं खुद बनाती हूँ घर पे। तो मुझे सारी कलाएं सीखना बहुत पसंद है वैसे तो।
0: माय गॉड, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों देखिए, ये बड़ी ही प्यारी बात है कि हम बहुत सारी कलाएं एक साथ सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारी कलाओं के हम मास्टर भी बन सकते हैं, ये भी तय है। बात सिर्फ आपके महसूस करने की और उसकी तरफ कदम बढ़ाने की है। अनिशा जी ने बताया कि गणपति स्थापना में जो गणपति की मूर्ति होती है वो भी अनिशा जी खुद अपने हाथों से बनाती हैं। देखिए, श्रद्धा की पराकाष्ठा है ये कि अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को हम लोग खुद आकार दें। यूं देखा जाए तो ईश्वर ने हमें आकार दिया है, लेकिन हम अपने प्यार से, अपनी श्रद्धा से उनको सजाते हैं, संवारते हैं, और अनिशा जी ये काम अपने हाथों से करती हैं। बेहद बेहद खूबसूरत बात। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी कलाएं सीखने के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, कोशिश करते हैं, करने को कर भी सकते हैं। तब तक एक प्यारा सा गीत सुनते हैं अनिशा जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। तो बात संगीत की है, ये पूरा प्रोग्राम गीतों का है, संगीतों का है। तो आपको संगीत में क्या पसंद है अनीशा जी? गाने पसंद हैं, गजलें पसंद हैं, भजन पसंद हैं, फिल्मी, नॉन फिल्मी, क्लासिकल और या कुछ और, क्या क्या पसंद है आपको?
1: मैं वैसे हर तरह, लेकिन जब मुझे गाने के लिए कोई बोले तो मैं ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करती हूँ। जब से बचपन से जो हम लोगों ने सॉन्ग्स सुने हैं, लता जी के, अलका याग्निक जी है, अनुराधा पौडवाल है, तो लता जी तो मेरे लिए मतलब एक देवी है। उनके सारे सॉन्ग्स गाना मुझे बहुत पसंद है, सुनना भी पसंद है। और मतलब बॉलीवुड म्यूजिक छोड़ के अगर कुछ है तो गजल्स मुझे पसंद है। उसमें मैं जगजीत सिंह जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके सिंगिंग में जो ठहराव है, सादगी है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं गजल्स भी सुनती हूँ और गाती भी हूँ कभी कभी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भजन?
1: भजन मैं मराठी भजन सुनती हूँ और बहुत रेयरली गाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें क्लासिकल बेस होता है और मैंने जबकि म्यूजिक सीखा नहीं है तो मुझे वो गाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सुनना मुझे बहुत पसंद है। सुरेश वाडकर जी है, अनुराधा पौडवाल जी है, उनके भजन मैं ज़रूर सुनती हूँ। मोस्टली फेस्टिवल्स में वगैरह हमारे घर में भजन मतलब दिन भर बजते हैं।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों, आपने सुना कि अनीशा जी वैसे सारे तरीके के संगीत को पसंद करती हैं। अब संगीत की तो वैसे भी कोई भाषा नहीं होती, कोई विधा तो सब अलग अलग हैं। गजलें अलग हैं, भजन अलग हैं, गीत अलग हैं, क्लासिकल म्यूजिक अलग है, सब अलग अलग हैं, लेकिन है संगीत जो कि हमारे कानों को मधुर लगता है। बस हम उसी में मजा लेते हैं, उसी में खोए रहते हैं, और ये प्रोग्राम आपका और मेरा है भी इसी चीज से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हो जाए फिर एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत सुंदर। अनिशा जी, थोड़ा सा शेड बदलते हैं, बातचीत का दौर बदलते हैं, बात करते हैं त्योहारों की। आपको सबसे पसंद का आपका सबसे ज्यादा पसंद का त्योहार भला कौन सा है और क्यों, कैसे मनाते हैं आप उस त्योहार को जो आपको पसंद है?
1: वैसे तो मुझे दिवाली और गणेश स्थापना ये दोनों पसंद है। दिवाली में क्योंकि सारे घर के लोग खुश होते हैं, कुछ खरीदारी होती है, घर में नई चीजें आती हैं और सुख समृद्धि आती है, बच्चे तो बहुत मतलब एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा खुद का पसंदीदा है गणेश स्थापना, क्योंकि मैं पहले से गणेश भक्त हूँ और 10 दिन घर में गणपति की स्थापना होती है तो ऐसे लगता है जैसे हमारा ही कोई फैमिली मेंबर घर पे है और उसकी पसंद के सब खाना बनाओ, उसे भोग चढ़ाओ, सुबह शाम हम आरती करते हैं, घर में सारे मेहमान आते हैं, पूरा घर भरा हुआ होता है और दिन भर मतलब एक प्रसन्न और मंगलमय वातावरण होता है। तो मुझे खुद को तो गणेश स्थापना के 10 दिन बहुत पसंद है।
0: बहुत बढ़िया बात कही अनिशा जी। इस बात को मतलब हम जानते जरूर हैं, सुना भी हो है, लेकिन इतने प्यार से गौर नहीं किया कभी, मैंने तो नहीं किया। दोस्तों गौर कीजिए जरा, अनिशा जी ने कहा कि जब कभी भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हमें वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बाय लार्ज। अब कोई इस तरीके का इंसान आए जो शायद आप उसे आना पसंद ना करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन हमेशा मैक्सिमम टाइम्स तो मेहमान आता है तो हमें अच्छा लगता है। और अनिशा जी ने गणपति को अपने घर में मेहमान बताया, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। और वो लगातार घर पे रहते हैं तो लगातार घर में उल्लास का और खुशी का माहौल बना ही रहता है, उन्हीं के पसंद के खाने बनते हैं, सब लोग हंसते खेलते हैं, गीत गाते हैं, और भी लोग आते हैं उन मेहमान के साथ बातचीत करने, मिलने, बैठने, खुशी मनाने, उनका आशीर्वाद लेने। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता अनिशा जी ने डिस्क्राइब किया और उस त्योहार को बहुत प्यार से मनाया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत बात कही। हम लोग चलते फिरते कई बार छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं करते, कीजिए तो बहुत बढ़िया लगती है वो बात। चलिए तो फिर एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं अनिशा जी की ही आवाज में।

0: बात त्योहारों की हुई, खाने पीने की हुई, बहुत उल्लास की हुई, बहुत उत्साह की हुई। तो अनीशा जी, आपका सबसे पसंदीदा भोजन, खाना, डिश क्या है और भला क्यों?
1: मैं सब तरह का खाना खा लेती हूँ, ऐसे कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे स्पेसिफिकली ये पसंद है। मैं जो भी सामने है वो मन लगा के खाती हूँ, लेकिन मुझे किसी को अगर खिलाना है तो मैं मोस्टली जो हमारे पारंपरिक

0: केरला, अभी साउथ में जाएंगे तो मुझे इडली डोसा पसंद है, नॉर्थ में जाएंगे तो मुझे चाट पसंद है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है। जो आजकल जो चटकीले चाइनीज वगैरह आता है वो मैं मोस्टली नहीं खाती हूँ, बच्चों के साथ कभी खा लेती हूँ लेकिन ज्यादा पसंद नहीं है।
1: भाई वाह, क्या बात कही, बड़ी खूबसूरत बात। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने पुराने ट्रेडिशनल संस्कृति से जुड़े हुए स्नैक्स या खानों की तरफ जाते हैं तो वो न्यूट्रिशनल्स भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं और बहुत बहुत जबरदस्त स्वादिष्ट भी होते हैं। हम अपने बच्चों को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हमें उन्हें बतलाना चाहिए कि क्या थे हमारे ट्रेडिशनल खाने। एक बड़ी खूबसूरत बात कहीं पर मैंने सुनी थी कि हमें प्लांट बेस्ड खाना चाहिए, न कि प्लांट बेस्ड। हमें प्लांट बेस्ड खाना चाहिए न कि प्लांट बेस्ड, मतलब जो प्लांट यानी कि पौधों से जो खाने आते हैं, मतलब कि पौधों से या वेजिटेशन से जो खाना आता है हमें वो खाना चाहिए, न कि फैक्ट्रियों में जो बनता है वो खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड ना कि प्लांट पैक्ड। तो हमें हमारे संस्कार से, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो खाना पीना है वो अगर हम खाते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं और हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं। बड़ी बढ़िया बात कही अनिशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा एक गीत सुनते हैं इसी बात पर, मुंह में टेस्ट के साथ तमाम तमाम व्यंजनों के, ये लीजिए ये गीत सुनते हैं।

0: अनीशा जी, आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसी कोई जगह है जहां आप यात्रा करके, ट्रैवल करके बार बार जाना चाहेंगी? वो जगह आपको इतनी पसंद हो कि आपको लगता है एक बार और चले जाएं, एक बार और चले जाएं, और हर बार आप जाके वहां पर बोर नहीं होते, हमेशा बड़ा अच्छा लगे। क्या ऐसी कोई जगह है आपके जहन में?
1: जी, वैसे तो मुझे भारत का जो स्वर्ग है, जो जमीन पर जैसे स्वर्ग कहते हैं, जो कश्मीर, वो बहुत पसंद है जी। कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, वहाँ की जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, सारी हरियाली और बहती हुई नदियाँ, बर्फीली नदियाँ, ये सब मैं, इनको मैं जितना भी देखती हूँ मुझे कम ही लगता है कि मतलब वो ऐसी चीज़ है जो आप कितनी भी बार देखो आप उससे बोर नहीं होते। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि जब भी कोई मुझे पूछे कि कहीं जाना है, तो मैं तो कहूंगी कश्मीर या हिमाचल चलिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बर्फ और वहाँ की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, वो बहुत पसंद है मुझे।
0: भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, बाकी की बातें जाने दीजिए, कभी अगर आप इन जगहों पर जाके आए, आपको मौका लग जाए, तो सचमुच आपको ऐसा लगेगा कि हम यहां बार बार आए। आपने अनीशा जी बिल्कुल ठीक बात कही, बहुत प्यारी बात है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत वादियों, इन्हीं खूबसूरत जगहों के लिए इन्हीं को डेडिकेट करता हुआ ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अनीशा जी, और एक मजेदार सवाल पूछता हूं आपसे। फर्ज कीजिए कि अगर आपको 24 घंटे के लिए गायब कर दिया जाए, आप दिखाई ना दें, लेकिन आप हों, तो आप उन 24 घंटों में क्या क्या करना चाहेंगी?
1: अच्छा, अगर मैं गायब हो गई तो पहली बात तो मैं ये करूंगी कि मेरे जितने भी पहचान में लोग हैं, मैं सबके घरों में जाके चुप चुप के देखूंगी और बातें सुनूंगी कि मेरे बारे में कौन क्या बात करता है, क्योंकि
0: That's very nice.
1: ये मौका हमें हमेशा नहीं मिलेगा। और जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में बुराई फैला रहे हैं, जो अपने ही देश को खराब करना या देश का नुकसान करने की बातें करते हैं, तो अगर मुझे ऐसी मिले कि मैं मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया बन जाऊं और लोगों के यहाँ जाके देख सकूं, तो मैं ऐसे लोगों की खबर जाके सरकार में या पुलिस में जरूर दूंगी, ताकि उन्हें पकड़ा जाए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिस इज नाइस। सो इसी तरीके के कुछ विचार दोस्तों हम अपने जहन में बना सकते हैं कि हम क्या करें। अगर हम सोच के देखिए ना, बहुत मजा आएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आराम से बैठिए, चाहिए तो एक पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और इमेजिन कीजिए कि आप 24 घंटे के लिए गायब हो गए हैं, तो क्या क्या करेंगे, लिखिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जब तक हम विचार करें।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो अनिशा जी, जब आप छोटे थे बचपन में, कौन थे आपके हीरो और भला क्यों?
1: हीरो आप फिल्मी पूछ रहे हैं या मतलब समाज में?
0: कोई भी मैम, कोई भी जिनको आप अपना आइडल मानते हो, जिनको आप एडमायर करते हो, जिनसे ऐसा लगता हो इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखना है, इनके जैसा बनना है। अब वो कोई डेटी भी हो सकते हैं, कोई फिल्मी हीरो भी हो सकते हैं, कोई पेंटर, एनीबॉडी।
1: ओके, तो हम लोग रहते थे कैंटोनमेंट एरिया जैसा था। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वहाँ खड़कवासला एनडीए में जो मिलिट्री के जो कैडेट्स होते थे उनका ट्रेनिंग चलता था
0: जी।
1: तो वो जो कैडेट्स होते थे वो हर संडे उनको एक 20 या 30 किलोमीटर की एक परेड होती थी जिसमें उन्हें पीठ पे बहुत सारा वेट भर के पूरा राउंड चक्कर लगाना पड़ता, पूरे पसीने से वो भीगे होते थे, फिर भी वो चलते रहते थे। और हम लोग स्कूल जाते थे तो नीचे मतलब वहाँ बस स्टॉप पे देखते थे उनको। तो मैं सोचती थी कि सच में ये लोग कितने हार्डवर्किंग है, इनको देख के ऐसे लगता है कि कितनी भी परेशानियाँ आए, कुछ भी हो, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ तो लगता है कि हाँ, दे आर द रियल हीरोज, वो रियल हीरो है मेरे लिए।
0: क्या क्या बात है, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत करने के बाद तो किसी भी व्यक्ति की शख्सियत निखर के आ ही जाती है, वो एडमायरेबल हो ही जाता है। जैसे आज आप हैं अनिशा मैम, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतना रियाज, इतनी प्रैक्टिस के बाद आप इतना प्यारा गाती हैं, तो जाहिर सी बात है हम और सुनने वाले आपको एडमायर करते हैं, आपकी मेहनत की तारीफ करते हैं। हाँ, कभी कभी ये जरूर हम हल्के में भूल जाते हैं कि आपने कितनी तकलीफ उठाई इस प्रैक्टिस में। मतलब वो तकलीफ, मतलब तकलीफ बड़ी प्यारी होती है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत तो मेहनत है। कितने घंटे आपने रियाज किया, हम लोग उसको भूल जाते हैं, तो उसको भी पूरी पूरी तवज्जो और इज्जत देने की जरूरत है। दोस्तों, आपने सुना तो अनिशा जी लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। वी सिंसियरली सिंसियरली अप्रिशिएट यू। हम आपको एडमायर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी मेहनत की पूरी पूरी तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिशा जी। चलिए, तो इसी डेडिकेशन के नाम एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: तो अनिशा जी, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे गानों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए। कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस तरह मेरे सारे सॉन्ग्स आपने लोगों को सुनाए। होप ऑल ऑफ देम लाइक इट। और मैं तो लोगों से बस यही कहूँगी कि हमारा भारतीय संगीत जो है वो एक हमारा एक अनमोल खजाना है। और मैं चाहती हूँ कि उस मतलब जैसे हम कभी मेंटली डिप्रेस होते हैं या कोई परेशानी होती है, तो उसमें से संगीत हमें बहुत हेल्प करता है बाहर आने के लिए। जब भी डिप्रेस्ड होती हूँ तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, तो उससे माइंड रिलैक्स होता है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि अपना इंडियन म्यूजिक सुने, दिल को शांति दे, सुकून मिलेगा उससे आपको। और सबसे कहूँगी कि संगीत की पूजा करो और भारतीय संगीत की जतन करो, यही कहूँगी।
0: बहुत बहुत प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा संदेश। तो दोस्तों, अनिशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो वो हमारे प्रोग्राम में आई, आपसे बातचीत की, उन्होंने अपने गीत हमारे सामने पेश किए। अनिशा जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया
1: थैंक यू सो
0: आपका।
1: मच, थैंक यू।
0: तो दोस्तों, कैसा लगा आज के टैलेंट का प्रोग्राम, उनकी गायकी? हमारे मेन ग्रुप पर आपके कमेंट्स हमें बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं, और हमसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं उन गायकों को, उन गायिकाओं को जो उस दिन अपना प्रोग्राम पेश कर रहे होते हैं। बहुत उत्साह बढ़ता है। बस इसी तरह हमारी इस फैमिली को बढ़ने दीजिए। कल फिर हम हाजिर हो जाएंगे एक और नए कलाकार के साथ, एक और नए गायक और गायिका के साथ। बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। वीना नायक मैम आज की टैलेंट है, आज की गायिका है, आज की प्रतिभा है, आज के कलाकार के इस बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और उससे भी ज्यादा प्यार से, रेस्पेक्टफुली, मैं वीना मैम की आभार प्रकट करते हुए उनका स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। वीना मैम, प्लीज हम सभी के मुखातिब होइए, हम सब जानने के लिए बेताब हैं आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं, प्लीज हमें बताइए ना।
1: धन्यवाद। और मैं कनाडा में कहना चाहूंगी कि एलआरगे नमस्कार। तो मैं बेंगलुरु से हूँ और और पूछिए।
0: ओके, आप बेंगलोर से हैं डेफिनेटली, वो तो खैर हमारा सौभाग्य है क्योंकि 90% आज की डेट में टैलेंट्स बेंगलोर से हमारे पास आ रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। और बड़ी मजेदार वाली बात ये भी है दोस्तों, आप सभी को मालूम भी है, हम बहुत जल्द बेंगलोर में हमारा आज की कलाकार प्रोग्राम होने वाला है और हम सबको मौका मिलेगा एक दूसरे से मुलाकात करने का। लेकिन वीना मैम, आप क्या करती हैं, आई मीन व्हाट डू यू डू, और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली मैं रेलवे में कार्यरत हूँ।
0: ओके,
1: सो साउथ वेस्टर्न रेलवे के बैंगलोर डिवीजन में मैं काम करती हूँ। और मेरी पैदाइश एक्चुअली मुंबई की है। उस टाइम मेरे पापा लखनऊ में आरडीएसओ में, वो रेलवे में ऑफिसर थे, रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे। तो हमारे काफी ट्रांसफर हुए, शायद इसीलिए मेरी हिंदी भी काफी अच्छी है क्योंकि मैं नॉर्थ में ही पड़ी बली।
0: That's nice.
1: So, Yes. तो हम लोग लखनऊ थे कुछ अरसे और उसके बाद फिर अहमदाबाद और फिर अजमेर में काफी लंबा वक्त वहां पे गुजारा और फिर पापा अहमदाबाद से रिटायर हुए, फिर शादी मुझे बेंगलुरु ले आई, तो तब से यही हूँ।
0: बहुत खूब, अजमेर। अजमेर तो मतलब वो इसलिए कि मेरे दिमाग में अटक गया मैम, क्योंकि 35 साल मैं जयपुर रहा और अजमेर तो मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता है जयपुर से, इतना ज्यादा जाया करते थे हम।
1: यस,
0: तो अजमेर सुन के बड़ा अच्छा सा लगता है, दैट्स वेरी नाइस। और उसके बाद आपने बताया कि आप लखनऊ में, वाह, मतलब लखनऊ की तो लैंग्वेज ही इतनी प्यारी है। उसके बाद आप अहमदाबाद भी रहे, बहुत खूब
1: जी।
0: दोस्तों आपने जाना, यूं तो वीना मैम बेंगलोर में है, लेकिन उनकी आवाज की जो खनक है, उनकी आवाज, उनकी डिक्शन, उनका प्रोनंसिएशन, हिंदी की जो इतनी साफ सुनाई दे रही है हम लोगों को, इस वजह से क्योंकि वो इन जगहों पर रही और जाहिर सी बात है लोकल लैंग्वेज बात की होगी, लोकल लोगों से बातचीत करते होंगे, तो बहुत कुछ पिकअप हम लोग कर ही लेते हैं। बहुत खूब, तो चलिए शुरू करें ना इस प्यारे से प्रोग्राम को वीना मैम के ही गाए हुए इन गीतों से, और उसके बाद और बातें करेंगे वीना मैम से। आइए सुनते हैं।

0: बहुत खूब। चलिए मीना मैम, आपको और बेहतर समझने के लिए आपके बचपन में चलते हैं। मुझे अपने बचपन की कोई बहुत ही प्यारी सी शरारत के बारे में बताइए ना, जो आपने की हो। वैसे बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक आध शरारत आपको याद रह गई होगी, थोड़ा बताइए ना, मजा आएगा।
1: नहीं, ऐसी कोई शरारत मुझे याद नहीं है एक्चुअली।
0: अरे ये क्या बात हुई मैम, कोई ना कोई।
1: मैं बहुत टॉमबॉयज थी, मतलब ऐसे ही बहुत बहुत ही खेलती कूदती थी। सो आई पढ़ाई में भी काफी होनहार थी और खेलकूद में भी बहुत आगे थी, तो बहुत जिमनास्ट वगैरह मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी।
0: दैट्स नाइस, ओके।
1: तो पतंगे भी उड़ाई है मैंने।
0: अरे वाह,
1: तो यस।
0: तो कभी तो कोई शरारत की होगी, किसी लड़के को पीट दिया होगा, साइकिल चला के गिर गई होंगी, या साइकिल भेड़ दी होगी, कुछ तो किया होगा।
1: हाँ, मतलब एक बार कुछ मैं लॉन्ग साइकिलिंग वगैरह करती थी, तो कुछ लेने सामान लेने चली गई थी, तो आई यूज टू रेस विद मतलब बस, वहां जो लोकल बस जो AMTS बस चलती हैं, तो उनके साथ मैं रेस करती थी
0: उत्तर की।
1: तो यस, तो फिर एक बार मतलब ड्राइवर हमारे घर में भी आए और फिर पापा को बता के गए कि आपकी बेटी को बताएं कि ऐसा ना करें। सो मे बी आई वॉज 8-9 ईयर्स उस वक्त, सो ऐसा दैट आई कैन।
0: वाओ, मैं सच कहूंगा वीना मैम, सच बता रहा हूँ। और दोस्तों सब लोग, आप लोग भी सुन रहे होंगे, दो ऑफ कोर्स आप लोग वीना मैम से बात नहीं कर रहे हैं अभी राइट नाउ, लेकिन सचमुच मतलब ये जबरदस्त शैतानी वाली हरकत वीना मैम की रही है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स। सोचिए ना, 8 साल की उम्र में वो बस के साथ रेस लगा रही थी, दैट टू ऑन साइकिल, बस के साथ। अरे भाई, स्कूटर के साथ लगा लेते, मे बी कार के साथ लगा लेते, मे बी किसी दूसरे साइकिलिस्ट, बस के साथ हद हो गई, मतलब शैतानी एट द मोस्ट। क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन आपको कभी चोट वोट नहीं लगी ना इस बारे में?
1: नहीं नहीं नहीं।
0: अब सोच के देखो दोस्तों, मतलब बस ड्राइवर उनके घर आ गया ये बतलाने के लिए कि इसे रोकिए, मतलब वो हार जाता होगा ना बेचारा बार बार, तो इसे रोकिए, ऐसा ना करें।
1: नहीं नहीं, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब दिक्कत होती ना उनका। हाँ, डेंजरस, उनको लग गया कभी गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए।
0: हाँ, ये उनकी उनको लगता होगा यार छोटी सी लड़की बेचारी, अभी ये मुसीबत हो जाएगी, आ जाएगी।
1: यस यस यस।
0: दोस्तों अपने बचपन की जरा शरारतें याद करके देखो, क्या इतनी आउटरेजियस कोई हरकत आप लोग ने की थी क्या? चलिए विचार कीजिए, सोचिए सोचिए, तब तक हम लोग वीना मैम के गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, एंड देन सर्टेनली विल कम बैक टू टॉक मोर विद मीना मैम।

0: ही से बचना,
1: बचना इस आशिक से बचना,
0: कांटों की दोस्ती से बचना, आँखों में भर ले अंधेरा, तुम ऐसी रोशनी से बचना।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया गायकी वीना मैम, क्या बात है। अच्छा आपने बताया, आपने अभी अभी आपने कहा ना कि आप तो टॉम बॉय थे, जाहिर से बात है बहुत बोल्ड, आपने सभी सभी तरीके के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, पतंग उड़ाना, बस के साथ रेस लगाना वगैरह वगैरह, लेकिन क्या हमेशा से कोई ऐसा एक डर आपके मन में रहा जो आज भी अंदर बैठा हो? कोई ऐसा डर बचपन से चालू हुआ हो और आज भी अंदर बैठा हो? देखो मैम, इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा पर्पस और कुछ भी नहीं है, किसी और गलत तरीके की मेमोरी को जगाना मेरा पर्पस नहीं है। पर्पस सिर्फ इतना सा है कि शायद आप आज अपने आप को पहचान पाए और उस चीज को कह दें तो शायद आप आजाद हो जाए उस डर से।
1: नहीं, एक्चुअली हमारा बाद में ट्रांसफर हो गया था अहमदाबाद से अजमेर में, और वहां का माहौल कुछ अलग है, राइट। तो फिर मेरा खेलकूद वगैरह बंद हो गया, मतलब जैसे थोड़े बड़े भी हो गए उसके बाद से, तो बस स्कूल जाना, घर आना, बस इतना ही, फिर घर के कंपाउंड में खेलना, वहां तक सीमित रह गया। तो उसके बाद से कुछ ऐसा, मतलब अभी भी मुझको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी अकेले जाना पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई हो, कम से कम एक बच्चा हो या कोई सहेली हो, कोई तो साथ में हो, कहीं जाना हो तो आई वुड, मैं प्रेफर करती हूँ किसी के साथ में जाना, यहाँ वहाँ अकेले जाना मुझे नहीं पसंद।
0: ओके,
1: तो वैसे वो डर नहीं है, बट दैट्स द माय प्रेफरेंस।
0: आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट।
1: यस,
0: बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। इस तरीके के कोई भी छोटे मोटे डर कभी बचपन में हम लोगों को रह जाते हैं, अब वो किसी वातावरण की वजह से हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हो सकते हैं, किसी मूवी, किसी म्यूजिक, या फिर कोई क्लास, मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई की किसी परफॉर्मेंस की वजह से, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। तो उस चीज को निकाल देना अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इमोशनल चार्ज लेकर बैठा रहता है और हमको ड्रेन करता है, इसलिए वी शुड लेट इट गो, जाने देना हमारे लिए बेहतर होता है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, आप भी अपने किसी भी इस तरीके के एप्रीहेंशन को, मैं इसको डर नहीं कहूंगा, एक छोटा सा एप्रीहेंशन, उसे निकाल फेंकिए और इन गीतों का मजा लीजिए, एंड देन विल कम बैक।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर गीत। चलो मैम आगे बढ़ते हुए आपके संगीत के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सी आपकी पर्सनालिटी को समझने में मजा आ रहा है, और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब आप बताएंगे ना तो आपको अपने ही जिंदगी में झांकने का एक और मौका मिल जाता है, ठीक है ना?
1: जी बिल्कुल, यस।
0: तो वीना मैम, आज तक की जिंदगी में सबसे बड़ा सबक आपने क्या सीखा है?
1: मैंने ये सिखा है कि हमेशा आगे चलना चाहिए, पॉजिटिव विचारों के साथ चलना चाहिए, और जो भी सबक सीखते हैं उसे

0: रखना चाहिए और उससे चिपक के नहीं रहना चाहिए, मतलब नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए. दैट इज व्हाट आई कैन से. यस.
1: राइट. अब देखो मैम, अक्सर कहा जाता है ना कि गलतियों से हम सीखते हैं, करेक्ट?
0: बिल्कुल. यस.
1: लेकिन ऐसा भी कहा जाता कि गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो जब हम गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे?
0: जी. इट्स अ पैराडॉक्स. यस.
1: तो मुझे तो ऐसा लगता है
0: जी.
1: गलतियां करनी चाहिए क्योंकि तभी तो हम सीखेंगे. दैट्स द इजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग. गलती करी, गिर पड़े तो अब
0: यस.
1: हम संभल के चलेंगे. गलती करी, हाथ जल गया तो अब हम संभल के रोटी पकाएंगे, है ना?
0: यस यस
1: पर
0: यस.
1: चलो, जो कुछ भी है, हमें जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमारा एनवायरनमेंट, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या वक्त गुजरता है, बहुत सारी चीजें. मैंने कई बार अपने पीछे उसमें कहा भी, पंक्चुअलिटी इज वन थिंग जो मैंने सीखी, उससे कितना नुकसान हो जाता है. 1 मिनट, वो 1 मिनट कहते हैं ना, वो 1 मिनट का मीनिंग उस बंदे से पूछिए जो रेलवे स्टेशन पहुंचा पहुंचा और 1 मिनट पहले
0: हाँ
1: उसकी ट्रेन
0: हाँ
1: निकल
0: गाड़ी
1: गई,
0: छूट
1: है
0: जाए.
1: ना?
0: यस यस बिल्कुल.
1: उसके लिए 1 मिनट का मतलब समझिए, पूछिए, है ना? वाह. चलो दोस्तों, थोड़ी सी विचार करने वाली बात है. कोशिश करते भाई, गीत संगीत एक मेडिटेशन की तरह होता है. मजे लेना तो एक बात हो गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगी को समझना भी बहुत जरूरी है. चलिए आगे बढ़ते हुए हम इन गीतों का आनंद उठाएं, फिर वापस आए मैम के पास.